0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Finally, अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है. तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की

0: क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
0: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है सुपर वाइट।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

आज या समूह जा जो 5 अक्टूबर यानि उस्ताद जो आलमी डी आए उस्ताद जो तमाम सुणी गाल पा भी जो अज इन माइक्रोफोन से वेठा असो सिंध जी समूरी सिंध में पाँ आवाज वे पो तो यह भी उस्ताद की मेहनत है असो भी कुछ आयो पा इन वक्त भी कुछ भी आयो पर यह अस उस्ताद की मेहनत है समझा अफसोस से चवण पे तो कुछ वर्न का अस उन हस्ती के विसारे वेठा आयो हस्ती इन वक्त कें भी नज़र से डिठी वे थी चवण वा चवन था तो उन में कुछ अड़न उस्ताद जो भी अमल दखल है जी सिर्फ़ पाँ पेशे के पगार हासिल कर महदूद कर वेठा पाँचे फर्ज़ के फर्ज़ समझी अदा नथा कन जिनके करे उस्ताद हस्ती से अज जहाँ मानू आंगुर खड़ी रहा है जैजो जेतरो अफसोस कजे ओतरो ही घट है सिमजा अचो तो असि सब पाँचन फर्जन के ईमानदारी सच्चाई से निभायूँ इन मुआशरे में एक बे के एहतराम के अवलत दूँ उन अवलत डींदी उस्ताद हस्ती के।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: सारे के सारे कोलैप्स करने का पहले दूसरे और तीसरे नंबर पर एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज चीफ मिनिस्टर के पी. और कोई एक जान जाती है, ये क्लैरिटी के साथ, अल्लाह ना करे कोई एक जान जाती है, उसका जिम्मेदार सुहेल अफरीदी हो. इस चीज को उनको समझ लेना चाहिए. हर मुमकिन हद तक कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ. जो भी तोहीन अदालत की बनती है उस पर कहीं कोई किसी
6: चढ़ाई करना नहीं. जिम्मेवार

सुहेल आफरीदी हूं वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस संदस चवण हो तो मुहदे से 99% इतफाक थी चुको हो। सदर के कापी देखारे वापस आयस तो सुहेल आफरीदी मुहदो तब्दील कराए छो फैसला सुहेल आफरीदी के करना हुआ तो पा छो न आयो खबर हुए हा तो मुहदो कयो वेंदो त गालियूं ई न कयूं हा असां दहशतगर्दी जे मामले ते गालियूं कयूं था त हू इनकार कनि था। केपीके जे वरे वजीर सुहेल आफरीदी गालियुनि जी कमेटी खे जारी कयल मसौदो जारी करे छॾियो। सुहेल आफरीदी चयो आहे त ड्राफ्ट में को बि गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबो नाहे। मुतालबो हो त वज़ीर आज़म अपोज़िशन लीडर विच में मुलाकात जो बंदोबस्त कयो वञे। वज़ीर आज़म हुकूमती इत्तेहाद पीपी ऐं अपोज़िशन पार्टियुनि जे नुमाइंदनि जी हिकु गॾियल सियासी कमेटी जोड़ी वञे। पीटीआई बानी ऐं बुशरा बीबीअ खे जेल मूजिबि हक़ ॾियारिया वञनि।

0: जी आसमिन प्रोग्राम रोशन सुबुह में अवां के एक दफो बीहर भलीकार चऊं पिया अवां के बुधाईंदा हलूं त अॼु 5 अक्टूबर आहे ऐं 5 अक्टूबर उस्तादनि जो आलिमी ॾींहुं आहे। उन हवाले सां अवां सां गुफ़्तगू हले पई ऐं तमामु सुहिणनि पहिरीं प्यारनि उस्तादनि सां अवां खे मुलाक़ात करायूं पिया, उन जा इंटरव्यूज़ अवां ताईं पहुचायूं पिया। उन हवाले सां त उस्ताद जी अज़मत जेका आहे उहा सभिनी खां मथे आहे ऐं हदीस शरीफ़ में इरशादु आहे त उस्ताद जो दर्जो पीउ खां बि मथे आहे, छाकाणि त बहितरीन पीउ उहो आहे जंहिं इल्मु सेखारियो। ऐं उहा हक़ीक़त आहे त हिकु उस्ताद पंहिंजे शागिर्द खे रुहानी रंग में रंगे ऐं उन जी दिलि ऐं दिमाग़ खे इल्म जे आब हयात सां अछो उजरो कंदो आहे। त साईं मुंहिंजा हिन वक़्तु वरी असां सां लाइन ते मौजूदु आहे हिकिड़ो उस्ताद जंहिंजी जेको नसीराबाद जी मिटी ऐं उस्ताद घराणे मां जनम वरितो, साईं अब्दुल हलीम सुमरो जेको प्राइमरी उस्ताद खां उन जी शुरूआति थी। अव्हां खे उन जो तारीफ़ कराईंदो हलंदुसि जेको HSTA खां LLB यानी वकील बि ऐं जेको आहे सो हिन वक़्तु सां यानी लेक्चरर आहिनि, एसोसिएट प्रोफेसर आहिनि पंहिंजो वारह तालुको वारह गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर आहिनि, साईं MPhil PhD होल्डर बि आहिनि। साईं सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उस्ताद जी अहमियत जे हवाले सां, त उस्ताद जी अहमियत अॼु 5 अक्टूबर जे हवाले सां अव्हां कीअं पिया ॼाणो? साईं अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम साईं।
0: साईं तव्हांखे प्रोग्राम रोशन सुबुह GFM 88 जे नेटवर्क तां तव्हांखे प्रोग्राम में भली करे पचूं। सर अॼु 5 अक्टूबर आहे, उस्ताद जो आलिमी ॾींहुं आहे ऐं तव्हां उस्ताद आहियो, उस्ताद जी घराणे सां तालुक़ु रखो पिया, छो त ॼमाईंदे ई तव्हां उस्ताद घराणे मां तालुक़ु रखो पिया। तव्हांजा जेतिरी मूंखे ख़बर आहे त भाइर वॾा नंढा ऐं तव्हां जेको आहे सो उस्ताद रहिया आहियो, हिन वक़्तु तव्हां प्रोफेसर आहियो, त तव्हां असांखे इहो ॿुधायो त उस्ताद जी अहमियत में तव्हां कीअं था उनखे ॼाणो सुञाणो ऐं उस्ताद जी अहमियत केतिरी आहे कहिड़ी आहे?
1: उस्ताद जी अज़मत, उस्ताद जी अहमियत, उस्ताद जी फज़ीलत खे ख़बर आहे, पर मां हीअ सुवाल कंदुसि जॾहिं अलाह पाक हज़रत जिब्राईल जे ज़रिए पंहिंजे महबूब खे मां चवंदो आहियां त इहो इलाही पेशो आहे जेके असां पैगंबरी पेशो चवंदा
0: आहियूं,
1: हिते मूंखे इलाही पेशो लॻंदो आहे। वरी नबियुनि जा सरदार असांजा नबी साईं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जन फरमायो आहे त अञा मोलिन मां उस्ताद आहियां, हिते वरी असां चवंदा आहियूं त पैगंबरी पेशो आहे। हाणे अज़मत

0: ईअं ई हक़ीक़त थो ॿुधायांव साईं, बाय गॉड जॾहिं को शागिर्द कंहिं मंदर ते पहुचंदो आहे उहो वरी जॾहिं मिलंदो आहे न त ॼणो हिकिड़े शागिर्द मूंखे चयो साईं दुआ त कजो, मां दुआ खे छा चवां, दिलि मां ख़ुदि निकिरी आई ऐं हक़ीक़त अथव ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऐं जेके नथा मिलनि उन्हनि खे भला ख़ुशि करे, पर जेके मिलंदा आहिनि त अञा दुआऊं वठी ईंदा आहिनि। उस्ताद हासिन उस्ताद जी अज़मत ते त सॼो ॾींहुं ॻाल्हाइजे, त हुनजी अज़मत खोटणी न आहे। बाक़ी उस्ताद जा कुझु फर्ज़ पिया आहिनि, जीअं ॾिसो न उस्ताद जो ॿार सां रवैयो सुठो हूंदो त ॿार ते असर पवंदा। उस्ताद ॿार जी इनकरेजमेंट कंदो, माना हिमत अफ़ज़ाई कंदो त ॿार अॻिते वधंदो। हूअं त साईं नेकी जेका आहे न, नेकी हिमत अफ़ज़ाई सां वधंदी आहे। ॿार हिमत अफ़ज़ाई सां अॻिते वधंदो आहे, दरके सां प्रेशर सां ॿार अॻिते न आहे वधंदो। उस्ताद जेकॾहिं ॿार ते एतमाद कंदो त ॿार ज़िमेदार बणिजी वेंदो, ऐं वरी उस्ताद ॿार जी का बि ॻाल्हि बर्दाश्त कंदो त ॿार ग़लतीअ जो पाण एतराफ़ कंदो। ऐं उस्ताद वरी जेकॾहिं माफ़ कंदड़ हूंदो त ॿार अहसान मंद रहंदो। ऐं उस्ताद बा किरदार हूंदो त ॿार में अख़लाक पैदा थींदो साईं। ऐं उस्ताद असां ईअं चवंदा आहियूं साईं, उर्दू में बि चवंदा आहिनि त हमेशह वॾनि खे इज़त करो। बाबा वॾनि जी इज़त कयूं त छा नंढनि खे छा कयूं, नंढनि जो त ज़िक्र कयो त जीअं हिकिड़ो जुमिलो मां चवंदो आहियां त उस्ताद जेकॾहिं ॿार जी इज़त कंदो न त ॿार वरी ख़ुदि इज़त करणु सिखंदो। उस्ताद रिफ्लेक्शन आहे न साईं, अफ़सान। उस्ताद महिनत कंदो त ॿार महिनती बणजंदो, उस्ताद साफ़ सुथरो रहंदो त ॿार सफ़ाई सां प्यारु कंदो, ऐं जेकॾहिं उस्ताद सच थो ॻाल्हाए त ॿार कूड़ खां पासो कंदो। उस्ताद जेकॾहिं ॿार ते तवजो ॾींदो त ॿार गफ़लत न कंदो, तवजो त ॾे न। जंहिं हिकिड़ी ट्रेनिंग में असांखे कंहिं उस्ताद ॿुधायो, असांजा पाण उस्ताद आहे न, ॾिसो असां हुननि जूं ॻाल्हियूं यादि था कयूं अॼु ते, त चई जॾहिं पंहिंजो ॿार रहंदो आहे त दिलि में सूरु पवंदो आहे, पर जॾहिं ॿिए जो ॿार रहंदो आहे त दिलि में सूरु पवंदो आहे। त जॾहिं असांखे दिलि में सूरु पियो न त पोइ सम्झो त हुन क़ौम खे असां पंहिंजो कयोसीं, हुन ॿार खे पंहिंजो कयोसीं साईं। छाकाणि त ॿार जेको आहे न उस्ताद जो अक्स आहे, जीअं हिकिड़ी सुहिणी सिंधी चवणी आहे त जहिड़ो वण तहिड़ो मेवो, जहिड़ो वण तहिड़ो मेवो साईं, एज़ द फादर एज़ द सन, जीअं पुटु थिए जीअं पीउ थिए पुटु। ऐं वरी साईं नबी साईं जो मूंखे फरमान बि यादि थो अचे, हिन ॾाढो सुठे मूंखे चयईं, मुंहिंजी दिलि जबान चवणो हिकिड़ो गुलाब जे गुल खां तव्हां टेड़े छॾी
1: आहे,
0: गुलाब जो गुल ईअं मुखड़ी, सवाल अहिड़ो पियो अथव
1: सवाल
0: साईं। नबी साईं जन फरमायो आहे त तव्हांजा टे पीअर आहिनि, तव्हांजा टे पीअर आहिनि, हर इंसान जा टे पीअर आहिनि। पहिरियों पीउ कहिड़ो आहे जंहिं तव्हांखे जनम ॾिनो, ॿियो पीउ उहो आहे जंहिं तव्हांखे पंहिंजी न्याणी ॾिनी, ऐं टियों पीउ उहो आहे जंहिं तव्हांखे इल्मु ॾिनो। ऐं टे पीअर त हिते थिया पर ॻाल्हि हिते ख़तम न थी थिए साईं। नबी साईं जन वधीक फरमायो त जंहिं उस्ताद जी इज़त कई ॼण मुंहिंजी इज़त कई।
1: हाणे
0: तव्हां उस्ताद जी इज़त ॾिसो साईं,
1: हाणे
0: तव्हां उस्ताद। ऐं इन जुमिले खे वरी पंहिंजनि लफ़्ज़नि हीअं थी चवां त जंहिं भला उस्ताद जी इज़त न कई त हाणे ॻाल्हि किथे वञी पहुचंदी।
1: अलाह अकबर,
0: ॿियो साईं हा न सर, ऐं ॿियो सर हिकिड़ो हा हिकु वरी ईअं पिया न त असां वटि उस्ताद जूं कैटेगरी ॾियनि, हिकिड़ो टीचर थींदो आहे बाय चांस, हिकिड़ो टीचर थींदो आहे बाय चॉइस। हाणे जेकॾहिं मां टीचर थो थियां त उन में मुंहिंजी चॉइस केतिरी आहे,
1: उन
0: में मुंहिंजी पंहिंजी ज़ाती मर्ज़ी केतिरी शामिल आहे। मां चाहियां थो त उस्ताद खां, मां चाहियां थो त पंहिंजो फर्ज़ु निभायां, मां चाहियां थो त सॼो ॾींहुं पढ़ायां न साईं। असां जेको आहे न बाय चांस टीचर तमामु घणा
1: तंहिं
0: करे जी साईं
1: अलाह साईं ख़ुशि कंदो तव्हां असांजे प्रोग्राम रोशन सुबुह में जी एफ एम 88 जे नेटवर्क ते टाइम ॾिनो, तव्हांजी वॾी महिरबानी सर, लख कुर्ब।
0: असांजी पाण दिलि ख़ुशि थी साईं, वॾी महिरबानी तव्हांजी,
1: वॾी महिरबानी सर, वॾी महिरबानी, लख कुर्ब। जी हा समय असांजो तमामु बहितरीन उस्ताद साईं अब्दुल हलीम सुमरो साहिबु जेको नसीराबाद सां तालुक़ु रखे पियो, हिन वक़्तु बि वाराहे पंहिंजे स्कूल में पढ़ाए पियो, जंहिंजी शुरूआति प्राइमरी उस्ताद खां ऐं अंग्रेज़ी उस्ताद खां, SST खां ऐं PhD होल्डर बि आहिनि साईं, एम फिल ऐं साईं पाण LLB

पंहिंजो वकील बि आहिनि ऐं हिन वक़्तु पंहिंजो प्रोफेसर आहिनि साईं जन स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर आहिनि। तव्हांजो साईं जो तालुक़ु उस्तादी घणे सां आहे साईं जो? वॾी महिरबानी जिन असांखे पंहिंजो उस्ताद जी अहमियत ते रोशनी विधी साईं जन जा लख कुर्बा।

0: It's 10:30 a.m. This
1: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
3: खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-2196-851
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94
7: अदी छा गाला

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबुह में अव्हां खे भलीकार चऊं पिया ऐं अव्हां खे यकीनन अॼु तमामु घणो मज़ो आयो हूंदो जेके उस्तादनि सां तालुक़ु रखनि पिया उस्तादी पेशे सां तालुक़ु रखनि पिया ऐं अहिड़ा उस्ताद जेके हाज़िर सर्विस आहिनि या रिटायरमेंट में आहिनि ऐं जेके असांजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया त उनखे अॼु वधीक मज़ो ईंदो हूंदो असां उनखे वरी बि पंहिंजे जेको उस्ताद आहिनि असां उनखे मुबारकूं ॾियूं पिया जस हुजे उनखे जिन असांजे हिन पूरे मुल्क पाकिस्तान जे लाइ महिनत कई आहे ऐं अहिड़ा वक़्त जा वज़ीर वक़्त जा बादशाह ऐं डॉक्टर हाकिम SPDC हिन वक़्तु असांजे जेके इलाइक़नि में आहिनि उहे उस्ताद जी महिनत ई आहिनि ऐं उस्ताद जो जेको शऊर आहे उहो अनेक दरवाज़ा खोले छॾींदो आहे हूअं बि तालीम जो मक़सदु उहो ई आहे त हिकु माण्हू खे सही जॻह ते आणणु ऐं मुकमिल आबकारी करे मुआशिरे जो मज़हबी इंसानु बणाए त जीअं हू सही नमूने पंहिंजो किरदारु अदा करे सघे त समय 5 अक्टूबर उस्तादनि जो आलमी ॾींहुं आहे उन हवाले सां असां सां लाइन ते मौजूदु आहे असांजो प्रोफेसर लेक्चरार परवेज़ अली कलोड़ो जंहिंसां जंहिंखे असां भलीका चवंदासीं साईं अस्सलामु अलैकुम साईं परवेज़ साहबु तव्हांखे असां प्रोग्राम रोशन सुबुह में GFM 88 जे नेटवर्क ते तव्हां असां तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार पिया चऊं अच्छा असांजो अॼु 5 अक्टूबर उस्तादनि जो आलमी ॾींहुं आहे ऐं तव्हां बि माशाल्लाह हिन वक़्तु पढ़ी करे प्राइमरी खां पंहिंजो यूनिवर्सिटी ताईं तव्हांजी तालीम हासिलु थी आहे ऐं तव्हां हिन वक़्तु पाण लेक्चरार आहियो प्रोफेसर आहियो तव्हां उस्ताद जी अहमियत खे कीअं पिया सुञाणो
1: जेकॾहिं सच ॻाल्हायां न त जेकॾहिं उस्ताद जी डेफिनेशन या उस्ताद जेका अहमियत आहे उहा एतिरी त वसी आहे जो असां हुनखे बयानु नथा करे सघूं
0: सही
1: पर पोइ बि असां ॿिनि अल्फाज़नि में ईअं चवंदासीं उस्ताद हिकु पैगंबरी पेशो आहे
0: जी जी
1: मुस्लमान हुअण जे नाते पर जेकॾहिं असां इंसानियत जी ॻाल्हि कयूं यूनिवर्सिटी ॻाल्हि कयूं उस्ताद हिकु वॾो पेशो आहे हुन में तव्हां ॾिसो जेके ब्यूरोक्रेट्स आहिनि जेके इंजीनियर्स डॉक्टर्स इवन जेका बि तकलीफ़ तव्हां ॾिसो था न इहे सभु उस्तादनि जी प्रोडक्ट
0: आहे बिल्कुलु ऐं
1: हिन ॻाल्हि ते आउं ईअं ई चवंदुसि मिठाई पुटु तपीअ थधी का कान्हे का वेल वेहण जी मथां थिए हूंदा इहो पस मंज़र बि इहो ई आहे जॾहिं असां पढ़ाईंदा आहियूं ऐं असांजी इज़त मिलंदी आहे यूनिवर्सिटी वेंदा आहियूं या किथे बि इवन कंहिं हजम जे दुकान ते या कंहिं रेस्टोरेंट ते त असांजा जेके प्यारा हूंदा आहिनि शागिर्द हूंदा आहिनि उहे असांखे सलाम कंदा आहिनि एॾी रुहानी सुकून मिलंदो
0: आहे
1: छा ॿुधाइजे अखि मां गोड़ा निकिरी पवंदा
0: आहिनि हक़ीक़त आहे
1: इहा हिकु हक़ीक़त आहे
0: जी
1: मुंहिंजो हिकु तज़ुर्बो आहे आउं पुलिस में बि रहियो हुउसि कंहिं दौर में एस आहे 2021 खां 2023 पोइ वरी मूं कमीशन इहे लेक्चरशिप जी ॾिनी हिते एतिरो माना सुकून आहे पुलिस बि हिकु सुठो इदारो आहे पर वरी उस्ताद बि ऐं पेशे वराना जेके सलाहियतूं आहिनि उहे जॾहिं असां पॉलिश कंदा आहियूं ॿारनि जो नसुल सुधारींदा आहियूं डॉक्टर थियनि इंजीनियर थियनि सॼो मुआशिरो ओॾी महिल तब्दील थी पियो वञे सर
0: बिल्कुलु सर इहे उस्ताद जूं महिनतूं आहिनि इहे तव्हां उस्ताद आहियो प्रोफेसर लेक्चरार आहियो इहे तव्हां जूं महिनतूं आहिनि सर जेको अॼु उहे रंग लाहिनि थियूं ऐं तव्हांजा शागिर्द उस्ताद त उस्ताद ई आहे पर जेको शागिर्द आहे उहो वॾी मंज़िल ते पहुची वेंदो आहे
1: साईं ईअं ई आहे बिल्कुलु उस्ताद हिकु लर्निंग प्रोसेस आहे उन में जेको हूंदो आहे स्टूडेंट उहो वक़्तनि स्टूडेंट हूंदो आहे पोइ अॻियां हली वरी उहो उस्ताद थींदो आहे ऐं असांजी जेका न टीचिंग फील्ड उहा असांजे वालदीन खां ई स्टार्ट थिए थी जेके वालदीन आहिनि उहे मेन उस्ताद आहिनि अॻियां हली करे सरकारी लेवल ते असां उस्ताद आहियूं पर हर हिकु माण्हू जेको असांखे इल्म थो ॾे न उहो असां लाइ हिकु उस्ताद थी अचे थो हुन में जीअं तव्हां आहियो तव्हां बि पंहिंजी कंट्रीब्यूशन ॾियो था दर्स ॾियो था तव्हां बि उस्ताद आहियो जेकॾहिं हक़ीक़ी ॻाल्हि कयां
0: जी जी साईं मुंहिंजा परेश साहब
1: मुंहिंजा ख़्याल आहे न
0: तव्हांजी वॾी महिरबानी असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो तव्हांजा लख कुर्म परेश साहब
1: सर महिरबानी ख़ुशी थी ऐं ॾाढी ख़ुशी थी जो तव्हां असांखे मौक़ो ॾिनो तव्हांजा वॾी महिरबानी सर
0: वॾी महिरबानी लख कुर्ब जीअं समय प्रोग्राम रोशन सुबुह में असांजो दोस्त लेक्चरार प्रोफेसर परवेज़ कलोड़ो जंहिं पंहिंजे उस्ताद जी अहमियत ते रोशनी विधी साईं जन जी वॾी महिरबानी

0: अजी असमें प्रोग्राम रोशन सुबह आमुद पे GFM 88 जे नेटवर्क ता मावा जो मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो ए समन वा के खबर आ है यकीनन असा जो अजो को प्रोग्राम मुकम्मल हलियो है त 5 अक्टूबर के हवाले सा उस्तादन जो आलमी डी है मुख्तलिफ विचार उस्तादन जा अवा तई जरूर पहुंचाया से इन वक्त असा सा लाइन ते मौजूद है उस्तादी घराने सा ताल्लुक रखंदड़ प्राइमरी उस्ताद जो पुट नानो भी उस्ताद मामा भी उस्ताद जिनजा भाईर भी उस्ताद पाण भी उस्तादी पेशे सां ताल्लुक रखंदड़ असांजो अहमद अली बिरोही जेको पंहिंजो अंग्रेज़ी मास्तर जेका GST चऊं GST खां जंहिंजी शुरूआत थी हिन वक़्तु असांजे हेड मास्तर आहिनि 17 ग्रेड में एलिमेंट्री बॉयज़ स्कूल बागोदरो कंबर जा ऐं जेके MPhil जंहिंजी थियल आहे PhD होल्डर आहिनि ऐं उस्ताद आहिनि साईं सां उस्ताद जी अहमियत ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं साईं खे प्रोग्राम में भलीका चवंदासीं अस्सलाम वालेकुम भाउ साईं तव्हांखे प्रोग्राम रोशन सुबुह में भलीकार चऊं था GFM 88 जे नेटवर्क तां ऐं असां तव्हां खां इहो ई जेको अॼु 5 अक्टूबर जे हवाले सां उस्तादनि जो आलमी ॾींहुं आहे उन हवाले सां तव्हां उस्तादी घराणे सां तालुक़ु रखो पिया तव्हां पाण उस्ताद आहियो हिन वक़्तु तव्हां जेको आहे सो हेड मास्तर आहियो 17 ग्रेड जा तव्हां उस्ताद जी अहमियत खे कीअं था बयानु कयो
1: माशाला साईं उस्ताद जेको आहे हिकु मुख़्तस सर्वीसी पेशो आहे मूंखे अलाह ताला मुअल्लिम यानी उस्ताद करे मोकिलियो आहे ऐं अलाह ताला जो शुक्र आहे जो असांखे बि हिन पेशे सां वाबस्ता रखियो आहे सो अलाह ताला असांखे हिन क़ौम जो बुनियादु रखंदड़ बि करे बणायो मोकिलियो आहे उस्ताद न फ़क़ति ॿार जी किरदार साज़ी कंदो आहे पर हुन जी सोच बि तब्दील कंदो आहे हुन जो ज़हन साज़ी कंदड़ आहे अलाह ताला उस्ताद जो मान मर्तबो तमामु वधीक कयो आहे छाकाणि त हीउ पैगंबरी पेशे सां वास्तो रखंदड़ आहे
0: अच्छा माशाल्लाह सर जेके उस्ताद तव्हां त रहिया आहियो पंहिंजो तमामु घणे टाइम खां उस्ताद आहियो अच्छा जॾहिं तव्हां जेको शागिर्दु वॾो हिकिड़ो ऑफिसर वॾी कंहिं मंज़िल ते पहुची करे तव्हां सां मिलंदो आहे त तव्हां कीअं ख़ुशी महसूसु कंदा आहियो
1: सर यकीन कयो जॾहिं कोई शागिर्दु अची पहिरें पई मिलंदो आहे किथे बि हूअ असांखे सुञाणण में ई न ईंदो आहे त बाबा केरु आहे चवंदो आहे सर मां तव्हांजो शागिर्दु आहियां
0: जी
1: सर तव्हां मूंखे पढ़ायो आहे मां हिन वक़्तु सफ़ल इंजीनियर आहियां मां सर टेलीविजन में कमु थो कयां को चवंदो आहे सर मां लेक्चर थी वियो आहियां कोई चवंदो आहे सर मां पढ़ाया आहिनि स्कॉलरशिप करे मोटी आयो आहियां ITI में टीचर आहियां यकीन कयो बसि दिलि चवंदी आहे त भई जेकी बि असांजी ज़िंदगी आहे थक हुया उन्हनि ॿारनि जी जेका कामयाबी ॾिसी करे असांजा थक लही पवंदा लुड़क अची वेंदा आहिनि माशाल्लाह अलाह ताला असांखे पंहिंजी महिनत जो फल ॾिनो आहे
0: वाह वाह ज़बरदस्त अच्छा सर तव्हां उस्तादी पेशे सां तालुक़ु रखी करे तव्हां पंहिंजी तालीम बि मुकमल रखी आहे तव्हां पंहिंजी तालीम जारी रखी आहे जंहिंमें तव्हां MPhil बि कई आहे तव्हां PhD होल्डर बि आहियो त तव्हां पंहिंजे पढ़ाईअ जे हिसाब सां ड्यूटी जे हिसाब सां वरी तव्हां पंहिंजो इहो वक़्तु बि कढियो ऐं तव्हां इन मंज़िल ताईं पंहिंजी तालीम हासिलु कई आहे इन में का दिक़त न थी
1: सर अलहमदुल्ला शुक्र अलाह पाक जो चवंदा आहिनि त तव्हां जेकॾहिं ॿिए जे ॿार जो भलो कंदो त अलाह पाक तव्हांजे लाइ बि भलाई कंदो तव्हांजा ॿार बि भलाई तरफ़ हूंदा असां ॿियनि जे

0: ये न मकाम ते पहुंचाए वे एडी इज्जत मुआशरे में हर कोई उस्ताद करे मिले निवड़ी मिले शागिर्द हुजन उन्हनि जा वालदेन हुजनि उहे मुहबत में हुजनि असांखे हार पराए वञनि अची स्कूल में
1: प्रोग्राम जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां तव्हां असांखे टाइम नओ प्रोग्राम असांजो आहे रोशन सुबुह ऐं तव्हां उस्ताद जी अज़मत ते उस्ताद जी अहमियत ते अॼु आलमी ॾींहुं आहे 5 अक्टूबर ते तव्हां ॻाल्हायो तव्हांजी वॾी महिरबानी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु
0: जी सर उस्तादनि जे आलमी ॾींहं ते असां पंहिंजे तमामु उस्ताद साहिबान खे ख़राज तहसीन पेश कयूं था ऐं अलाह पाक खां संदनि जी सिहत ऐं आफ़त लाइ ऐं ज़िंदगी जी कामयाबी लाइ दुआगू आहियूं ऐं जेकी उस्ताद असांजा हिन दुनिया मां रेल ते फरमाया विया आहिनि असांखे बि पढ़ायो असांजा शागिर्द पैदा कया या ॿिया जेके बि प्रोफेशन वारा पैदा कया उन्हनि लाइ बि दुआगू आहियूं हिन दरसगाहनि सां दिलि मुंहिंजी कुतुब खानो वतन मुंहिंजो किताबनि में दफ़न थींदो थींदा कफ़न मुंहिंजो
1: वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी अहमद अली बुरी साहिबु लख कुर्ब वरसलाम जी आहे समय असांजो तमामु प्यारो दोस्त उस्ताद अहमद अली बिरोही जेको हिन वक़्तु एम फिल पी एच डी होल्डर आहे ऐं एलिमेंट्री बॉयज़ स्कूल बागोदर मां 17 ग्रेड जो उस्ताद आहे हेड मास्तर आहे साईं जी वॾी महिरबानी लख कुर्ब त समय असांजो प्रोग्राम रोशन सुबुह जी पंहिंजो वक़्त जी पुॼाणी पई थिए वरी ईंदड़ हफ़्ते इनशाला ईंदड़ प्रोग्राम में अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो ॾींदा इज़त अलाह निगहबान।

पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अक्रम राजा मोहसिन नकवी जो सैलाफे दे ते के ॻाल्हियूं नाकाम बणाइण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। सलमान अक्रम राजा चयो आहे त ॻाल्हियुनि में नाकामी जो ज़िमेवार सुहेल आफरीदी नाहे। 72 कलाकनि दौरान केबीके जे 5 ज़िलनि में

ॿुधायो वञे त पीटीआई वफ़द आॾो रखियल मुतालबनि में कहिड़ो मुतालबो ग़ैर आइनी या वस खां ॿाहिरि आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ुल चौधरी चयो आहे त असांजो पहिरियों मुतालबो टीटीपी ऐं दहशतगर्द जी मज़म्मत, ॿियो केपीके में दहशतगर्द ठिकाणनि जो मुकमल ख़ात्मो ऐं टियों अफ़गानिस्तान बाबति परॾेही पॉलिसीअ ते अमल करणु आहे। असांजो असल मक़सदु लॉन्ग मार्च रोकणु न पर दहशतगर्दीअ जो मुकमल ख़ात्मो आहे।

0: कराची जे इलाइक़े शाह लतीफ़ थाणे जी हद में एस आई यू जी कार्रवाई फायरिंग जी ॾेवठि में हिकु ॾोहारी मारिजी वियो। पुलिस जो चवणु आहे त साले ॻोठ में इंतिही घुरबल भते खोड समन काठियावाड़ी जी मौजूदगीअ जी इतलाह ते कार्रवाई कई। फायरिंग जी ॾेवठि में हिकु ॾोहारीअ खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो, जंहिं दम ॾेई छॾियो। मारिजी वियल ॾोहारी जी सुञाणप जो अमल जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
5: मेरा आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
5: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
9: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
8: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
9: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
10: 0301-399-2836।
11: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
12: शेख हयात जी सिस्टम से क्या तो वधिक तो आज जगह फरमाइश व सार कोशिश।
10: हार्वर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में।

चाहत से फतेह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतेह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर ट्यून्ड टू जीओ रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं RJ रुखसार सिंध की आवाज। कैसे हैं आप? आई होप से किसी जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स। सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स जो कि आपको बनाएंगे बहुत ज्यादा खूबसूरत, और पूरे प्रोग्राम में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन हम प्रोग्राम में सबसे पहले आगे चलेंगे और वक्त की बात करेंगे। तो वक्त हुआ जाता है 11:15 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम तर लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शे में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बट लेट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफसले खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कले खुदा खैरियत मतलू। वो तमाम तो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो लोग की बर्थडे है तो मैं मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शवारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे पर सारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम, अहलन व सहलन, मरहबा बखैर आगन ले जी आया नुसरत बिस्मिल्लाह बाजार शाह नी हाउ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स। सुपर वाइट के प्रोडक्ट जो कि आपको खूबसूरत, हसीन और जाजिब नजर बना रहे हैं। सुपर वाइट के तमाम प्रोडक्ट जो कि आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा मुफीद और मौजू हैं। सुपर वाइट के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जी? सुपर वाइट की आती है वाइटामिन सी क्रीम, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, उसके अलावा सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की एंटी एक्नी फ्रेकल क्रीम और सुपर वाइट की राइज ब्यूटी क्रीम। साथ में इनके बूस्टर्स और सीरम भी आते हैं। सुपर वाइट की ऑयल फ्री एक्नी क्रीम भी आती है। इसके अलावा सुपर वाइट के फेस वॉशेस की बड़ी अच्छी रेंज है। ऑयल कंट्रोल फेस वॉश आता है सुपर वाइट वालों का। इसके अलावा सुपर वाइट का राइस कोलेजन फेस वॉश आता है। सुपर वाइट का सोप भी आता है जी, ब्यूटी सोप कोजिक एसिड के साथ राइस सोप है जी। इसके अलावा सुपर वाइट का फेस वॉश कोरियन फॉर्मूला स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश। इसके अलावा सुपर वाइट का टर्मेरिक फेस वॉश भी आता है। सुपर वाइट विटामिन सी फेस वॉश, तो ये फेस वॉशेस की बड़ी अच्छी और खूबसूरत सी रेंज जियो की आपको खूबसूरत बनाएगी और बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएगी। तो जी प्रोग्राम में बहुत कुछ होगा प्रोडक्ट्स के बारे में, मजीद और भी बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारी ऐसी फॉर्मूलाज और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स जिनसे आप इस प्रोडक्ट्स को यानी कि इन तमाम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को लगा सकते हैं 4 से ज्यादा चांद। तो प्रोग्राम में हम आगे चलेंगे और सबसे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला

तो प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना हम प्ले करने जा रहे हैं और दिस सॉन्ग इज बाय द वन एंड ओनली नबील शौकत, जिसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स. प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला

Okay, जी ब्यूटीफुल सॉन्ग और आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट के जितने भी प्रोडक्ट हैं आपकी खूबसूरती को लगा रहे हैं चार से ज्यादा चांद जैसे कि मैंने बताया और सुपर वाइट के इन तमाम प्रोडक्ट्स को आप मार्केट जाके बाय कर सकते हैं जी और अगर आपको नहीं मिलते तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने हेल्पलाइन नंबर पर इनके कॉन्टेक्ट करना है और हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताने जा रही हूँ और हेल्पलाइन नंबर है जी 03 7025 68321। एक बार फिर से दोहराऊंगी वो लोग जो कि स्लो हैं और स्लो कैच करते हैं चीजों को तो 03 7025 68321। ठीक है जी ये कॉन्टेक्ट नंबर मुमताज हसन खान साहब का जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। हेल्पलाइन नंबर है इनका दूसरा हेल्पलाइन नंबर है जी सखर और लाड़काना के लिए। पहले वाला है जी हैदराबाद के लिए हेल्पलाइन नंबर। इसके अलावा सखर और लाड़काना के लिए आप इमरान साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर है 03147544462। ठीक है जी इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं सखर और लाड़काना वाले स्पेशली 03147544462। ठीक है जी इन नंबर्स के ऊपर आप लोग रब्ता कर सकते हैं और जी इसके अलावा सुपर वाइट के बहुत हसीन और खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट जिनमें स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम क्या कोरियन फार्मूला कमाल का फार्मूला कोरियन स्किन बनाने के लिए जी और कोरियन स्किन बनाएंगे आप लोग इसको आप डेली रूटीन में डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी यानी कि दिन और रात में पहले ही 3 दिन में आपको विजिबल और वाजे फर्क दिखते हैं और क्यों दिखते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं जी और आपकी स्किन को दे रहे हैं ब्राइटन अप लुक और इसके अलावा जी इसका जो फॉर्मूला है वो नेचुरल स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट्स के साथ तैयार किया गया है आपके डार्क स्पॉट्स को खत्म करता है आपकी डल स्किन को मजीद और ज्यादा खूबसूरत बनाता है डल नहीं रहने देता कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है और इसके अलावा जी वो तमाम तो लोग जिनकी स्किन पे एक्ने और छाइयों का इशू है तो वो भी खत्म हो जाता है तभी तो बनती है आपकी कोरियन ग्लास स्किन। तो अगर आप भी अपनी कोरियन ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं सो डेफिनेटली आप लोग यूज करेंगे स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम सुपर वाइट वालों की जिससे आपको मिलेगा बहुत ज्यादा खूबसूरती वाला लुक और यही खूबसूरती वाला लुक जो कि आप सालों से हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन हासिल नहीं कर पा रहे हैं शॉप करेंगे एंड हियर कम्स अली जफर एंड अली हैदर विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसको सुनेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने बजाएंगे आपने कहीं नहीं जाना मेरा साथ देना है क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट अनुसंगरोगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: Okay, so welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स, जिसकी जानिब से ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सफर जो कि 11 बजे से 1 बजे तक जारी और सारी रहता है. तो 11 बजे से 1 बजे तक डेली बेसिस पे जिन लोगों को नहीं पता वो जहन नशीन कर लें, एक्नॉलेज कर लें कि 11 से लेके 1 बजे तक डेली बेसिस पे आपका और मेरा साथ रहता है. और ये जो साथ है ये सुपर वाइट वालों की जानिब से, ठीक है जी. तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स और सुपर वाइट के बहुत सारे खूबसूरत से प्रोडक्ट्स जो कि खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं. और क्या खूबसूरत और कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इतने ज्यादा कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इसमें हर तरह का प्रोडक्ट सुपर वाइट वालों ने बना दिया है, यानी कि अक्सा कॉस्मेटिक्स वालों ने बना दिया है. जहां आप सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम्स यूज करके अपने फेस को, अपने चेहरे को खूबसूरत बना रहे हैं, अपने फेस से तमाम मसले मसाइल का खात्मा कर रहे हैं, लाइक एक्ने, छाइयां, झुर्रियां या फिर फाइन लाइंस या फिर पिगमेंटेशन जैसी बहुत सारी चीजें, तो वहीं पे आप इनका हैंड एंड फीट फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं. तो हैंड एंड फीट फार्मूला कैसे तैयार कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि आप इन्हीं के प्रोडक्ट्स में से डिफरेंट फार्मूलास तैयार करके अपनी स्किन को, चाहे फिर वो हैंड एंड फीट की स्किन हो, उसको खूबसूरत बना सकते हैं. अच्छा, अब वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ. अच्छा, हैंड एंड फीट जो फार्मूला है वो तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक अदद सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम ले लेनी है, कोई भी, ठीक है जी. तो सुपर वाइट की कोई भी ब्यूटी क्रीम ले लेंगे और अपनी पसंद के हिसाब से, ठीक है. वो लेने के बाद उसमें आप लोगों ने उसी की क्वांटिटी के बराबर पेट्रोलियम जेली लेनी है. अब पेट्रोलियम जेली में भी इनके बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, जैसे कोकाओ बटर आता है, पिंक रोज का फ्लेवर आता है, इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे दूसरे फ्लेवर हैं जी जो कि आते हैं इनकी पेट्रोलियम जली में, ठीक है. वो आप लोगों ने एक अदद पेट्रोलियम जली ले लेनी है और एक अदद जो है सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम लेनी है. सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम में जितनी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के बराबर आप लोगों ने पेट्रोलियम जली लेके उसमें मिक्स कर लेनी है. अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करके इसको स्टोर कर लें. रात को सोने से पहले इसको अप्लाई करें, ठीक है, और हैंड्स एंड फीट पे अप्लाई करें. अच्छे तरीके से अप्लाई करके एंड सो जाएं. सुबह उठने के बाद वॉश करें, ठीक है, एक अच्छे से सोप से. अगर सोप आपके पास सुपर वाइट वालों का है तो क्या ही बात है. सुपर वाइट वालों का ऑयल कंट्रोल जो है सोप आता है, सुपर वाइट वालों का राइस ब्यूटी सोप आता है, इनमें से कोई भी सोप आप लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है. फेस को वॉश करने के लिए सुपर वाइट वालों की रेंज में जितने भी फेस वॉशेज आते हैं उसमें से कोई एक फेस वॉश आप लेके यूज कर सकते हैं, तो आपको बेहतर रेन रिजल्ट मिलेंगे और आप देखेंगे कि जहां आपका चेहरा खूबसूरत हो रहा है वहां पे आपके हैंड्स एंड फीट भी खूबसूरत हो रहे हैं. और वो तमाम तर लोग जो कि कभी ना कभी मेरे ख्याल से नहीं, मतलब हर बार हम अपने कॉम्प्लेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं होते, चाहे फिर वो मर्द हजरात हो चाहे फिर वो खवातीन हो. जो लोग अपने कॉम्प्लेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हुए या फिर कॉम्प्लेक्शन आपका जो था नेचुरली उससे भी कहीं ज्यादा डल हो चुका है क्योंकि गर्मी इतनी शदीद पड़ी थी, ठीक है जी. गर्मी की वजह से आप लोगों का कॉम्प्लेक्शन डाउन हो चुका है और जो गर्मी टैनिंग छोड़ के गई है आपके फेस पे, आपकी स्किन पे, उसको भी तो खत्म करना है. तो उसको खत्म करने के लिए हम यूज करेंगे सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को. और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स में सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम्स, बड़ी कमाल की ब्यूटी क्रीम है जो कि टैनिंग क्या, एक्ने क्या, पिगमेंटेशन क्या, आपके सारे स्किन से रिलेटेड मसले मसाइल को हल कर देंगे, ठीक है जी. टैनिंग को खत्म करने के लिए आप लोग खासतौर पर, वो तमाम तर लोग जिन लोगों को टैनिंग भी है और जिन लोगों को पिगमेंटेशन भी है, छाइयां हैं और छाइयां किसी भी वजह से आपके चेहरे पे हुई हो, तो आप यूज कर सकते हैं सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम, ठीक है. सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम जिसको आप यूज कर सकते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं. इसके बहुत सारे फायदे में एक तो ये एंटी एजिंग क्रीम है, आपकी एंटी एजिंग स्किन को जो है आपकी उम्र से पीछे ले जाएगी, आपको जवान बना देगी, ठीक है जी. इसके अलावा दूसरा इसका फायदा यह है कि अगर आपकी स्किन डल है तो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगी. इसके अलावा आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगी. अगर आपके पोर्स ओपन हो चुके हैं बहुत सारी एक्ने होने की वजह से या बहुत सारी ऐसी चीजें या फिर प्रोडक्ट्स या फिर मेकओवर करवाने की वजह से जिसकी वजह से आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, तो आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगी, ठीक है. आपके डार्क स्पॉट्स को खत्म करेगी, आपके एजिंग स्पॉट्स को भी खत्म करेगी, आपकी स्किन टोन, इवन टोन में आ जाएगी, आपकी जो फेयरनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी. ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सेव है, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए इसलिए सेव है क्योंकि इसमें नेचुरल लेमन एंड नीम एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं और साथ में विटामिन सी की बहुत सारी खूबियां. अच्छा, अगर आप इसके रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं, इसके रिजल्ट को मजीद और इनहेंस करना चाहते हैं, तो इसमें फिर आप लोग सुपर वाइट वालों का कोई भी सिरम ऐड करेंगे. आप इसमें सुपर वाइट वालों का राइस सिरम भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सुपर वाइट वालों का ब्यूटी सिरम, जिसको बूस्टर भी कहा जाता है, ये ऐड कर सकते हैं. तो ये जो आपका रिजल्ट है ना विटामिन सी क्रीम का, उसको डबल से ट्रिपल या फिर उससे भी कई ज्यादा बढ़ा देगा. ठीक है, तो सुपर वाइट का ब्यूटी सिरम, जिसको बूस्टर भी कहते हैं जी, और ये बूस्टर भी है, सिरम भी है. इसका मकसद ये है कि आपके जो भी क्रीम का रिजल्ट है, आपके जो भी फेशियल का रिजल्ट है, आपकी ब्लीच क्रीम का जो रिजल्ट है, उसको डबल से ट्रिपल कर दे. तो ठीक है, आप इसमें यानी कि ब्यूटी क्रीम में भी और ब्लीच क्रीम में भी आप इसको ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं. हैंड्स एंड फीट्स का जो मैंने फॉर्मूला बताया, उसमें भी ऐड कर सकते हैं आप इसको. तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है किसी भी फॉर्मूले का जो आप तैयार कर रहे हैं सुपर वाइट वालों के प्रोडक्ट से, या फिर सुपर वाइट की कोई भी ब्यूटी क्रीम जिसमें आप बूस्टर को ऐड कर रहे हैं, सुपर वाइट का ही बूस्टर लेके. ठीक है जी, तो बूस्टर आपके क्रीम के रिजल्ट को मजीद और इनहेंस कर देगा. पहले ही 3 दिन में बहुत अच्छे विजिबल रिजल्ट्स आप लोग देख पाएंगे. ठीक है जी, इनका जो सुपर वाइट ब्यूटी सिरम बूस्टर है, अल्फा आर्बुटीन, नाइसिनमाइड इसमें मौजूद है, वाइटामिन B3 और कोजिक एसिड है, जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए हेल्दी और बिल्कुल सेफ है. तो और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है सुपर वाइट वालों के प्रोडक्ट्स चाहिए. और सुपर वाइट के प्रोडक्ट जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले बड़ी ही क्वालिटी और अच्छे मयार के साथ आप लोगों के लिए तैयार करते हैं. ठीक है जी, और मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी 3 तरीकाकार से आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में. उसमें से जो पहला तरीका कार है वो है सिंपली मैसेज करने का. तो सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. और कमेंट कर रहे हैं आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे 2 फेसबुक पेजेस पे. इस वक्त हमारी ऑडियो स्ट्रीमिंग लाइव जा रही है, GFM लालकाना FM 88.8, GFM 88. ठीक है जी, तो यहाँ पे जाके आप ऑडियो स्ट्रीमिंग पे जो है कमेंट कर सकते हैं. जिन लोगों को मिल चुका है पेज और हमारी ऑडियो स्ट्रीमिंग, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ शेयर करें, फेसबुक के ऊपर, और लोगों तक पहुँचाएं और उनको बताएं जिंदगी गुलजार है. और वो कैसे है, वो है जी सुपर वाइट के इन हसीन प्रोडक्ट से, जो कि आपको हुस्न व जमाल देके आपको इंतहाई हसीन बना रहे हैं. ठीक है, तो जी इसी के साथ हम आगे चलते हैं. साथ साथ आप लोग 888 पे भी मुझे मैसेजेस कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर आपको बता चुकी हूँ. कॉल लेंगे, कॉल कर सकते हैं आप लोग. टेलीफोन लाइंस आप लोगों के लिए ओपन कर दी गई हैं. तो फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, चेक करेंगे हम कौन और कहाँ से. हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन किधर से.
1: हैदरबख्श
0: भाई, कैसे, ठीक ठाक.
1: अल्लाह का करम है, आप सुनाइए.
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे बताएं कौन सा प्रोग्राम सुन रहे हैं.
1: जिंदगी गुलजार है.
0: ओके, किसके तामुन से.
1: ये वाइट अभी जो
0: वाइट नहीं है, सुपर वाइट है. सुपर वाइट क्या है.
1: सुपर वाइट मेरा बैलेंस जा रहा है. ठीक है,
0: ठीक है, बैलेंस जा रहा है. ठीक है, ओके, और कुछ कहेंगे. ओके, बैलेंस चला गया, वाओ. ओके, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं, चेक करते हैं कौन है कहाँ से. जी हेलो. ओके, कॉल रिसीव नहीं हुई. हेलो,
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम सागर भाई, क्या हाल चाल.
2: खैरियत, खैरियत, ठीक ठाक.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं.
2: जी मैम, सुन रहा हूँ. मैं तो सुन रहा हूँ.
0: कौन सा है, किसके तामुन से है.
2: तामुन का तो पता नहीं है, जिंदगी गुजार है, यही प्रोग्राम है ना.
0: यही प्रोग्राम है, और मैं किस बारे में बता रही हूँ.
2: पता नहीं क्या, बताओ.
0: प्रोग्राम नहीं सुना आपने.
2: प्रोग्राम यहाँ नहीं चलता है मैम, खैरपुर में नहीं चलता है.
0: खैरपुर में नहीं चलता है, तो फिर आप कैसे सुनते हैं. रेडियो पे सुनते हैं, फेसबुक पे सुनते हैं, कैसे सुनते हैं.
2: नहीं फेसबुक मेरे पास वो कीपैड वाला मोबाइल है, छोटा मोबाइल है, मैं कॉल करता हूँ बस।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके अच्छा जिंदगी गुलजार है अब से स्पॉन्सर्ड है जी सुपर वाइट वालों की तरफ से और सुपर वाइट के बहुत अच्छे खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फेस वॉशेस हैं, इनकी ब्यूटी क्रीम्स हैं, इनकी ब्लीच क्रीम्स हैं, पेट्रोलियम जेली है और बहुत कुछ है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा
0: यस तो मुझे बताएं कि कोई गाना सुनाएंगे आप?
2: गाना सुनाऊंगा मैम।
0: तो सुना दें, अच्छा सा, सैड नहीं होना चाहिए।
2: प्यार तेरा मैं मुझको जो छोड़ने वाले, प्यार तेरा मुझको जो छोड़ने वाले, क्या तुझे मार

0: जाए मुझको यूं तोड़ने वाला।
1: ओके और कुछ कहेंगे?
0: और कुछ यही है मैम, आपने बोला था कि जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था आपने कहा था कि जो कॉल करने वाले जो है ना एक बार करो, और दूसरे दिन मैंने दो दिन कॉल नहीं की।
1: ये मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से।
0: जी जी मैंने कॉल नहीं की, मैंने कहा जाए तो उसको थोड़ा रेस्पॉन्स दिया जाए।
1: तो ऐसा ही है, मच आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स।
0: थैंक यू मैम,
1: बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़। और ये थे कॉलर 03000113488। बातें बनी है, गाना सुनाऊंगी आपको, गाना प्ले करने जा रही हूँ, गाना कॉल्ड बुलबुल बासेंगे और गाने के साथ आगे मूव करेंगे, आपको बताऊंगी सुपर ब्लास तैयार कर।

जी कर सकते हैं आप लोग सखर और लाड़काना वाले स्पेशली और हैदराबाद वाले के लिए अलग से ही जी. और सखर में आप इमरान साहब से राबता कर सकते हैं तो जरूर करें और जहाँ जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ करवाएं प्रोडक्ट्स को. और इसके साथ सर जी हम चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि सुपर वाइट वालों के और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और आप इनसे क्या क्या तैयार कर सकते हैं. अच्छा इनके खास तौर खवातीन जो कि अच्छा सा फार्मूला बना के अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो आप लोगों ने लेना है जी एक ऑयल फ्री सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम को ऑयल लेने के बाद आप लोगों ने इसमें एड करो

होना चाहिए, ठीक है, उसमें आप मिक्स करेंगे सो दैट इससे आपको मजीद और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और विदाउट एनी साइड इफेक्ट मिलेंगे. अच्छा, मिक्स करने के बाद आप इसको स्टोर कर लें. स्टोर करने के बाद रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें. लेकिन फेस के ऊपर अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपका फेस जो है अच्छे तरीके से क्लेंज होना चाहिए. और वो कैसे होना चाहिए, सुपर वाइज का ऑयल फ्री फेस वॉश ले लें, उससे अच्छे तरीके से फेस को वॉश करें. वॉश करने के बाद खुश करें और इस फॉर्मूले को अप्लाई करें. पहले ही 3 दिन में रिजल्ट देखें जो कि आपको हैरान बना देने वाले रिजल्ट्स

नसीम का, निहाल नसीम का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि हम सुनेंगे और सुनते सुनते जाएंगे न्यूज ब्रेक एंड फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट कॉस्मेटिक्स, सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Sunenge GAFM Net.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics.
6: Long March La Helicopter.
7: पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मोहसिन नकवी जो सोलाफदी ते गालियूं नाकाम बणाइण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो सलमान अकरम राजा चयो आहे त ॻाल्हियुनि में नाकामीअ जो नाकाम बणाइण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो सलमान अकरम राजा चयो आहे त ॻाल्हियुनि में नाकामीअ जो ज़िमेवार सुहेल आफरीदी नाहे 72 कलाकनि दौरान केपीके जे 5 ज़िलनि में एमरजेंसी लॻाइण जो चयो वियो ॿुधायो वञे त पीटीआई वफ़द आॾो रखियल मुतालबनि में कहिड़ो मुतालबो ग़ैर आइनी या वस खां ॿाहिरि आहे वफ़ाक़ी वज़ीर असांजो पिरगर्द ठिकाणो आत्मो ऐं टियों अफ़गानिस्तान बाबति परॾेही पॉलिसी ते अमल करणु आहे असांजो असल मक़सदु लॉन्ग मार्च रोकण बाबति परॾेही पॉलिसी ते अमल करणु आहे असांजो असल मार्च रोकण गर्दीअ जो

0: या पावा आई पाइप छह नव इंच में प्लेन आई कालम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाय खुसूसी रियायत हुंदी रारा आई तो टोरा ट्रेवी
1: सत सात आठोस आई होंडा

0: खरी रोड मेहरा पर 03008569।
1: अदा छो फिर अदा नौ दुकान ले न तो चले तो मो पंजो

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आर जी रुखसार, और आपका मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है darris@facebook.com/gfm88 के पेज के ऊपर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग उसके नीचे, ठीक है. और इसके अलावा आप लोग मुझे 8881 पे भी मैसेजेस कर सकते हैं जिन लोगों ने कमेंट कर दिए. कमेंट की तरफ आते हैं एंड देन फिर हम आएंगे जी, हम आएंगे सुपर वाइट की तरफ और सुपर वाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत खूबसूरत बनाते हैं. अच्छा, हमें जवाहर बच्चल ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच. रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही है, किशोर कुमार हमें सुन रहे हैं. हम आ गए हैं जाने के लिए, कैसे हैं आप? आप तो ठीक हैं, घर वाले आप में सब ठीक हूँ, मतलब अच्छा वही वफाई हमें सुन रहे हैं. माशाल्लाह आप कैसी हैं? माशाल्लाह मैं ठीक हूँ, माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन है और माशाल्लाह सुपर वाइट की तरफ से है. माशाल्लाह मैं रीड कर रही हूँ, माशाल्लाह कॉल्स भी लूंगी, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह.

ब्यूटीफुल सॉन्ग सॉन्ग के साथ साथ हम चल रहे हैं आगे और सुपर वाइक के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको हम बताएंगे और जो कि बहुत खूबसूरत बना देते हैं. आप इससे डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज भी तैयार कर सकते हैं. जी डिफरेंट फार्मूलाज कैसे तैयार करेंगे, सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को ले लेंगे और सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम लेंगे जी. कोई भी लाइक इसमें से आप सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स में से कौन सी ब्यूटी क्रीम ले सकते हैं. सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी भी लेंगे जी. इसके अलावा जी सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम ले सकते हैं. अच्छा, जिन लोगों को छाइयों का इश्यू रहने आपको बताया वो वाइटामिन सी क्रीम यूज करें. ठीक है, इसके अलावा जो लोग कोरियन ग्लास स्किन हासिल करना चाहते हैं तो कोरियन ग्लास स्किन जो है आपको मिलेगी स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जो कि सुपर वाइट वाले स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट के साथ बनाते हैं. तो अगर आप इसमें सुपर वाइट के बूस्टर को ऐड कर लेते हैं, सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर, तो सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर अल्फा आर्बुटीन नाइसिनमाइड विटामिन B3 कोजिक एसिड के साथ आपकी क्रीम के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करके आपको पहले 3 दिन में विजिबल रिजल्ट देगा. ठीक है, तो आप बूस्टर को ऐड करें और बूस्टर को ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करें, स्टोर कर लें क्रीम को, और क्रीम को स्टोर करने के बाद ना रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर जरूर अप्लाई करें. एंड अप्लाई करने के बाद देखें कि पहले 3 दिन में आपको कितने खूबसूरत रिजल्ट्स मिलते हैं. अच्छा, इसको मजीद और एनहेंस करने के लिए सुपर वाइट का कोरियन फार्मूला स्ट्रॉबेरी फेस वॉश को जरूर जो है आपने यूज करना है. इसको यूज करना ना भूलें. ठीक है, दिन में जितनी भी बार फेस वॉश करें इसी से करें. और आप इसको जितनी भी खवातीन हैं और वर्किंग वुमेन्स हैं वो अपने साथ इसको बैग में भी कैरी कर सकती हैं. बैग में कैरी करके आप जो है इसको कहीं भी अपने साथ ले जा सकती हैं, वहां पे फेस को वॉश करके. ठीक है, क्लिनजिंग बहुत जरूरी है फेस की. जहां आप क्लिनजिंग करना छोड़ते हैं वहीं पे मसले खराब होते हैं. ठीक है, तो ये खास ख्याल रखना है और खास ख्याल रखते हुए ना इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके मुझे जरूर जो है फीडबैक अपना देना है. हेल्पलाइन नंबर बताऊंगी गाने के साथ.

टॉक ही चलेंगे और गाने के साथ साथ आप लोगों की लाइव कॉल को जो है एंटरटेन हो 3000-11-3488 और साथ में सुपर वाइट वालों का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताती जाऊंगी. तो डायरेक्ट आप उनसे कॉन्टेक्ट करके मार्केट्स और एरियाज तो डायल करेंगे 03

21. मुमताज हसन खान साहब का ये नंबर है 03 7 2 5 6 8 3. सखर और लाड़काना वाले डायल करेंगे 03 1 4 7 7 5 4 6 2. उनका इमरान साहब का ये आने वाले जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो इनसे कांटेक्ट करके अपने गरीबी मार अवेलेबल सकते हैं। दिल्ली

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, बायोपर्सनल पाकिस्तान।
2: अरे न खुश्क बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइक छा डैमेज डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के डिफरेंट निहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जै जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10:00 खां

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश ॾियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वधण उन्हनि सां राबते लाइ 1-91-8-51
1: झड़ने से अब फिकर छो मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी लेकर आए मौसर इलाज 100 सोम्स आद बालों का झड़ना कम करने में मदद करो में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें एलर्जी एंड लेजर अक्सा 0385569
2: रोशना मंजिल की तरफ गामजन मसा सिस्टम मेहरम एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनकार मुशाक बागीचा बेहतरीन फर्नीचर कंप्यूटर बायलोस ऑडियो लेक्चर सिस्टम की सहूलत और इंग्लिश पर खुश एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और नतीज खेलों का मैदान और वहाँ वाले मुकरीर तकरीर जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर आँखों के नो और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरत करें आपने के लिए दा हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल 0327234 निसार मन प्रिंसिपल स्कूल 0301386453
0: आयरन स्टोर हालानी नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया टी चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रे वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब
0: आयरन बलोच पेट्रोल हाईवे हालानी
3: रबते लाए प्रोपराइटर गुलाम 0300-3204-372 0242-4700
1: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी खर्चमान जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 आटोज पुराणी सिंध मेहरापुर तां सुपर बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट हेर मकेनिक जी सहूलत पिणु मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾो गॾु A1 आटोज थर मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0358-03-08956 A1 आपुर एतमाद जो
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
0: यार आज कल स्टेशन में जीए मेरा पर FM 94 पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो
4: कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मजलिस जी एडवाई आए
5: अदा जल्दी के एड्रेस तो बुदा
0: मेरा पर FM 94 नजगज हालानी रोड में सूरम 80-83-47
6: पुर की है सुनते माहिर

हाय जी, वेलकम बैक टू सुपर वाइट एंड सुपर वाइट के अलावा जी अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले जो कि सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो कि आपको खूबसूरत सुपर वाई के प्रोडक्ट्स जहाँ जहाँ अवेलेबल नहीं है आज ही अवेलेबल करवाएं. एंड हेल्पलाइन नंबर है जी हैदराबाद के लिए मुमताज हसन खान हैदराबाद से आप इनको रابطہ कर सकते हैं, यानी कि ये हैदराबाद से हैं, आप इनको رابطہ कर सकते हैं. जितने भी हैदराबाद वाले लिसनर्स हमें सुन रहे हैं ठीक है 03 70 25 68 321 ठीक है जी, ये हैदराबाद वालों के लिए साहब का नंबर. इसके अलावा जी सखर और लाड़काना वाले साहब से रابطہ कर सकते हैं, आपका नंबर है जी 03 14 5 6 2 03 17 ठीक है जी. तो आप बिल करवाएं, इनकी फेस वॉशेस की बड़ी अच्छी रोड जो है फूलना और फेस वॉशेस पे कोई एक अच्छा फेस वॉश नहीं मिल रहा, इतने सारे अच्छे फेस वॉश भी उनके साथ ठीक है 100 ml की पैकेजिंग के अंदर मिलते हैं ये तमाम जो जितनी भी फेस वॉशेस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ठीक है. सुपर वाइट का विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश भी है जिसको ब्राइटनिंग फेस ये भी आप लोग और मेक श्योर जब आप इसकी ब्यूटी क्रीम यूज कर रहे हो तो सेम ही आप लोगों ने इसका फेस वॉश भी यूज करना है. लोग सुपर फेस वॉश है यानी कि एंटी टर्मेरिक है तो टर्मेरिक क्रीम के साथ टर्मेरिक फेस वॉश भी आता है इनका, आइस कोलेजन फेस वॉश आता है सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम के साथ इसको यूज करना है. डबल से टल्स मिलेंगे आपको ठीक है और ली जो है बड़ी में आती है जी और बहुत अच्छे फ्लेवर्स यानी बात करूँ तो अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स लेमन है ये मिल जाती है. इसके अलावा इनकी कोकाओ की पैकेजिंग और जार भी इतना कमाल का आप तैयार कर सकते हैं हैंड्स एंड फीट्स के लिए. जैसे कि मैंने बताया सुबह ब्यूटी क्रीम लेके उसकी क्वांटिटी के बराबर सुपर वाइट की पेट्रोल में तैयार है आपका हैंड्स एंड फीट फार्मूला. इसको रात को सोने से पहले अप्लाई करें, जहां आपका फेस रहा है वहां पे आप अपनी हैंड्स एंड फीट मजीद उतना ही खूबसूरत बनाएं जितना कि आपका फेस है. ठीक है, रियलिटी होनी चाहिए दोनों में. इसी के साथ हम गाना चाहिए एंड द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल बाय आतिफ असलम कॉल्ड हूँ इश्क में. इसको हम सुनेंगे और आगे चलेंगे.

0: ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ आप लोगों की कॉल्स को एंटरटेन करते हैं हम. और नेक्स्ट कॉलर लेने जा रहे हैं, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. जी हेलो.
1: वालेकुम सलाम, मोहम्मद हनीफ शाह आपका कॉलोनी गुड्डू जिला कश्मीर से.
0: अरे वाह मोहम्मद हनीफ शाह भाई, इतने दिनों बाद कॉल कर रहे हैं, किधर से आए हैं?
1: आपको छोड़ा तो नहीं मैं.
0: मुझे छोड़ा तो नहीं, ये बात भी है, लेकिन इतने दिनों बाद कॉल की है तो मुझे बताया कैसे. ठीक ठाक,
1: कुछ दिन दूसरों को भी मौका देना चाहिए ना.
0: हाँ लेकिन बहुत ज्यादा दिन आपने मौका दे दिया. इतने ज्यादा मौके नहीं देते. अच्छा मुझे, हाँ मुझे बताएं कि कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, आप सुनाएं.
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ बिल्कुल प्रोग्राम सुनते हैं आपका. ये कम से कम कभी कभी नशरियात बस कम आती है, लेकिन प्रोग्राम आपका सुनते हैं.
0: प्रोग्राम मेरा सुनते हैं, ये बात है कि प्रोग्राम सुनते हैं. अच्छा मुझे बताएं कि प्रोग्राम किसके तामुन से है आजकल?
1: प्रोग्राम नाम थोड़ा मुश्किल है, आप एक बार बताएं फिर रिपीट करूंगा.
0: नाम मुश्किल नहीं है, तभी तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. अगर कोई मुश्किल नाम वाली होती ना तो मैं तो खुद ही नहीं लेकर आती आपके लिए प्रोडक्ट. आप लोगों को याद ही नहीं होती आप क्या मार्केट जाते हैं क्या लेते, इसलिए आसान नाम वाली प्रोडक्ट हम लेकर आए. नाम भी आसान है, रिजल्ट भी कमाल के हैं, और नाम है सुपर वाइट.
1: सुपर वाइट,
0: ठीक है, सुपर वाइट नाम है. अब याद कर ले, जहन नशीन कर ले.
1: अभी नशीन कर, क्योंकि मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ ना ये नाम.
0: ओके ठीक है, तो अब सुनते रहें और प्रोडक्ट्स को भी यूज करें, और मैं चाहूंगी कि आप यूज करें.
1: हाँ क्योंकि मसरूफियात थी ना, आपके सखर में ही आना जाना था सर्टिफिकेट के हवाले से, तो मैं प्रोग्राम नहीं सुन सका, ये इसलिए आज पहली मरतबा सुन रहा हूँ, तो कॉल भी की, प्रोग्राम भी सुन रहा हूँ. सुपर वाइट क्योंकि जहन आजकल बहुत तरफ होता है इंसान का.
0: बस जहन में ये रखें कि रंग चिट्टा करने वाली क्रीम है, चिट्टे को इंग्लिश में व्हाइट कहते हैं, तो बन गया सुपर वाइट.
1: ठीक है, आपको खरीदेंगे.
0: चलें ठीक है, जरूर लीजिएगा. और कुछ कहेंगे?
1: बस प्रोग्राम आपका बहुत बहुत बेहतरीन होता है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन हमारा दिल बस कहता है कि आपको कॉल करें. प्रोग्राम जब सुनते हैं तो फिर रहा नहीं जाता,
0: प्रोग्राम सुनते हैं तो रहा नहीं जाता, कॉल करनी पड़ती है. बस यही बात तो है ना, यही बात है कि आप लोग खिंचे चले आते हैं. थैंक यू सो मच. और कुछ कहेंगे?
1: बाकी सब सुनने वालों को सलाम, खुश रहें, आबाद रहें, ओके, मुस्कुराते रहें.
0: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज. 03000113488 के ऊपर बहुत सारी लाइव कॉल, जिंदगी गुलजार है. बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स.

अच्छा इस्मा के शो कमेंट कर रहे हैं, आपके शो को 2 से 3 दिन से सुन रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है सवाल टॉपिक, ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छा मतलब आपको बात करने के लिए मुद्दा चाहिए, मुद्दे पे बात करना चाहते हैं आप. ओके ठीक है, आप लोगों के लिए हम मुद्दा लेकर आएंगे, यानी कि टॉपिक लेकर आएंगे. जो बीत गया मुझे ना शो को डिजाइन करने का वक्त नहीं मिल सका, बट चीजें करते करते बेहतर हो जाती हैं, चीजें करते करते मजीद और खूबसूरत हो जाती हैं. ठीक है तो ये है और मंजिल आपकी यही है, मंजिल का नाम है, जिंदगी गुलजार है. मंजिल को खूबसूरत बनाने के लिए इस सफर को स्पॉन्सर कर दिया है जी सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स वालों ने. ठीक है तो ये बात है. हाफिज यूनस बाबर हमें सुन रहे हैं, जबरदस्त शो लग रहा है इनको. रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, नाइस शो लग रहा है, हैदराबाद से सुन रहे हैं जी, हैदराबाद वाले. वाओ गाना खत्म हो चुका है और गाना हम दूसरा प्ले करेंगे, और दूसरा जो गाना हम प्ले करेंगे वो होगा बहुत अच्छा. और वैसे तो हम सारे गाने ही अच्छे प्ले कर रहे हैं लेकिन हम और भी ज़्यादा अच्छे गाने लगाने की कोशिश करेंगे. और लास्ट मेरे ख्याल से हम जाने की तरफ मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जाना पड़ेगा हमें क्योंकि जाने का वक्त करीब आता जा रहा है. सो जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स, बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स, जिनके हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताते जाऊं हैदराबाद वालों के लिए. मुमताज हसन खान साहब से राब्ता कीजिए 0370256832 1. सक्खर और लाड़काना वाले डायल कर सकते हैं 0314775442. ठीक है तो ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं जी, इनको आप लोग जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के बाद अपने करीबी मार्केट्स और एरियाज में अवेलेबल करवा सकते हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स सुपर वाइट के, जिसमें वाइटामिन सी ब्यूटी क्रीम, स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की फ्रैकल ब्यूटी क्रीम, इसके अलावा सुपर वाइट की ऑयल फ्री एंटी एक्नी क्रीम और सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर और इनके फेस वॉशेस की बड़ी जबरदस्त रेंज. तो ये तमाम खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स, और इसी के साथ ये खूबसूरत सा सफर यहीं खत्म होता है, कल दोबारा शुरू होने के लिए. ठीक है तो कल सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे, सुनना मत भूलिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सुबह कुछ यूं देख

पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मोहसिन नकवी जी सोहेल आफरीदी ते गालियों नाकाम बनाने वाले इल्जाम के रद्द करे छो। सलमान अकरम राजा चयो आए त गालियों जी नाकामी जो जिम्मेवार सोहेल आफरीदी ना है। गालियों दौरान केपीके जे पंज जिलन में एमरजेंसी लगाने जो चयो वयो, एमरजेंसी लगाने जी इजाजत नथा देई सघूं। बुधायो वे तो पीटीआई वफद आडो रखल मुतालबन में कड़ो मुतालबो गैरानी या वस का बाहर है। वफाकी वजीर तारिक फजुल चौधरी है असो पे मुतालबो टीटीपी ए दहशतगर्दन की मजम्मत, बो केपीके में दहशतगर्द ठिकाणन जो मुकम्मल खात्मो, टों अफगानिस्तान बाबत परदेही पॉलिसी अमल करना है।

पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह सां गॾु इस्लाम कोर्ट पहुची वियो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन वरे वजीर सां गॾु बख्तावर एयरपोर्ट ते पहुतो। मकामी एमपीएस बिलावल भुट्टो जरदारीअ वरे वजीर जो आदर भाव कयो। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान जे पहिरें कोयले खुश करण वारे यूनिट जो इफ़्तिताह कंदो। में 10 सालन दौरान 340% जे तारीखी वाद जो इंकशाफ़। 10 सालन दौरान सरकारी

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
4: सुपर वाइट।

0: ताईं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03032295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 ऑटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
3: 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592104 3592 3 0 1 3 9 9 2 8 3 6 अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

ओके जी, आप सुन रहे हैं वाई टेशन जी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है जनाब जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप लोगों की खूबसूरती का जिम्मा उठाए फिरते हैं जनाब, अगर आप भी जी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आपको भी वो वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो कि भाई उन लोगों को मिल चुके हैं जो जी स्किन ब्यूटी क्रीम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे पूछिए तो जरा कि उनको कितने प्यारे रिजल्ट्स मिले हैं। जो लोग आपको ये बताए ना कि भाई जी स्किन ब्यूटी क्रीम हमने इस्तेमाल कर लिए, तो बैठकर तसल्ली से उनकी बात सुन ले और आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि भाई सिद्रा जो भी बातें बताती वो बिल्कुल सही बताती है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के ऊपर इस तरह से वर्क करती है कि भाई जब आप देखेंगे अपना चेहरा तो खुद ही कहेंगे कि भाई ये तो कमाल दमाल हो गया। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन का फेस वॉश है, ये दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप किसी भी दुनिया के कोने से हमें सुन रहे हैं, किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है, किसी भी गाँव से आपका ताल्लुक है, आप हर अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा सकते हैं और इजिली जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। अचानक अलावा असा प्रोग्राम में थोड़ा अगते वधूं था, प्रोग्राम जी जे सवाल जी तरफ अचूं था, क्योंकि प्रोग्राम का जो टॉपिक होगा ना वो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं। तो आज खैर से फाइनली टीचर्स डे है। हाँ जी बिल्कुल, सुबह से उठे देखा हर तरफ टीचर्स डे टीचर्स डे। बिल्कुल जी, तो मेरी तरफ से तो भाई सब जितने भी टीचर्स हजरात मुझे इस वक्त सुन रहे हैं सबको हैप्पी टीचर्स डे। और टीचर्स का जो रुतबा है ना, टीचर्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। अगर टीचर्स ना होते तो हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होते, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं होते, हमारे पास कुछ भी नहीं होता समझ लीजिए। तो टीचर्स का हमारी लाइफ के अंदर बहुत अहम और बहुत अच्छा वाला रोल है और उसे हमेशा याद करना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर आज के प्रोग्राम में सवाल की बात करें तो मेरा आप लोगों से जो सवाल होने वाला है वो हम जरा आज अपने उस्तादों को याद करेंगे और वो कैसे, क्योंकि आप मुझे ये बताएं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा टीचर रहा हो जिसने आपसे कुछ कहा हो और आपको वो आज तक याद है, क्योंकि काफी टाइम गुजर चुका आपको अपने स्कूल छोड़े कॉलेजेस छोड़े। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कोई बात जो कि आपको अपने टीचर की याद रह चुकी है कि भाई फला टीचर ने मुझे ये बोला था और ये बात जो है ना वो काफी मोटिवेशनल आपकी लाइफ में साबित हुई है और आप जब भी उसी बात को याद करते हैं तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और आप अच्छा सा फील करते हैं। तो आप मुझे बताएं ऐसी कोई बात जो कि आपको, हाँ जी आपके टीचर ने बोली थी और वो आपको बड़ी अच्छी लगी थी। उन्हें कहा अलावा जी को बस अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुनने वाले हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो इतने प्यारे खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर किया करें। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आपकी स्किन के लिए क्यों जरूरी है ये मैं आपको पूरे प्रोग्राम में बताती रहूंगी। तो आप हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हम बहुत सारे लोगों को बता पाए कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप भी अपने चेहरे को चमका सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के यूज से। और साथ ही साथ मुझे बताइए आपका कोई ऐसा टीचर जिसने आपको कोई ऐसा वर्ड बोला हो, ऐसा कोई जुमला बोला हो जो अभी तक आपको याद है, वो ऐसा मोटिवेशनल की तरह आपकी जिंदगी में काम किया उस वर्ड ने उस जुमले ने, ये आप मेरे साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जनाब, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को हम कहाँ से अवेलेबल करा सकते हैं या फिर कैसे अवेलेबल करा सकते हैं, कई मरतबा तो ये वाला सीन हो जाता है कि आप लोग नंबर जो है ना वो नोट नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि भाई आप नंबर हमें बताते रहें प्रोग्राम में ताकि हम नोट कर सकें, और नंबर के ऊपर रब्ता करके हम भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराएं, तो बिल्कुल आप अवेलेबल करा सकते हैं। अभी आपको नंबर बताने लगी उनके ऊपर जरा गौर कीजिएगा, नंबर को जल्दी जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर के ऊपर डायल करके अवेलेबल कराइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन के फेस वॉश को। उन्हें कहा अलावा नंबर की तरफ अचू था, नंबर आए जनाब ओके जी, पहला नंबर है 033273843 09 बोरी 373
84 309 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-12-50-25-907 ॿुड़ी 312-50-25-907 ही ॿई नंबर सां जेके तव्हांजी आसानी जे लाइ आहिनि तव्हां हिन नंबर से राबितो करे सघो था कॉल करे सघो था या वरी मैसेज करे सघो था तारिक भाई तव्हांखे रिस्पॉन्स ॾींदो बाबा ऐं तारिक भाई जेको आहे वेठो आहे तव्हांजे लाइ त केॾी महिल असांजा लिसनर असांखे कॉल कनि था ऐं किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराइण लाज़मी थी चुको आहे सो तव्हां बि अवेलेबल करायो ऐं टेक्स्ट मैसेज कयो या वरी कॉल करे सघो था सो अवेलेबल कराईंदा रहो ऐं इस्तेमालु कंदा रहो ऐं सुहिणा थींदा रहो और जी पोस्ट को लाइक और शेयर रखा करें ठीक है शेयर करने से भाई मोहब्बतें बढ़ती है शेयरिंग इज केयरिंग होती है उनके अलावा अचूं तो तुम्हारी कॉमेंट्स की तरफ थे जैन अली हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि उस शख्स में क्या अच्छा है अच्छे अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है हाय अल्लाह क्या बात है कहते हैं उसे कहना दिल की चाहत हो तुम वरना या वरना बा खुदा इन आंखों ने बहुत हसीन लोग देखे या तो हकीकत आ कहते हैं कि फकत एक का होने में ही हुस्ने बंदगी है बिल्कुल जी बिल्कुल तमाम सही आए हो बिल्कुल सही आए हो नजर मोहम्मद भट्टी हमें सुन रही है वालेकुम अस्सलाम कहते कैसी है सिस्टर मैं ठीक हूँ प्यारे भाई आप हमें मटियारी से सुन रहे हैं सिस्टर आप सिर्फ निगत नाज का गाना चलाती हो शाजिया मारवी के सॉन्ग भी चलाओ ना हाजिर हाजिर मैं कोशिश कदम शाजिया मारवी जा गाना भी तांके बुधराइंदासी और फैसल अहमदानी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम फैसल अहमदानी लिखते हैं सोच समझ कर रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम जब ये चलती है किनारा नहीं मिलता जब ये डूबती है तो सहारा भी नहीं मिलता या तो हकीकत आए बिल्कुल और जैन कहते हैं कि तेनों सामने बिठा के तस्वीर बनावा ये सॉन्ग लगा दो मां दिसां थी बिल्कुल ना गाने के हलाए वठनासी परवा कहती है अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे हैप्पी अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस आई होप यू आर फाइन यस मैं ठीक हूं आप बताएं कैसी हैं और बरकत रमादानी जमाली बलोच में सुन रही हैं वालेकुम अस्सलाम जेकब अब्बासी आपने मुझे ज्वाइन किया है नहीं भाई आपने मुझे बलूचिस्तान से ज्वाइन किया है बहुत शुक्रिया प्यारे भाई और फैसल में ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं ठीक ठाक है मजे में हैं और तारिक भाई हमारे साथ हैं तारिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई और आपको भी वेलकम हो गया तारिक भाई लिखते हैं कि वसीम ट्रेडर्स कंडियारो वसीम भाई हमारे बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और कंडियारो सिटी में हर शॉप पर अवेलेबल कराई हुई है उन्होंने क्या कहने भाई वसीम भाई की मेहनत को सलाम और यहाँ पर आप सब लोग जितनी भी डी स्किन की टीम है जितने भी वाइटिश की टीम है वो सारे भाई अपनी मेहनत कर रहे हैं आप सब लोगों को इस मेहनत का फल मिलेगा और अल्लाह पाक आपके रोजी में बहुत बरकत देगा इंशाल्लाह भाई ऐसा सब एक ही टीम आयो और परवा की थी आप ही आज पूरी दुनिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है ये हिसाब से सवाल भी मैंने पूछ लिया जवाब दीजिए मुझे और उन्हें कहा अलावा फैसल कहते हैं कि सब दोस्तों का सलामो कीजिए वालेकुम अस्सलाम अली रजा लगारी वालेकुम अस्सलाम गोठ जाम खान लगारी से कहते हैं सिस्टर कैसी हैं आप शो तमाम नाई से सॉन्ग तू मुखे वणी थो या गाल बिया मां कोशिश कयां थी गानो हलाईंदासी डेडिकेट टू अज़र लगारी आकिब लगारी आर्जी गुलाम मुस्तफ़ा टालपुर इमाम बख्श खोखर सिस्टर ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है जो हम यूज कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सिस्टर सिद्रा ऐसे ही बिल्कुल प्यारे भाई यूज करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप लोगों को नेचुरली खूबसूरत बना रही है यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप बताएं तो क्या कर रहे हैं क्योंकि इतना खूबसूरत निखार आपके चेहरे पर आ चुका है आपके चेहरे की स्किन टाइट हो चुकी है आपके चेहरे पर रिंकल्स फ्रिकल्स क्रिकल ये सब चीजें खत्म हो चुकी है आप दिन ब दिन ग्लो करते जा रहे हैं ये कमाल बताइएगा उनको डी स्किन ब्यूटी क्रीम का है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी ट्राई करके देखिएगा क्योंकि फायदे ही फायदे है मेरी जान ट्राई तो करके देखिए और जनाब पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए क्योंकि यहाँ ओके जी अब्बासी भाई को कहते हैं कि हर लिखा है अच्छा आपने लिखा है कि हर कोई दुनिया को बदलने का सोचता है लेकिन कोई खुद को बदलने का नहीं सोचता हम उंगली दूसरों पर उठाते हैं मुआशरा खराब है लोग अच्छे नहीं हालात बदलने चाहिए मगर आईने में खुद को देखने से डरते हैं या गाल तो मां हमेशा चवंदी आहियां त बाबा दुनिया के तमाम बाद में चेंज कयो तब्दील कयो पहिरियों पाण खे त तब्दील करे ॾिसो छो त अगर आप अपने अंदर चेंज लाएंगे तो समझ लीजिए दुनिया ही अच्छी हो गई है बाबू खान अबड़ू हमारे साथ कहते हैं आपका शो शौक से सुनते हैं बहुत शुक्रिया बाबू खान अबड़ू और किशोर भाई कहते हैं कि आयो आयो किशोर आयो अल्लाह जाए आपको देखकर पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ जाती है चलिए आप पोस्ट पर बने रहिए यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का
शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आ जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, अपनी ना सीट पर बैठी रहिए और मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। White Asian D Skin Beauty Show is sponsored किया जा रहा है D Skin Beauty Products के तावन से। तो D Skin Beauty Products का यूज कीजिए और आप भी खूबसूरत हो जाइए, ठीक।

0: It's 1:30 PM.
1: अव जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न, खुश्क और बेरोनक की स्किन, हर इन्हीं जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट। पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश ख़बरी, पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे ख़र्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर।

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8051
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड इज ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होती हैं जनाब, और क्यों ना हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया दीवानी है। आपको भी तो पता चले कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं तो कुछ क्वालिटीज हैं जिनके बारे में आप जान लीजिए, पहचान लीजिए। अगर आप जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही प्रोडक्ट परचेज करके आए, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि कुछ हमारे मासूम से लिसनर्स हैं जो जाते हैं परचेज करने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, लेकिन दुकानदार उनको कोई और प्रोडक्ट दे देता है और फिर वो लेकर आ जाते हैं, कहते हैं भाई बाजी असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो हणू था पर असा के रिजल्ट ओड़ो न मिलियो आज तो बुधाईंदा। तो अगर तुम दिसंदा तो वह डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुंदी ही कोना। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कुछ निशानियों आए जी तक खबर हो जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम परचेज कर वो तो तक फुल तैयारी से वो तक कोई भी दुकानदार बेवकूफ न ठाए सके। सो बिल्कुल जी, आप भी जाइए और परचेज कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ये सब लोगों के लिए, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, क्योंकि आपके घर का, हाँ जी, ये भी रूल होता है ना कि हर एक जो लोग होते हैं वो अपने लिए अलग अलग तरह तरह के प्रोडक्ट्स की तलाश में होते हैं। वो चाहते हैं कि भाई हमारे लिए हमारे हिसाब वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, और ऐसा वाला सीन हो जाता है कि उस हिसाब से देखा जाए तो आपके घर में ढेर लग जाते हैं भाई प्रोडक्ट्स के। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे घर में ढेर ना लगे आपके पास, या तो इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता कि आप लंबी चौड़ी स्किन केयर कर सके, या फिर इतना टाइम नहीं होता कि भाई आप इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंतखाब करें, लेकिन एक ही आपके पास प्रोडक्ट होना जरूरी है जो कि है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास बात मुझे बहुत कमाल की लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो चीजें ऐड की गई है ना, वो आप लोगों को रिजल्ट्स देने वाली हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, और ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, ये जनाब महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर ऐड किए जाते हैं। जब आप कोई महंगा सा फेशियल कराते हैं ना, तो आप लोगों को जैसे रिजल्ट्स मिलते हैं तो बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी कमाल की बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसे स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स ने तैयार किया है, और इसके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स के अलावा अल्फा अरबुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम रिच चीजें जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई है, ताकि आप लोगों को जो रिजल्ट मिले वो भी अच्छे खासे मिले। तो जनाब अगर आप भी परचेज करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को बिल्कुल जी दिल से लगाइए। और जरा ऐसा वाला सीन है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी स्किन तो सेंसिटिव है, हमारी स्किन तो कॉम्बिनेशन टाइप है, इस तरह की जो स्किन जिन लोगों की होती है ना, वो थोड़ा सा वाकई ऐसा होता है कि वो थोड़ा परेशान होते हैं कि भाई हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाने हैं, हमें खुद ही समझ नहीं आती। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम भाई साहब ये ऑल स्किन टाइप के लिए। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, या फिर कॉम्बिनेशन टाइप हो, तो हर स्किन के ऊपर आराम से आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो एहसास होगा वो इतना नरम और खूबसूरत एहसास होगा कि आपकी स्किन के रूटीन जो है ना वो मजीद खास हो जाएगी, आपकी स्किन के रूटीन आसान हो जाएगी, और आपकी स्किन जो है वो साफ सुथरी और अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। आपके जल्द की जो ताजगी होती है जनाब वो बरकरार रहती है, और आपके चेहरे पर जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स हों, क्रेकल्स हों, रिंकल्स हों, या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा इस तरह के निशानात आ जाते हैं जिनको रिमूव करना आपको लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, और ये बिल्कुल पॉसिबल है जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज के फौरन बाद ही आपके चेहरे की स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी, और नेचुरली आपको महसूस होगा कि भाई आपका जो चेहरा है ना वो खूबसूरत हो चुका है। तो आप मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई इस्तेमाल करते रहिए, और जो नंबर्स आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर राबता करते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश। अच्छा, फेस वॉश की क्या क्वालिटीज है उसके बारे में बिल्कुल आप लोगों के साथ बात करेंगे, उसके बारे में भी बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके मुझे लग रहा है कि कॉमेंट्स जो है ना वो ऊपर चले जाएंगे, तो मैं जरा कुछ आप लोगों के कॉमेंट्स रीड कर लेती हूँ। जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है, हमारी पोस्ट को आप जरा लाइक और शेयर करते जाइए। और जी
यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है वफा शहजादो मक्सी भाई लाड़काना से। आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे, कहते हैं प्रोग्राम लाजवाब आए, थैंक यू वेरी मच सोना भा। और दर्दे दिल लगते हैं कि हर वो टूटना जो आपको अल्लाह की तरफ ले जाए, दर हकीकत जुड़ना होता है। अगर चाहे वो आपको कितना ही तकलीफ दे, जो तकलीफ अल्लाह से जुड़ने का सबब बने वो तकलीफ तकलीफ नहीं, दर हकीकत राहत होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और किशोर भाई कहते हैं कि अदा मुख्य उस्तादन रुगो कुटकी डिनिया आ कहके याद कया। सच्ची बुधायो कोई अड़ो उस्ताद न गुजरो तांजी जिंदगी मा जेको भाई तमा के थोड़ो मोटिवेशन वारो को जुमलो चाही वयो हो जे आई तमा उनके याद करे अजे दिन ताई थोड़ो खुश थिंदा हो जो त बाबा वाह वाह ही फलाण उस्ताद मुझे जिंदगी में कमाल जो होयो। और चाचा खालिद कहते हैं कि हां मां उर्दू मीडियम मा मैं पढ़ा था और हाई स्कूल का एक टीचर कहता था हवा चला नहीं कवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। ये टॉपिक आंसर अच्छा ये जुमला आपको याद रह गया, सही बात है ये भाई। लोग जो दूसरों की कॉपी करते हैं वो दरअसल अपनी पहचान भी खो देते हैं। और मोहम्मद जमान हमारे साथ है, वेलकम कहते हैं प्यारी भाई आपको भी। और चाचा कहते हैं झंडो मरी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी या न? बिल्कुल जी मिले थी। वधी कहते झंडो मरी वारा बुधाईंदा असांके झंडो मरी वारा दियो तो हाल अवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवाज एरिया में मिले थी। और अब्दुल करीम गांगरो हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम भा मैं ठीक हूं बुधाई की आयो ठीक ठाक आयो। और आबिद अली हमारे साथ ही प्यारे भाई आबिद आ चुके हैं, कहते हैं हम आपको बेरिया रोड से सुन रहे हैं, कहते योर वॉइस इज अमेजिंग सिस्टर, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई आपको वेलकम इन खुशा मदीद कहते हैं। और आप भी हमारे प्यारे भाई हैं। और किशोर भाई कहते हैं कि तारिक भाई रोज वेठो हुंदो आहे सुम्हे नथो छा, तारिक भाई रात जो सुम्हंदो आहे ॾींहं जो पंहिंजो कमु कंदो आहे। सो तारिक भाई खे तव्हां ॾींहं जो कॉल करे सघो था पर रात जो भी करे सघो था पर थोरो सवेर जो कजो, लेट सां त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे हर को सुम्ही पवंदो आहे। सो तव्हांखे ॾींहुं मिलियल आहे न सॼो, ॾींहं में पंहिंजा सभु कम जेके आहिनि उहे मुकाए छॾींदा कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो, ठीकु आहे जी। तव्हां बि इस्तेमालु करे सघो ऐं तव्हां बि सुहिणा थी सघो। अच्छा ये मौजूद वाजे सिंधी अदि कीअं आहियो मीरपुर ख़ासि खां तव्हां सुनो प्रोग्राम ॿुधो पिया अदि सफ़ा भली आहे तव्हांजो हाल अहिवाल कीअं आहियो ठीकु ठाक आहियो मज़े में आहियो। इक़बाल लाशारीअ में सुन रहे हैं जी मीरपुर ख़ासि, इक़बाल भाई आपको भी वेलकम इन ख़ुशामदीद। अब्दुल गफ़ार भाई वालेकुम अस्सलाम सलामत रहें जी आप भी, मेलसी से आप हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद, मेलसी में भी मिल रही है आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम। दानिश खान हमें सुन रहे हैं कराची नाजमाबाद, मेरा बेटा अब्दुल्ला सलाम कह रहा है, वालेकुम अस्सलाम आप दोनों को वेलकम कहते हैं। अली शेर बिरोही हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बहना सिद्रा कैसी है, शो बेहतरीन हो रहा है। अली शेर बिरोही फ्रॉम मीरपुर बठोरो, हमारे सिटी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल अभी तक नहीं हुई है। अली शेर आपके बिल्कुल करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है। आबिद भाई को बोलेंगे या फिर हम तारिक भाई को बोलेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाबू खान अबड़ो कहते हैं मेरा मैसेज रीड नहीं करोगी, कर लिया भाई कर लिया। और फहीम भाई कहते हैं कि आ गई है धीरे धीरे हर अदा बाजार की, लग गई है तुमको भी शायद हवा बाजार की, क्या खरीदा क्या है बेचा आगे इस बाजार में, जाते जाते कुछ हकीकत तो बता बाजार की। ओके फहीम भाई वालेकुम अस्सलाम सलामत, अदा क्या हाल है आपके, हम भी आ गए। बहुत शुक्रिया। अच्छा आबिद भाई कहते हैं कि सिस्टर नौशेरो फिरोज के शॉप, नौशेरो फिरोज की शॉप है अली वारिस जनरल स्टोर, बहुत अच्छी सेल कर रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, प्लीज इसका नाम लें और नौशेरो फिरोज कस्टमर्स अली वारिस जनरल स्टोर पर जाए और वहां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लें डिस्काउंट के साथ। क्या बात है भाई, नौशेरो फिरोज वाले लोगों की तो लॉटरी लग गई आपके लिए भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वहां पर मौजूद है और वारिस भाई जो है ना वो आपको डिस्काउंट के साथ देंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तो आप जाइएगा वारिस जनरल स्टोर पर और वहां से जाकर आप परचेज कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि भाई हमारे एरिया में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे तो नंबर डायल करने से पहले आप एक और भी काम कर लिया करें कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाएं, वहां से पहले मालूमात लें कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो बढ़िया परचेज कीजिए, नहीं अवेलेबल तो डायल करेंगे नंबर्स जो कि आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताऊंगे। सो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

सफर अश्ना। भाई ये गर्मी को क्या हुआ, ये जा ही नहीं रही है। अच्छा रात का टाइम जो है वो तो थोड़ा सही है, भी रात के टाइम तो सही थोड़ा सा मौसम हो जाता है, लेकिन दिन में तो वही गर्मी है ना, ये दिन की गर्मी का क्या होगा, ये कब जाएगी। भाई अब आप देख लीजिए कितनी ज्यादा गर्मियां चल रही है, पहले ऐसा होता था ना कि भाई जितनी गर्मियां होती थी उतनी सर्दियां आती थी, लेकिन अब तो ऐसा है कि खाली मुझे लगता है कि 2 महीने ज्यादा से ज्यादा 2 महीने आ रहे हैं सर्दी के। लेकिन ऐसा वाला सीन है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट तो हम को जरा बता दीजिए जो हम गर्मियों में भी लगा सके और सर्दियों में भी लगा सके, क्योंकि ज्यादातर तो यहाँ पर पाकिस्तान में गर्मियां ही होती है, तो आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। ये हर सीजन में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है और हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज करने के बारे में, तो लाजमी जाइएगा, परचेज कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात तो जरा याद ही रखिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसे डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले बनाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश, ये दोनों चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तो ये बात है जनाब की ये 2-in-1 फार्मूला है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

हमारे साथ रशीद कोसो भाई, आप हमें सुन रहे हैं जी हैदराबाद से। हैदराबाद से आप कहते हैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी वेलकम हो गया। और हमारे साथ फैसल अहमदानी लिखते हैं कि हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रग जान में उतर जाएगा। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। और शौकत अली कहते हैं एक्सीलेंट शो। शौकत अली फिलोपोट्रो हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है भाई को वेलकम कहते हैं। और किशोर भाई कहते हैं कि अदा अज 20 सालन का पोए मुझी आईडी जो नालो चेंज कयो आ, स्मार्ट किशोर मां चेंज करे किशोर कुमार रखियो आई यो तां भलो काम कयो। तवां जे नाले गाले छ मान चढ़न पया, हाने दिसो वा चढ़ाना ताई बरकरार रहे या फिर थोड़ो सुधार हो सके तो सो अच्छा लगा। चेंजिंग लाइफ के अंदर जरूरी होती है।

क्या बात है जनाब, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो पता तो चले हमें कि ये जो इतने खूबसूरत लोग हैं ये भी टी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ ही यहाँ पर फहीम भाई, आपने लिंक शेयर कर दिए, ओके आई ट्राई, आपका गाना लगा देंगे। आबिद भाई लिखते हैं कि नौशेरो फिरोज के कस्टमर से गुजारिश है कि अली वारिस जनरल स्टोर रेशम गली पर जाएं और वहां से टी स्किन ब्यूटी क्रीम डिस्काउंट के साथ लें। क्या बात है भाई, सुन लीजिए। नौशेरो फिरोज वाले लोग तो भाई भागते हुए जाएंगे टी स्किन ब्यूटी क्रीम लेने। अच्छा आबिद भाई, अब आपने ये बोल दिया है कि भाई नौशेरो फिरोज वालों को डिस्काउंट के साथ टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलेगी, तब सारे लोग आ जाएंगे कि भाई असा करो डो कयो सी, हमें भी डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो फिर आप बता देंगे सबको देंगे डिस्काउंट।

हिस्सा रखो ऐ मेरे। अच्छा एसन अरबानी, वालेकुम अस्सलाम वाले इस्लाम आदत। ओ माय फेवरेट आरजे मीडिया मुस्कान जी की खेसियां, मैं भी आ गया। वेलकम तो बनता है गुर्दों से नहीं दिल से। जी बिल्कुल, आज आपको दिल से वेलकम कहते हैं। खालिद नोटकानी हमारे साथ है, बेहतरीन प्रोग्राम खालिद नोटकानी मातली से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जना आपको वेलकम कहते हैं। अकबर अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ है सकरन से, आप हमारे शो को ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा है, गुड। थैंक यू प्यारे भाई। भाई आप लोगों ने झंडो मरी बोल बोल के इतना उनको बिजार कर दिया, मुझे लग रहा है कि अब वो प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर रहे। झंडो मरी वाले भाई आ जाएं प्रोग्राम में, बताएं इनको कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। मुझे घर मारती हो। अच्छा जी, ये खास के लिए हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, हेलो जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी खुश आमदीद। और खालिद बोजदार हमारे साथ हैं, खालिद बोजदार और माजिद बोजदार दोनों को वेलकम कहते हैं। मीर मुमताज अली जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। अदीस इद्रा मुस्कान, भेण खुश आयो। सफत आजी भेण खुश आ, प्रोग्राम चौथा माशाल्लाह बेहतरीन आहे, तव्हांजो जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू मोहब्बत आहिनि तव्हांजो, तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि अची पियो। अच्छा जी, खास के लिए कहते हैं कि कंहिं खे गुलाब जा गुल ॾियण मोहब्बत नाहे हूंदी, उन खे गुलाब जीअं पाक रखण मोहब्बत हूंदी आहे। वाह वाह वाह वाह, जबरदस्त। ऐं उनखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि न गिफ्ट ॾेई छॾियो, इहा बि मोहबत अथव। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आके जो पीनी प्यारे हैं ना आपकी लाइफ में पसंदीदा इंसान, तो उसको आप गिफ्ट भी दे सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश।

0: हाँ बिल्कुल कोशिश कयां थी बात आंजी फरमाइश हलाए छड़ींदासीं आई मोहब्बत हुआ तां प्रोग्राम बुधो पया दर्दे दिल
1: कदम
0: खुशानी अली गुलाम केरियो भाई बेरिया रोड खां असां के जॉइन कयो आहे बाजू मोहब्बत हूं भा के चोंदा भली करी आया है ते तां सब वेठा हो जो आबिद भाई कहते हैं कि डील डन मेरी ऑल मार्केट में डिस्प्ले है दी स्किन अवेलेबल फुल डिस्काउंट के साथ मिलेगी भाई क्या बात है आबिद भाई ने बोल दिया चलिए अब जाइए डी स्किन प्यूरी क्रीम डिस्काउंट के साथ लीजिए ये तो भाई मजे हो गए कमाल धमाल चलें यहाँ पर बैठे रहिए टाइम हुआ है न्यूज ब्रेक का उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिए मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: तो दर्दारी चवाए तो कराची में सियासी यतीमन जे जमायत जी सियासत करे रही आए सयोनेन वारी सियासत के सिंध में आनण वारी कोशिश के कामयाब थे नडींदासी तरजा बार टॉप कन था त अवां खेन वाधायूं देण बदरान नफरत वारी सियासत कयो था थर जी तरकी कुछ माण्हुनि खे हज़म नाहे थी रही असां नफ़रत जी सियासत खे दफ़न करे छॾींदासीं इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ त थर जो कोयलो बेकार आहे सीड़प कारीगरण बेकार आहे हाणे पूरो पाकिस्तान हैरान आहे त थर किथे पहुची वियो आहे इस्लामाबाद वारनि खे चवां थो त हू बि थर जहिड़ी तरक़ीअ ते ध्यानु ॾियनि

0: जिमनी फोर्सेस 12 बाबुल मंद के साहिल इलाके जोहाब जो बीयर कंट्रोल हासिल करने की दावा मुख्तलिफ ऑपरेशन दौरान 1700 का वधिक बागिन के मारण की भी दावा कई वही जिमनी हुकूमत फौज के तर्जमान मूजिब हुसैन के 1122 ठाकन से कार्रवाई कई है जै दौरान 1747 हुसी बागी मारज व्या।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है। सुपर वाइट।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 03201800

0: 1-800-333-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372, 0242-460100।

0: कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जी FM 94।

ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन ॾींहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डी कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीर प्रकाश मटियारी सेक्रेट मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर अभी तक आप लोगों ने याद क्या मतलब अब तक आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करी तो आप जल्दी से कर लीजिए। और आप लोगों के कॉमेंट्स मुझे जरा जो है ना वो भुला देते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। चलिए जी, यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कह देते हैं। और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो मुझे जल्दी से बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको रिजल्ट्स कैसे दे चुकी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की क्या क्वालिटीज है, ये तो पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताऊंगी जनाब। कैसे आपको छोड़ेंगे इसे सब कुछ बताएंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की कितनी सारी बातें हैं जो कि आप लोगों को मिल सकती हैं ये खूबसूरती जो कि आप इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात तो ये है बिल्कुल कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि ऐसा कोई सी नहीं होने वाला है आप लोगों के साथ कि भाई आपकी अगर स्किन सेंसिटिव हो और आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो स्किन खराब हो जाती है। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आपके चेहरे की स्किन सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की तरफ जाती है जनाब। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे पर इतना अच्छा सा निखार देती है, ताजगी भरा एहसास आपके चेहरे पर आ जाता है कि आप खुद ही कहते हैं कि वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो जल्दी से कराइए जी, क्योंकि आपको जो नंबर बता रही ना प्रोग्राम के अंदर उनके ऊपर राबता कीजिए और आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा सकते हैं। तो नंबर्स क्या होने वाले बिल्कुल आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन आप ये तो बात सुन लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। और डी स्किन फेस वॉश की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो डी स्किन फेस वॉश बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, क्योंकि कुछ लोग पहले ये शिकायत कर रहे थे कि भाई हमारे एरिया में नहीं मिल रहा या फिर अवेलेबल नहीं हुआ है। तो अब आप जो है ना इजीली अवेलेबल भी करा सकते हैं, आपके एरिया में भी अवेलेबल हो जाएगा और आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसको इतने जबरदस्त तरीके से तैयार किया है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है। और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम है ना, इसकी एडिशन इसलिए रखी गई है ताकि डी स्किन फेस वॉश जो है ना ये सबसे फेस वॉश से खास हो जाए, क्योंकि जब इसके अंदर ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड हुआ तो समझ लीजिए कि ये भाई खास हो गया, क्योंकि ये जब आपकी स्किन के लिए यूज जब आप करेंगे ना तो इसके फायदे इतने ज्यादा आपको मिलने वाले। जैसे कि डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश जो है ना, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपना फेस वॉश करते हैं तो आपके चेहरे पर ये जो गंदगी जमा हो जाती है, डस्ट पॉल्यूशन वगैरह जमा हो जाता है, गर्द गुबार आपके चेहरे पर जमा हो जाता है, जो कि भाई अपने चेहरे का आप ख्याल नहीं रख पाते हैं या फिर आपका काम ही कोई ऐसा है कि आपको या तो पूरे दिन में आप फेस वॉश भी नहीं कर पाते हैं या तो फिर ऐसा वाला सीन है कि आप लोगों को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि भाई एक मिनट निकाल कर आप अपना फेस वॉश ही कर ले। तो आप ऐसा कीजिए, बस आप डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये अफोर्डेबल भी है और पोर्टेबल भी है। वो ऐसे कि भाई आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पर भी ले जा सकते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं वहां ले जा सकते हैं और वहां पर बस आपको जब भी टाइम मिले एक दो मिनट आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। जब आप फेस वॉश करते हैं डी स्किन फेस वॉश से तो आपको ये फायदा मिल सकता है, क्योंकि डी स्किन फेस वॉश जो है ना, लगाते ही साथ ही आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपके चेहरे की स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है, डीपली आपके चेहरे को हाइड्रेट रखता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट मौजूद हो जो कि आपकी स्किन के लिए सिर्फ फायदा ही फायदा हो, तो आप डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि भाई कितनी शानदार है, लेकिन हम जहां पर जो डी स्किन फेस वॉश के बारे में बात करते हैं तो फेस वॉश का यूज भी भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई मर्तबा तो हम इस चीज को जरा इग्नोर कर देते हैं कि भाई हमारी स्किन को कोई अच्छा फेस वॉश चाहिए, लेकिन जब आप इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को आप जरा इग्नोर कर देते हैं, फेस वॉश का यूज नहीं करते या फिर आप जो भी आपको बताया जाता है रेंडमली कोई भी साबुन इस्तेमाल कर लिया, कोई भी रेंडमली फेस वॉश आपने इस्तेमाल कर लिया, तो ये चीजें भी आपकी स्किन को डैमेज कर देती हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन तमाम चीजों से बचे और अपने चेहरे को ताजगी भरा एहसास दें, खूबसूरत रखें, फ्रेश रखें, यंग रखें, तो आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, जब भी आपको टाइम मिले आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। दिन भर आप जो है ना अपने चेहरे को महसूस करेंगे कि भाई ये ताजगी का एहसास तो बरकरार ही बरकरार है। और इसी तरह से जब आप डी स्किन का फेस वॉश यूज करते रहेंगे तो खूबसूरती आपके साथ साथ होगी और आपकी रोजमर्रा की जो
स्किन केयर है ना, जो कि आपको लगता है कि ये बड़ा टफ टाइम है हमारे लिए और बड़ा टफ सा लगता है आप लोगों को स्किन केयर करना, तो बस अपना फेस वॉश कर लीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। जब ये दोनों काम आप करते हैं ना और मुसलसल करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये तो भाई आप लोगों को सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से बड़ी अच्छी रिजल्ट दे रही है। तो अगर आप भी परफेक्ट वाला निखार हासिल करना चाहते हैं, परफेक्ट आप खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं, आपको सारी चीजें परफेक्ट पसंद है, तो खूबसूरती के मामले में क्यों पीछे रहते हैं, परफेक्ट वाले प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए जो कि 2-in-1 फार्मूला है। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज के फौरन बाद ही आपको ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया है। तो अगर आप फेशियल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो बस आप घर बैठिए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, आपको घर बैठे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद ही कहेंगे कि ये तो कमाल ही हो गया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हज़रात हैं चाहे आप ख़वातीन हैं। तो लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए क्योंकि आप सब लोगों के लिए है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। इसी के साथ साथ अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपको नंबर्स बताऊंगी, उनके ऊपर रابطہ कीजिएगा और रابطہ करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 2570 आई यू नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर सां जेके तमा डायल करी इजीली पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन फेस वॉश हुजे तमा अवेलेबल कराए सको था। सो बाबा अवेलेबल करायो ई खूबसूरती जे मामले में नो कॉम्प्रोमाइज कदे भी पांजी स्किन के जेको न ये तमा छडे न दींदा कयो, पांजो ख्याल रखो आई पांजे चेहरे के दिसो त बाबा न के केड़े प्रोडक्ट जी नीड आहे। अक्सर ये थिनो त असा के वरी खबर भी न पदिया त असा री स्किन टोन केड़ी तरह जी आहे। अगर तमा जी स्किन सेंसिटिव हुंदी आ तो उन तुम वही ये कहना तो छड़ी दींदा बस पानी चेहरे के कोई भी प्रोडक्ट यूज न कहना है, पर सेंसिटिव स्किन के लिए भी प्रोडक्ट मौजूद होंगे मार्केट में। बस इकड़ी चीज की तुम्हें जरूरत आए तो तुम्हें सही प्रोडक्ट परचेज करो है, सही प्रोडक्ट की तुम्हें नॉलेज हो, खबर हो, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अखियों बूटे वी अखियों बूटे इस्तेमाल कर सो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है हि मेडिकेटेड फार्मूलो है तुम्हारी स्किन के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है जनाब। सो वनो वही वी चो मर्द हजरात खवातीन सब कोई लगे तो सब कोई सुनो थी तो सो बिल्कुल इस्तेमाल कर आई तमा असा के जॉइन करना वनियो पया बिल्कुल तमा जा फीडबैक्स आइन पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना रहो आई मुखे बुधायो टीचर्स डे आहे त तमा जो को एड़ो उस्ताद को एड़ो टीचर जे तमा के को जुमलो चयो जे को अन्या ताई तमा के याद रहजी होयो जे लाइक मोटिवेशन जिया तरह तमा जी जिंदगी में वो जुमलो कम इंदो हो जे तो मुखे बुधायो 881 ते आई फेसबुक ते तमा जा मैसेजेस आइन बिल्कुल पढू था आई तमा असा के जॉइन भी करे सगो था 881 ते आई फेसबुक ते भी।

गाना तो हम इंजॉय करेंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपकी पैनल पर काफी सारे मैसेजेस जमा हो चुके हैं, तो उनकी जाने भी आ जाते हैं। देखें कौन कौन हमारे साथ है, कहाँ कहाँ से आपने मुझे ज्वाइन किया है और क्या क्या कह रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं तो मुझे मैसेज मिला है जी मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर भाई का, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा, खुश आयो चाक सफा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे रहे आयो, तवां भी तवां जी फैमिली भी वाह सही वाह वाह सही वाह। महबूब अली हमें सुन रहे हैं मोरो सिटी से, कहते हैं सिस्टर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप हमेशा गुलाब के फूलों की तरह मुस्कुराती रहो, आपका प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स गुड है सिस्टर। न्यू सॉन्ग इब्रारुल हक का प्ले करें। ओके जी, नया गाना लगाते हैं, नवा सॉन्ग सुनाते हैं जी आपको, ठीक है। और चाचा खालिद हमारे साथ ही गाना बिल्कुल चाचा आपको सुनाते हैं आपकी पसंद वाला। और हमारी साथी हमारी साइमा मीर, क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम। कहती माँ बाप के बाद जो अल्लाह पाक ने मकाम दिया है वो उस्ताद को दिया है। सलाम मेरे तमाम टीचर्स को जिनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा समझा और आज जिस मकाम पर हूँ, ये सब उनकी मेहनत अजमत का नतीजा है। मेरे तमाम उस्ताद मेरे लिए काबिल एहतराम है, हैप्पी टीचर्स डे। ओके जी ओके, क्या बात है। और दूसरा आपने जो मैसेज किया ना, वो मुझे थोड़ा सा आपका मिसिंग पार्ट मैसेज मिला है, लेकिन जितना मिला है वो पढ़ लेते हैं। कहती साइमा मीर और माय बेस्ट स्वीट टीचर सिद्रा मुस्कान को भी सलाम, बहुत सारा प्यार और सलाम उस्तानी जिया अली को भी। टॉपिक बहुत सी बातें सबसे खास के मुझे के बाद आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है और पता नहीं आप क्या कहना चाह रही थी, वैसे आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ हैं जी यहाँ पर आई एम जाकिर हुसैन मरी, बाकिर अली मरी फ्रॉम कोटड़ी, मोहम्मद कबीर शो नाइस, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। ये किसी का खाली मैसेज मुझे मिला है, तो जिसका ना पढूं तो समझ जाएगा, ठीक है। वोट मोहम्मद तैयब थेबू का, हाबी बोला थेबू, कहते हैं आपका शो वेरी वेरी नाइस है, सलाम आपको जी। वालेकुम अस्सलाम आपको। और हमारे साथ ही हमारी दिलरुबा दिलरुबा में सुन रही हैं बेरिया रोड से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा जान, क्या हाल है आपके, नाइस शो है, मैं रोज आपका शो सुनती हूँ, दिल से आप याद भी नहीं करती हैं, एक भी ऐसा शो नहीं है आपका जो मैंने मिस किया हो। एंड आबिद भाई को सलाम दीजिएगा, मैं भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम खरीद करूंगी अदा आबिद भाई की शॉप से। मास्टर मंजूर को प्ले करना प्यारी, हाजिर हाजिर दिलरुबा, हाणी तवां जो नालो रोज खणंदासीं, ठीक आ जल्दी वनो आबिद भाई का डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करिए, जो वो अभी डिस्काउंट में सही यू चाहे जो उसे। ओके जी, हमारे साथ यहाँ पर साइमा कहती है और माय बेस्ट स्वीट टीचर, अच्छा ये वही मैसेज है, ये दोबारा से पूरा होकर मुझे मिला है, सही है जी सही है। कहती है टॉपिक सर ने कहा था अपने भाई जैसी जहीन बनो, सबसे खास के मुझ पे मेरा नाम भी टीचर ने रखा था। अल्लाह चलें जी, फिर आपने अमल किया उस बात पे। और कहती हैं कि प्यारी आरजे प्यारा शो सिद्रो, गांव और सिटी से साइलेंट टीचर सुन रही है आपको, लास्ट में कोई प्यारा सा नगमा उन सब के नाम करना, चलें जी डन हो गया, लाजमी कर देंगे। मकसूद मलहा हमें सुन रहे हैं मेहरापुर से, कहते हैं हेलो सिद्रा मुस्कान, मुझे गाना तो सुनाना, लोटो मुखे आने दे मुझो मुखे आने दे। अल्लाह यो गानो तो मां कने हलायो ही ना है प्रोग्राम में। दिसो वाली टाइम मिलियो तो बिल्कुल हलाए बैठूं था।

भाई सजन डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो लगाए थो गाल के समझंदा कयो सजन हाने डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए करे सोनो थी वया इन करे हाने ताखे वणे थो सो अगर तहां भी चाहो था बाबा ताजा सजन भी सोना थी वने तो तहां उनन के डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो दस जो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम उनन के तहां गिफ्ट भी करे सको था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप परचेस कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रही है जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेस कीजिए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

हां जी, मुखे भी तां डाढा वणो था जॾहिं तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था। आई वो सभु माण्हू वणनि था जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूस करे रहिया आहिनि। हिननि ॿुधायो आहे त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे केतिरो सुठो रिज़ल्ट ॾिनो आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बि ट्राए करे सघो था। सो ट्राए कयो बाबा, ट्राए करण में छा आहे, जॾहिं तव्हां ट्राए कंदा तव्हां ख़बर पवंदी त बाबा सिदरा एतिरो छो थी ॿुधाए। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जाइए परचेज कीजिए। मीर मुमताज़ अली जतोई भाई हमें सुन रहे हैं लाड़काना से, आपने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा चाचा कहते हैं कि हाँ कल से कराची में भी गर्मी है, सेम सेम लाड़काना, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम कैसे लगाएं, पसीना आएगा नी नहीं आएगा, लेकिन आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए जी, रात के टाइम लगाइए, पसीना आपको नहीं आएगा। और ने कहा अलावा, हाँ किशोर भाई सही कह रहे हैं, सर्दियां आए तो अपने हिसाब का फैशन भी करें भाई, गर्मियों में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, लेकिन ये है कि भाई दो महीने के लिए सर्दियां आ रही हैं तो क्या ये सही फैशन करेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी आ रही है ना, भी क्या बताएं। तो आप गर्मियों में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा सकते हैं। वैसे डी स्किन का फेस वॉश तो क्या ही बात है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अली गुलाम भाई हमें सुन रहे हैं बेरिया रोड से। भाई अली गुलाम भाई, आप आबिद भाई से जाकर ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। और फहीम भाई कहते हैं अदा माँ भी मुझे नालो चेंज करे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो रखा, भले रखो भले रखो। नेकी और पूछ। अलीशा कहती है कि पसंदीदा शख्स जो मुकाबलो दुनिया जी हसीन तरीन शख्स भी नथो करे सके, ओ यह गाल कही थी नी भली। अच्छा उन खां अलावा हमारे साथ यहाँ पर वाजिद सिंधी भाई कहते हैं अदा ये जो तुम सवाल पुछवा ना जो जवाब बिल्कुल मुख्य खबर को छोकरा ही मुख्य बुधाइंदा। मोहम्मद मीरन जकरानी भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आबाद से वेलकम कहते हैं आपको भी। अली गुल कटभर भाई हमें सुन रहे हैं, हाँ जी जेकब आबाद से आपने मुझे ज्वाइन किया है वफा अली गुल कटभर भाई, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पर दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची कहते हैं ऑल हैप्पी टीचर्स डे, आप सिर्फ हमें किताबी इल्म नहीं देते बल्कि जिंदगी में सही रास्ता चुनना भी सिखाते हैं, आपकी मेहनत रहनुमाई और मोहब्बत हमेशा याद रहेगी, थैंक यू फॉर बीइंग सच अमेजिंग टीचर्स। ओके जी क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो मुझे जल्दी से पता तो चले। और यहाँ पर हमारे साथ जी हमारे प्यारे मेहर इरफान सियाल साहब भी मौजूद है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम आर जी, गुड आफ्टरनून टू यू सर। अच्छा चलें आप यहाँ पर बैठे रहिए, प्रोग्राम सुनते रहिए क्योंकि आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक का है। टाइम हुआ जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। सुमाटू गोपांग वालेकुम अस्सलाम, आप हमें कंबर सिटी से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और गाने में सबके लगाती हूँ, वापस मुझे आने दें जरा, कमर्शियल लेते हैं और उसके बाद यूं जाकर यूं वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: सूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
0: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120।
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस साल

हाँ भाई, तो आपने क्या सीखा? थाड़ी हणे था उडामी बने एड़ो वापरी, ठीक है, आपने ये सीखा। लेकिन यहाँ पर ये एक और बात भी आप लोगों को सिखाने के लिए कि भाई आप डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, और डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। क्योंकि इतनी जो प्यारी प्यारी बातें प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की जाती है कि भाई डे स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है जो आप लोगों को लगाएंगे तो रिजल्ट ऐसे देगी जैसे आपने कोई मेगा सा फेशियल कराया हो। दूसरी बात ये कि डे स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर डे स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है जो भाई आप लोगों के स्किन से रिलेटेड आप लोगों के लिए फार्मूले बनाते हैं। और तीसरी बात यह है कि डे स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये इतनी जबरदस्ती सारी सी चीजें ऐड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के रिजल्ट्स को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देती हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो रिजल्ट्स आपको मिलेगा ना वो ऑल स्किन टाइप के लिए, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, तो हर स्किन के ऊपर आप इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हंसाते हैं चाहे आप खवाती हैं। क्योंकि कई मरतबा कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि बाजी क्रीमू तो औरतू लगाई क्रीमू तो माइंड जो कमाए लगाए, बाबा हाँ जमानो इलाही चेंज थी वो है, हाँ तमाम वेंदा ॾिसंदा त सेलोन्स में मर्द जेके न वॾो ईअं रज के फेशियल कराईंदा हूंदा आहिनि, ऐं उहे जेके फेशियल कराईंदा आहिनि उहे बाबा बसि उन्हनि खे तव्हां छॾे ॾियो, हाणे मां छा उन्हनि जे लाइ चवां, बसि तव्हां घर वेठे पंहिंजे लाइ कोई अहिड़ो सुटेबल ऐं सही सफ़ा क्लीन प्रोडक्ट पंहिंजे लाइ परचेज़ कयो जंहिंजो नालो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे फेशियल वारो रिज़ल्ट ॾिए थी, सो अगरि तव्हांखे फेशियल वारो रिज़ल्ट मिली रहियो आहे मुनासिब पैसनि में बिना कंहिं टाइम जे ज़ाया करण जे, त तव्हांखे कहिड़ो बाबा हर्ज आहे, तव्हां छो नथा वठो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ाइदो तव्हांखे इहो मिलंदो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे चेहरे ते चार चंड आणे छॾींदी, तव्हां मर्द हज़रा तव्हां ख़वातीन हर कोई लगाए सघे थो ऐं पंहिंजे चेहरे खे चमकाए सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगरि तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो था, त इहो बि यादि रखिजो त डी स्किन जो फेस वॉश बि तव्हांखे लॻाइणो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो ऐं डी स्किन जो फेस वॉश लॻायो, ठीकु आहे।

क्या मतलब, वो बहुत ज्यादा पतला था ऐसा कह सकते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो समझने के लिए हमें जमाने चाहिए होते हैं। उनके अलावा अगर तहां से अगर मौजूद है तो पोस्ट के बाबा लाइक एंड शेयर करना। हेलो आई मुख्य बधाई कॉमेंट करी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल किया है। दर्द दिल कहती है कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं सीखा। अलीजा भी आपका शो सुन रही हैं, दोनों परियों को वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ हमारे सर महर इरफान सियाल साहब भी कहते हैं ग्रेट हो ग्रेट शो मैम आरजे, वी आर लिसनिंग शो फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इज द बेस्ट। यस कोई शक नहीं इस बात में, डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा कमाल आहे। असा पान लगायूं था, असा घर में यूज कई वेंदी आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी बाबा हर तरफ चर्चा आहे, हर कोई दीवानो मिले पियो असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो। असां कंहिंखां पुछंदा ना बाबा ॾियो अलवाल कहिड़ी क्रीम लॻाई ते, चवंदा बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाई आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको एतिरो ख़ूबसूरत माण्हुनि खे रिज़ल्ट ॾिए पई, त माण्हुनि जी दिलि चवंदी आहे न वैसे ई त असां बाबा सुठो प्रोडक्ट लॻायूं। ऐं कोई प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट हुजे ऐं जेको असांखे मुनासिब पैसनि में मिलंदो हुजे, त ही सभु क्वालिटीज़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि मौजूद अथव। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बि वठी सघो था, तव्हां बि लॻाए सघो था, तव्हां बि इस्तेमाल करे सघो था। भैया अञा ताईं ख़बर न पई आहे त पहिरीं आया पखी आहे चाचा हा ऐसा हो सकता है। किशोर भाई कहते हैं कि कुछ माण्हू बि अहिड़ा हुजनि त जा अच्छा हा हा सही सही

हाँ जी प्यारी दिलरुबा, हमारा प्रोग्राम जो है ना वो डेली सुनती है, ये बात बस अब मेरे जहन में बैठ गई, हम दिलरुबा को याद रखेंगे, हमारे दिल में अब दिलरुबा रहेगी क्योंकि दिलरुबा जो है वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने जा रही है। तो जल्दी जाइए और परचेज कीजिए, यहाँ पर आप सब लोग भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं। और हमने यहाँ पर गाना लगाया है जी, ये बड़ा प्यारा गाना होने वाला है प्रोग्राम के अंदर, सो आइए सुनते हैं।

ओके, यहाँ पर मैंने ये कमेंट देख लिया है, चाचा कहते हैं कि फेशियल की तरह लगाएं क्या डी स्किन ब्यूटी क्रीम? न बाबा या गाल तां के मैं रोज बुधाई दिया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जब आप इस्तेमाल करें तो ये एक नाइट क्रीम है, ठीक है। इसे आप किस तरह से लगाएंगे, आप अपना फेस वॉश करेंगे सबसे पहले डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद अच्छे से चेहरे को सुखा लेने के बाद आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर उंगलियों की मदद से आराम से लगाना है, प्यार से लगाना है, सॉफ्टली लगा लीजिए और इस तरह लगाएं कि क्रीम आपके चेहरे पर थोड़ी सी नजर आनी चाहिए। मसाज हरगिज नहीं करना जब आप मसाज करते हैं किसी भी नाइट क्रीम का, तो फिर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, सीन थोड़ा बिगड़ जाता है, तो मसाज नहीं करना। अगर मैं फेशियल की बात करूं कि इसके अंदर फेशियल के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो आपने फेशियल की तरह हरगिज यूज नहीं करना। ये एक नाइट क्रीम है, तो इसे नाइट क्रीम की तरह ही यूज कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, साजिद हुसैन सुमरो हमें सुन रहे हैं, शो बहुत अच्छा है आपका, थैंक यू। आप हमें सुन रहे हैं DIG ऑफिस लाड़काना से, शाहिद बबर का गाना सुनाए, आई ट्राई, मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, आपका गाना लग गया तो लगा देंगे। और यासीन खंड हमें सुन रहे हैं, जी कहते वेरी नाइस शो रोजाना की तरह, बहुत शुक्रिया। सलीमुल्लाह फुलपोटरो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यासीन खंड कहते हैं कि आपकी डी स्किन ब्यूटी क्रीम रोजाना लगाते हैं, जी रोजाना ही लगाइए, रोजाना लगाने के लिए ही है। बताएं आपको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं। अच्छा, सलीमुल्लाह फुलपोटरो कहते हैं आपका शो सुन रहे हैं खैरपुर मीरत से, ओके जी, ओके थैंक यू, आपको वेलकम कहते हैं। नूर मोहम्मद भुट्टो हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। गुल यासीन नाज हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारा प्रोग्राम सब दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको भी वेलकम हो गया। और हमारे साथ हैं जी अली रजा लगारी भाई, थैंक यू सो मच। और हैं जी आबिद बिरोही नौशेरो फिरोज से, आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके, कहते हैं कि आज लूंगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। बिल्कुल जी, आज लीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम, परचेज कीजिए, आपको पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कितनी कमाल की प्रोडक्ट है।

अच्छा जी, क्या बात है, कितना खूबसूरत गाना हम सुन रहे हैं। और सुमाटो गोपांग लिखते हैं कि रीड कीजिएगा सारा कमेंट आपने जो लिखा है। टॉपिक आंसर कहते हैं कि मेरे लिए मेरे सबसे यादगार टीचर मेरे अबू एजाज हुसैन गोपांग थे। उन्होंने बचपन से मुझे कॉन्फिडेंस दिया और लोगों के सामने बात करना सिखाया। आज मैं जिस कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ उसके पीछे मेरे अबू की तरबियत है। मेरे लिए वो सिर्फ अबू नहीं, मेरे पहले टीचर थे। माय फादर वाज आल्सो गवर्नमेंट टीचर। ओके, क्या बात है, जबरदस्त हो गया ये तो। और उन्होंने कहा अलावा हमारे साथ हैं जी दर्दी दिल, कहती हैं कि टॉपिक चंदा टीचर ना, टीचर ने ना ये बात बोली थी अभी तक मुझे याद है। लिखा है कि उस्ताद की इज्जत करो क्योंकि वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि जिंदगी जीने का हुनर भी सिखाता है। ओके, जबरदस्त हो गया। हुबदार अली भाइयों में सुन रही प्रोग्राम तवांजो भल्लो आए। हुबदार अली शाहपुर चाकड़ का तवां असा के ज्वाइन कयो आए। तवांजो मोहब्बत हुआ भा तवां के भी तवांजे एरिया जे आसपास करीब ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी, डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली वेंदो। सो वञो त लाज़मी परचेज करी अचजो। ओके जी फहीम भाई, अल्लाह करिए आपकी जर्नी जो है वो सेफ सेफ रहे, आप सेफली पहुंच जाए जहां आप जा रहे हैं। अब्बासी भाई कहते हैं कि मेहरबानी करके आप भाई इतने सालों से बर्दाश्त ही तो करते आ रहे हैं ना, अब ऐसा है कि बर्दाश्त नहीं होता तो इसलिए हम ब्लॉक कर देते। केतरो आखिर हिकड़ो इंसान बर्दाश्त करे सके तो मुख्य बुधायो। और वो भी बिलावज अगर ब्लॉक ना करें तो फिर उनकी जबानें देखिए कैसी होती हैं, उनके जबानों से पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज निकल रहे होते हैं, तो ये सही ऑप्शन है। और वहीद वफाई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल आप भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है। जेकब अपा से आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू के साथ आपको वेलकम कहते हैं जी। बिल्कुल झंडो मरी वारा लाइक कारी वयान लगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वया तो वरी मोटियाई गुड। बाबा मोटी जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी जो साण। रमजान भाई भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया रमजान भाई, आपको भी वेलकम कहते हैं। अई भाई किशोर माठ करने जो टाइम गुजरी वो बाबा, हाने कमेंट पढ़ा सी जी मानो जा रेजी न वन वरी चवंदा न कमेंट डिस पढ़ी को। और हमारे साथ ही जी सर महर इरफान सियाल साहब कहते हैं टीचर्स डे सल्यूट टू माई प्राइमरी क्लास टीचर मैम रोजी जोसेफ फ्रॉम सेंट मेरी स्कूल बहावलपुर। क्या बात है, आपको रोजी मैम जो है वो याद है। और ऐसा होता है हमारी लाइफ में, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में हमेशा याद रह जाते हैं, और उनकी बातें उनके पढ़ाने का अंदाज वो सब इतना हमें स्पेशल और खास लगता है कि हम कह रहे हैं भाई क्या ही बात है। और कहीं ना कहीं मैं जब एक मेरी टीचर है, मतलब थी तो नहीं है, अल्लाह सीन की वॾी हयाती ॾे, सो मां जॾहिं उन्हनि खे ॾिसंदी हुयमि, जॾहिं उन्हनि जो पढ़ाइण जेको वे हूंदो हुयो उनखे ॾिसी मां चवंदी आहियां मां वॾी थी करे टीचर थींदो। फिर जब मैं बड़ी हुई तो फिर मेरा टीचर वाला जो ख्वाब था वो मतलब गुम हो गया कहीं, फिर मैं दूसरी चीजों में लग गई। फिर ऐसा है कि मैं टीचर नहीं बन पाई, लेकिन ये बात है अगर मैं टीचर बनती तो बहुत अच्छी टीचर बनती।

0: ओके जी, हमारे साथ हैं, ये हमारी फजली की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी टीचर्स डे आफ्टरनून। माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर? सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स को। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से। आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहते हैं हमारी प्यारी फजीला। और हमारे साथ जी हमारी साइमा मीर कहती है, माशाल्लाह जी अमल बिना इलम केड़ो कोई भी अदा खां घट प्यारी, ये शनीला अली अमेजिंग गाना था। हाँ बिल्कुल, मैंने आज कोशिश करी कि नए नए सिंगर्स को भी मौका दिया जाए प्रोग्राम के अंदर, नए तो नहीं मतलब ऐसे ऐसे गाने लगाएं जो हम तकरीबन कम लगाते हैं। और कहती हैं कि फुल सर्दी में प्ले किया था और आज थोड़ी थोड़ी गर्मी है। यानी पुराने सर्दियों में गानों वाला से वरिया जो हलाया वो ऐसो कुछ गाना अड़ा है जेकी वाकई मां इलाही टाइम खां पो हलाई दिया है। सो बिल्कुल कोशिश करना थी तो तमाके सबनी सिंगर्स जो गाना बुधाईंदा रहो। और कहती है कि ओ माय टीचर तुम अपना भी बताओ टॉपिक पर कुछ यादें नसीहत, पहला क्लास कहां पढ़ा था? भाई मेरी जो मतलब पहली पहली टीचर है मैम सुग्रा, उनका नाम है मतलब वो अभी तक है, और वो ऐसे समझे कि हमारी फैमिली रिलेटिव्स हैं, तो अभी तक उनसे मेरी मुलाकात होती है। उनसे जब भी मेरी अम्मी पूछती है कि ये कैसी स्टूडेंट थी, मतलब वो बचपन में तो मुझे नहीं था पता कि मैं कैसी थी शुरू शुरू में, तो जब भी उनसे पूछती है तो वो मेरी बहुत ज्यादा तारीफें करती है कि भाई इस जैसा स्टूडेंट मतलब नजीब वालों को मिलता है, मैं बड़ी इंटेलिजेंट थी और मुझे ऐसे मतलब जो है ना सारे स्टूडेंट्स में तकरीबन जो है ना तारीफ करते हैं मेरी, तो ऐसा है कि मैं अच्छा बच्चा था। कटे सटे गाल क्या कितने बधाई हूं था। इन खां अलावा जो है पेरी पेरी टीचर मुझी हुआ है, अल्लाह से इन्हन की हयाती ने इलाही सुठी है, इलाही सुठी। उन्हें खाए अलावा दिलरुबा कहती हैं, हाँ जी आप का बहुत शुक्रिया, लव यू टू। ऐसे ही खुश रहें और आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो लाजमी परचेज कीजिएगा आबिद भाई से जाकर, और आबिद भाई आपको डिस्काउंट के साथ दे देंगे। और उन्हें खाए अलावा इमरान भाई कहते हैं, बाजी ठीक है? जी जी भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं। और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं ये भी बताएं।
1: शहर से गुजरता
0: जी लोटे में अना खीर होयो बाके परहार जी पयोस। यासीन खान कहते हैं कि आप
1: तेरी यादों की
0: जी कोशिश होती है कि प्लेलिस्ट जो है ना वो अच्छी बना दे। और हुबदार अली भाई प्रोग्राम जी तमा तारीफ का आए, सो थैंक यू सो मच। हाँ भाई चाचू जो आ ना प्रोग्राम के इंगेज कर रखन है, चाचे के खबर आ तो बाबा प्रोग्राम में केड़ा कमेंट करना से, तो वे लाजमी पढ़ा वेंदा सफा वे इग्नोर न थींदा। सो चाचो बिल्कुल सब डिटेल से गाल पुछंद है सभी के बारे में, तो बाबा ये चीज अच्छा है इन जो केड़ो फायदो पवंदो, ही लगायो क्रीम या हुआ लगायो छा कयो, चाचे के हाने सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में खबर पड़ी वे ये ना चाचा, बस हाने लगाने की देरी आला लगाया था अलाय ना यो कोन अना ताई चाचे बुधायो है। सो मुखे बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई तो कोन चाचा।

चलें ये लास्ट में हमने प्यारा सा गजल लगा लिया है गुलबहार खास के लिए, भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहते हैं आपको भी। अच्छा चलें पिरी के वरी ताड़ी सा उडारे वठंदासी खेर जड़ी गाल आए पाजा पाणा में तायो और इन का अलावा हिते जेको आ सो अच्छा मुझे एक ना ये चीज हमेशा मतलब ऐसा लगता है कि मुझे कि याद रखा करे, इंसान जो होता है ना वो डिग्रियों से मुझे लगता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं बनता, उसका अखलाक, उसकी तरबियत, उसकी अच्छी जबान जो होती है ना वो उसको पढ़ा लिखा बनाती है। तो अगर आप ये देखें कि भाई अगले इंसान ने कितनी ज्यादा डिग्रियां हासिल कर ली है वो मैटर नहीं रखती मेरे आगे, बस मुझे ये लगता है कि एक इंसान का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक इंसान के अंदर अखलाक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास अच्छा अखलाक है, अच्छा बोलने का तरीका है, आप लोगों के साथ बैठते हैं तो लोग आपसे जो है वो खौफ नहीं खाते, आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको ये नहीं होता कि हम फलां बात बोलेंगे तो अगले इंसान को बुरा लग जाएगा, बस वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करें, अच्छा महसूस करें तो आप अच्छे इंसान हैं। और डिग्रियां हासिल करना बुरी बात नहीं होती, हासिल करें लेकिन उसके साथ साथ अखलाक और तरबियत का भी ख्याल रखेंगे वो भी लाजमी होता है।

जी के साथ आप लोगों से इजाजत भी लेने का वक्त आ चुका है। वरी तमाम मुलाकात जी का मुझे थे पई वो आप पंजाब बजे वाले प्रोग्राम में थेण वाली है। तो पांजो इलाही सारो ख्याल रखना। विनी विनी बिल्कुल तांगे चाहिए विनासी तबाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना रहो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवाने खूबसूरती में इजाफो आने छड़े थी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जका है तवाजे खूबसूरती के मुताबिक ही तैयार थी वही है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो है सोना सोना थींदा रहो। मिलूं था बाबा पंजाब बजे वाले प्रोग्राम में। सो पांजो ओ हीरो सारो ख्याल रखना। मोकलानी ना ही सेंस

0: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
2: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A project by Aksa Cosmetics Pakistan.
3: समझ में नहीं आता, लेकिन मान लो तो इस्लामाबाद को थरपारकर वालों को हवाला कर दे, हम उसको ठीक कर देंगे, वहां के बच्चे को टॉप हर एग्जाम में टॉप करवा देंगे, उनका हॉस्पिटल्स का हाल हमने अभी अभी देखा, उनको हॉस्पिटल्स को भी हम 100% मुफ्त करवा के आर्मी दुनिया का स्टैंडर्ड्स पे लेकर आएंगे. हमें सिर्फ इस्लामाबाद का जिम्मेदारी दे दे, वहां हम आपको दिखा देंगे कि थर थर के नौजवान, थर के सियासतदान क्या क्या कर सकते हैं. हमेशा की तरह अब ये रिवायत बन चुका है कि हमारे घर के बच्चे टॉप करते हैं. जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय उनके लिए तालियां बजाने के बजाय अपने नफरत की सियासत कर रहे हैं. इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत की सियासत दफन करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा.
4: सिस्टम जी नाकामी थे नवन सूबन वारे मुल्क के समझ का बाहर आए. इस्लामाबाद नाकाम थे हुआ है तो इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कयो. थर जी तरक्की थे समूरो मुल्क हैरान आए. इस्लाम कोर्ट में थर कोल फेज 3 मंसूबे जो इफ्तिदा कंदे. पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो कराची में सियासी यतीमन की जमायत सहयोगीन की सियासत कर रही है. सहयोगीन वारी सियासत के सिंध में आनण वारी कोशिश के कामयाब थे डींदी. थर जा बार टॉप कन था तो अवा के इन वाधायू डेण बदरा नफरत वारी सियासत कयो था. थर जी तरक्की कुछ मानून के हजम ना थी रही. असा नफरत जी सियासत के दफन कर छींदी. इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ तो थर जो कोयलो बेकार है, सीड़पकारी करण बेकार है. हाँ पूरा पाकिस्तान हैरान है तो थर किथे पहुंची वो है. इस्लामाबाद वारन के चवा तो हू भी थर जड़ी तरक्की ते ध्यान दियन. यमनी फोर्सेज पारा बाबल मंदब के साहली इलाके जोहाब जो बीहर कंट्रोल हासिल करण की दावा. मुख्तलिफ ऑपरेशन दौरान 1700 का वधिक बाघिन के मारण की भी दावा कई हुई है. यमनी हुकूमत फौज के तर्जुमान मूजिब हुसैन की 1122 थाकन ते कार्रवाई कई है, जै दौरान 1747 हुसी बाघी मारजी वया है. मके मुआदे के स्ट्रेटजिक सियासी एंड दिफाई कमेटी जो इजलास अज रियाज में थी. नायब वजीर आजम इसहाक डार ख्वाजा आसिफ ए फील्ड मार्शल सैयद आसिम उली सऊदी अरब पहुतल. इजलास में तुर्किया ए सऊदी अरब जहा परदेही वजीर दिफा वारा वजीर ए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शिरकत कंदा. मके दिफाई मुआदे ते अकबराई जो जायजो वरतो वेंदो. परदेही तर्जुमान मौजूद पाकिस्तान इलाकाई अमुन इस्तेकाम लाइ किरदार जारी रखने वाले अजम ते कायम है. थर पाकिस्तान जो मुस्तकबिल तब्दील करे सके तो. थर जो कोयलो पाकिस्तान की तवानाई ए सनअती जरूरत लाए अहम जरियो बणजी रो है. इस्लाम कोर्ट में तकरीब के खिताब कंदे वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह है तो IPAs दरामदी कोयले बदरां थर के मुकामी कोयले डां मुंतकिल थी रो. सिंध हुकूमत फेज 3 मनसूबो 100% पेंजे खर्च ते मुकम्मिल कर रही है. थर फेज 3 सा सालानो अटकल $220 million वाधू नाणे की बचत थी. केपी के दहशतगर्दी की बाह में सड़े पो. सोहेल आफरीदी रुगो एहतजाज ए धरणन में मसरूफ है. वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे है तो केपी के में रियासती रट खत्म थी वही है. हुकूमत नाले का शहर है, सूबो रांदो तो सियासत भी रांदी. सूबाई हुकूमत के अवाम की का बेपरवाह ना है. पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मोहसिन नकवी की सोहेल आफरीदी से गालू नाकाम बनाने वाले इल्जाम के रद्द कर छो. सलमान अकरम राजा है तो गाल की नाकामी जो जिम्मेवार सोहेल आफरीदी ना है. गाल दौरान केपीके के 5 जिलों में इमरजेंसी लगान जो वो इमरजेंसी लगान की इजाजत ना दे सकूं. इस्लामाबाद की अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स से हमले केस में पीटीआई बानी के अदालत में पेश करण जो हुकुम दिनो. दहशतगर्दी टोड़ अदालत ईंदड़ बुधड़ी ते बानी के जिस्मानी तौर या वीडियो लिंक जरिए पेश करण जो हुकुम दिनो. अदालत फारूख हबीब हम्माद अजहर براد سعید اہن شبلی فراز کے اشتہاری قرار دنوں ملکت جا تفصیل طلب اگوڑے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم حسن نیازی جا ضمانت

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे नहीं, खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जेह में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सोमवार।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: मेहराबपुर भरपासे की आवाम लाए खुश खबरी पेट्रोल के खर्च मान जान छो रोज के खर्च का बचो A1 आटोज पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर ता सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करो स्पेयर पार्ट्स माहिर मकेनिक की सहूलत पिण मौजूद है उन सा गड सिंध शादी हॉल से गडो गड A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिन राबते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: फेज थ्री मनसूबे जो इफ्तिताह कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो जरदारी चयो आहे त कराची में सियासी यतीमन जी जमायत सहयोगी जी सियासत करे रही आहे सहयोगी वारी सियासत के सिंध में आणण वारी कोशिश के कामयाब थियण ॾींदासीं थर जा ॿार टॉप कनि था त अव्हां खे वाधायूं ॾियण बदिरां नफ़रत था थर जी तरक़ी कुझु माण्हुनि खे हज़म नाहे थी रही असां नफ़रत जी सियासत खे दफ़न करे छॾींदासीं इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ त थर जो कोयलो बेकार आहे सीड़पकारी करणु बेकार आहे हाणे पूरो पाकिस्तान हैरान आहे त थर किथे पहुची वियो आहे इस्लामाबाद वारनि खे चवां थो त हू बि थर जहिड़ी तरक़ीअ ते ध्यानु ॾियनि यमनी फोर्सिस पारां बाबल मंदब जे साहिली इलाइक़े ज़ोहाब जो ॿीहर कंट्रोल हासिल करण जी दावा मुख़्तलिफ़ ऑपरेशन दौरान 1700 खां वधीक बाघनि खे मारण जी बि दावा कई वई आहे यमनी हुकूमत फ़ौज जे तर्जुमान मूजिबि हुसैन जी 1122 थाकनि ते कार्रवाई कई आहे जंहिं दौरान 1747 हुसी बाघी मारिजी विया आहिनि मके मुआदे जे स्ट्रेटजिक सियासी ऐं दिफ़ाई कमेटीअ जो इजलास अॼु रियाज में थींदो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ख़्वाजा आसिफ़ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिम उली सऊदी अरब पहुतल इजलास में तुर्किया ऐं सऊदी अरब जा परॾेही वज़ीर दिफ़ा वारा वज़ीर ऐं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शिरकत कंदा मके दिफ़ाई मुआदे ते अॻभराईअ जो जाइज़ो वरितो वेंदो परॾेही तर्जुमान मूजिबि पाकिस्तान इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ किरदारु जारी रखण वारे अज़म ते क़ाइम आहे थर पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल तब्दील करे सघे थो थर जो कोयलो पाकिस्तान जी तवानाई ऐं सनअती ज़रूरत लाइ अहम ज़रियो बणिजी रहियो आहे इस्लाम कोर्ट में तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त IPAs दरामदी कोयले बदिरां थर जे मक़ामी अमल करे रही आहे थर फेज़ थ्री सां सालियानो अटकल $220 million वाधू नाणे जी बचति थींदी गर्दी जी बाहि में सड़े पियो सोहेल आफरीदी रुगो एहतजाज ऐं धरणनि में मसरूफ़ आहे वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम जी प्रेस आहे त नाले काश उहो रहंदो त सियासत बि रहंदी सूबाई हुकूमत खे अवाम जी का बे अकरम राजा मोहसिन नकवी जी सोहेल आफरीदीअ ते करे छॾियो सलमान अकरम राजा जी नाकामी जो ज़िमेवार सोहेल आफरीदी नाहे

तौर या वीडियो लिंक जरिए पेश करने जो हुक्म नो अदालत फारूख हबीब हम्माद अजहर मुराद सईद ए शिबली फराज के इश्तियारी करार दिनों मिल्कियतन जा तफसील तलब अगोड़े डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम हसन नियाजी जा जमानत न थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी करी छॾिया।

पेट्रोल ते रिलीफ पैकेज हुकूमत जो एहसान ना है। हुकूमत के पेट्रोल लेवी वापस वठनी पवंदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त पेट्रोलियम मामले ते ईंदड़ मरहले जो ऐलान कयो वेंदो। हुकूमत के पेट्रोलियम लेवी खत्म करणी पवंदी। सरकारी कर्जन में 10 सालनि दौरान 340% जे आहे। 68,000 अरब रुपयनि जी वाधि थी आहे। सरकारी कर्ज़न जो काथो 86,000

0: जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा वाके वारे हन जो दौरो जस वाके वारे हन ते का अदालती कमीशन मौजूद होया हैदराबाद बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ शागिर्दन के एहतजाज जो नोटिस वरतो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ शागिर्दन के एहतजाज जो नोटिस वरतो सिंध हुकूमत जो वफद हैदराबाद में एसपीएससी शागिर्दन के एहतजाजी कैंप ते पहुंची वयो आजिज धामरा हैदराबाद जो मेयर काशिफ शोरो एमएन जो शागिर्दन सा गालियो शागिर्दन जो मौकिफ मौजूद साल 2024 वारे गडियल चटाभेटी के इम्तिहानी नतीजन में पैंजा नवाजी कई वही इम्तिहानी नतीजन में बेजाबकिन की जांच कराए शफाफियत के यकीनी बनाया वे सारे तकरार ता झेड़ो औरत कुहाड़ी जा वार करे कतल गोठ रांझो खाते बिरादरी के बिन धुरन में कारे तकरार ता झेड़ो थे जेड़े दौरान 50 साल की अरबाब खातून कुहाड़ी जा वार करे कतल थी वही है लाश अस्पताल मुंतकिल सखर में सिंध हाई कोर्ट के हुक्म बावजूद कौमी शाहरा जो तारी जो शिकार हादसा मामूल बनल रानीपुर का मोरो ताई नेशनल हाईवे जो कम मुकम्मिल न थियण सबब मुसाफिर परेशान आन कौमी शाहरा हंधा हंधा उखड़ेल है खोटाई सबब गाड़ियों की अचवन सख्त मुतासर थी रही है शहरों जो चवण है रानीपुर इंगोर जा हराणी कंडियारो नोशेरो फेरोज मोरो ताई कौमी शाहरा जो कम सुस्त रफ्तार जो शिकार हुजण जो हुकूमत नोटिस वे मेहरापुर में गिटी में बिजली जी किरियल तार मां करण लगन सबब नौजवान फौत थी वियो वार्ड नंबर 11 में बिजली जो करण लगन सबब रब नवाज मेमण हयाती विञाए वेठो शाहनवाज मेमण मौजूद भाव बिजली जी किरियल तार हटाए रहे हो त केस करण लगो जै सबब फौत थियो आहे जेकमाबाद यूनिवर्सिटी न होजन खिलाफ शागिर्दन जो एहतजाज शागिर्दन शहीद बेनजीर भुट्टो लाइब्रेरी का प्रेस क्लब तई रैली कढ़ी शागिर्दन चयो त जिले में यूनिवर्सिटी न होजन सबब शागिर्दन के आला तालीम लाए बेन शहरन डां वंजनो पवे तो हुकूमत मामले जो नोटिस वठे जेकमाबाद में यूनिवर्सिटी कायम करे सकरण में घर ते पुलिस चढ़ाई दौरान मुबैन तौर औरत फौत वारसन जो थाने अगैं लाश रखी धरणो बाबदा कॉलोनी वासी जुण जा बिरादरी के मानून थाने अगैं लाश रखी एहतजाज कयो मुजाहिरीन मौजूद पुलिस बासरन जी चुच ते रात देर सा घर ते चढ़ाई कई है खौफ सबब औरत फौत थी है जांच कर इंसाफ कयो वञे लालू रायक में बासर चाहे जा पैसा घुरण ते होटल ते कम कंदड़ पोरेत मथा गरम चाहे हारे छदी बासर जख मुगेरी गरम चाहे मथा हारे एजाज अली पतो के जख्मी करण बाद तशद्दुद भी कयो होटल मालिक ए पोरेतन जो वारे लाड़कानो रोड ते एहतजाज जवाबदार की गिरफ्तारी जो मुतालबो फरीदाबाद में काचे की तालीमी इदारन में उस्ताद ने सहूलत की खोट खिलाफ शहरन जो धरणो शहरन फरीदाबाद का एहतजाजी रैली कढ़ी सिटी गेट अगैं धरणो हयो मुजाहिरीन मौजूद तालीमी इदारन में उस्ताद ने सहूलत की खोट सबब शागिर्दन की तालीम मुतासर है जबून हाल स्कूल की मरम्मत कराए तालीमी सरगर्मियों बहाल कई वन दादू में चोरियों ए फुरन के वधंदड़ वाकन खिलाफ शहरन पारा प्रेस क्लब आडो बे डी में एहतजाज जारी है शहरन पारा बदमिली के जब्त आने जो मुतालबो जैकमाबाद भरसा कैडेट कॉलेज वेझो मुसाफिर वेन टायर रॉड टुटण करे तलाव में किरी पई है जैकमाबाद का शिकारपुर वींदड़ मुसाफिर वेन पानी के तलाव में किरी ड्राइवर ए क्लीनर के बचाया वो है पुलिस मौजूद वेन में मुसाफिर न हुआ
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
3: इरशाद ऑटोस एंड होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी

0: करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03005569
2: अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अरे खुश्क और बेरोनों की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चार रंजू खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चांदन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
3: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03011 96 851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुधा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013808743।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

सीमन जी जमात सहूनियन जी सियासत कर रही है सहूनियन वाली सियासत के सिंध में आनन वाली कोशिश के कामयाब थे न दींदी थर जा बार टॉप कन था अवा खेन वाधायू नफरत वाली सियासत कर था थर की तरक्की कुछ मानून के हजम ना थी रही अस नफरत की सियासत के दफन कर छींदी इस्लामाबाद जहा माह हुआ तो थर जो कोयलो बेकार है सीढ़पकारी कर बेकार है स्थान हैरान किथे पुछी वो इस्लामाबाद वालन के चवा तो हू बेथर जड़ी तरक्की ते ध्यान दें यमनी फोर्सेस आबी गुजरगाह बाबुल मदब जो बीहर कंट्रोल हासिल करे वरतो साहली इलाके जोबाब जो कंट्रोल संभालन बाद यमनी फोर्सेस जी वडी कामयाबी यमनी हुकूमत जे तर्जमान मूजिब हुसैन जे 1100 फौजी थाकन ते कार्रवाई कई है जै दौरान 1747 हूसी बागी मारजी व्या आहिन मक्का मुआदे की स्ट्रेटजिक सियासी ए दिफाई कमेटी जो इजलास अज रियाज में थी नायब वजीर आजम इसहाक डार ख्वाजा आसिफ ए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब पोतल इजलास में तुर्किया ए सऊदी अरब जहा परदेही वजीर दिफा वारा वजीर ए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शिरकत कंदा मक्का दिफाई मुआदे से अकबराई जो जायजो वरतो वो परदेही तर्जुमान मूजिब पाकिस्तान इलाकई अमन इस्तेहकाम ला किरदार जारी रखने वाले अजम से कायम है थर पाकिस्तान जो मुस्तकबिल तब्दील कर सके तो थर जो पाकिस्तान की तवानाई ए सनती जरूरत लाए अहम जरियो बणजी रो है इस्लाम कोर्ट में तकरीब के खिताब कंदे वडे वजीर चयो ता आईपीपी दरामदी कोयले बदरा थर जे मकामी कोयले डा मुंतकिल थी रही है सिंध हुकूमत फेज 3 मनसूबो 100% पंजे खर्च ते मुकम्मल कर रही है थर फेज 3 सा सालियानो अटकल 220 मिलियन डॉलर वाधू नाणे की बचत थी केपी दहशतगर्दी की बाह में सड़े पो सोहेल आफरीदी रुगो एहतजाज ए धरणन में मसरूफ है वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे केपी में रियासती रिट खत्म थी वही हुकूमत नाले का शय ना बची सूबो रह तो सियासत भी रही सूबाई हुकूमत के अवाम की ना पीटीआई की सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा मोहसिन नकवी की सोहेल आफरीदी से गाल नाकाम बनाने वाले इल्जाम के रद्द कर छो सलमान नाकामी जो जिम्मेवार सोहेल आफरीदी ना है गाल दौरान केपी के 5 जिले में इमरजेंसी लगाने जो चयो वो इमरजेंसी लगाने की इजाजत ना दे सकूं इस्लामाबाद की अदालत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से हमले केस में पीटीआई बानी के अदालत में पेश करने हुक्म दे छो दहशतगर्द अदालत ईंदड़ बुधणी से बानी के जिस्मानी तौर या वीडियो लिंक जरिए पेश करने हुक्म दिनो अदालत फरुख हबीब हमाद अजहर मुराद सईद ए शिबली फराज के बेश्तिहारी करार दिनों मिल्कियतन जहा तफसील तलब अगूने डेप्टी स्पीकर असेंबली वासिक कयूम ए हसन न्याजी जहा जमानत न थे जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी है।

0: पेट्रोल ते रिलीफ पैकेज हुकूमत जो हुकूमत के पेट्रोलियम लेवी वापस वठनी पवंदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम चयो तो पेट्रोलियम लेवी वाले मामले ते 7 अक्टूबर ते ईंदड़ मरहले जो ऐलान कयो वेंदो। हुकूमत के पेट्रोलियम लेवी खत्म करनी पवंदी। केपी में सिक्योरिटी फोर्सेज की खारजन खिलाफ कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरियन मूजिब डेरा इस्माइल खान में गुझे इतला ते कार्रवाई करे 3 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो कयो वयो। कार्रवाई दहशतगर्द नेटवर्क के कमजोर करण लाय आहिन।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। फॉरवर्ड कॉलेज

एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।

0: कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320-180-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
0: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

ನೆಟ್ವರ್ಕ್. हाजिर है अवजो शो सिंधड़ी जी शा...

सिंधड़ी जी शाम अवां जे नाम अवां जी खिदमत में यूनिस बकारी जो सलाम।

हीउ मुझे सामाइन जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जो जी एफ एम मिरपुर खास जी एफ एम लाड़कणू जी एफ एम सखर जी एफ एम मोरो जी एफ एम मेहरापुर जी एफ एम सकरंड जी एफ एम मटियारी जी एफ एम मातली जो गरियल आवाज़।

सॼे सिंध में हिकु ई वक़्तु ॿुधो वेंदड़ अव्हां जो पंहिंजो रेडियो नेटवर्क ऐं उन रेडियो नेटवर्क जे तमामु स्टूडियोज़ जे टावर्स जे भर मां आवाज़ पखीड़े जी परवाज़। मज़ सामेन अॼु अव्हां सां दिलि सां ॻाल्हियूं कंदासीं, दिलि वारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं। अव्हां उन्हनि ॻाल्हियुनि जो हिसो थियण चाहियो था त मोबाइल हथ में खणो, पहिरीं मैसेज टाइप करियो, लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो। जी हा, लिखणो आहे MTI, उन खां पोइ स्पेस बि ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888 यानी 888 ते मैसेज सेंड करियो, छो त प्रोग्राम आहे जारी ओ सारी। नंढड़े ब्रेक खां पोइ अव्हां सां गॾु हूंदो अव्हांजो पंहिंजो यूनिस बकारी।

देवस रामू भील असांखे ॿुधे थो भलीकार नज़ीर वज़ीर शबीर ॿुधे पियो ऐं जुमू भील अवां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं वॾा वड़ अवां असांखे ज्वाइन कयो आहे नए दुम्बाले खां अखियुनि ते अवांजो मैसेज मिठा माण्हू भलीकार मज़ सामाइन पहिरें कलाक में वञा मैसेजिस हूंदा ऐं ॿिए कलाक में अवां जूं कॉल्स हूंदियूं त पोइ बिल्कुल तव्हां छह वॻे ताईं लिखो MTI स्पेस पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो 88 81 असांजो नंबर आहे 888-1

सजन सांगीअ जी वांड खां असांखे ज्वाइन कयो गुलाब गुल। महिरबानी गुलाब गुल, तमामु घणी महिरबानी, वेलकम चवंदासीं प्रोग्राम पसंदि करण लाइ। तमामु घणियूं मोहबतूं। ऐं ॻोठ आलम खान जरवार खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार ऐं मोहम्मद इदरीस जरवार ॿुधनि पिया। मिठनि माण्हुनि खे चवंदासीं भलीकार, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, थैंक यू ऐं महिरबानी ऐं मोहबतूं अव्हां जूं। थैंक यू वेरी मच भलीकार। ऐं जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे, जी जी जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे नफ़ीस खत्री, अवां असांखे ॿुधी रहिया आहियो मियापोटा तलहार खां। तमामु घणियूं मोहबतूं अव्हां जूं, अव्हां खे चवंदासीं वेलकम। ऐं तमामु घणी ख़ुशी थी अञा मैसेज पहुता। ऐं जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे जी जनाब गोविंद, ऐं गोविंद कोहली साहब तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, तव्हां असांखे ॿुधो पिया। मोहबतूं वॾा वॾा अव्हां जा, अव्हां असां सां गॾु शामिल आहियो। जी जनाब ॻोठ आहे नोटो खां, थैंक यू वेरी मच। ऐं रामचंद कुमार बि असां गॾु ॿुधे पियो, तमामु घणी मोहबतूं, थैंक यू। जेके जेके महिरबानी ॿुधनि पिया तव्हां सभिनी जा वॾा वॾ। ऐं ॻोठ पाबो वेरो थर पार्कर खां दिलीप कुमार मेघवाड़, नोवल राय, दानिश कुमार ऐं सूरज गुल जो मैसेज पहुतो। शंकर लाल बवा सां गॾु ॿुधे थो। किरणे कुर्ब हाजी सुल्तान लुंड खां प्यार अली लुंड साहब मैसेज पहुतो। महिरबानी, थैंक यू, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, तमामु घणियूं मोहबतूं। ऐं वॾा वॾा अव्हां जा, जिते बि हुजो शाद हुजो, आबाद हुजो। ऐं पुनू ख़ान पंवर खां रुस्तम अली पंवर जो मैसेज पहुतो। रुस्तम अव्हां जूं बि तमामु घणियूं महिरबानी, किरोड़े कुर्ब अव्हां जा जो अव्हां सां शामिल। हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली लग झंडे मरी खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली ॿुधे पियो, अव्हां जूं बि तमामु घणी महिरबानी। ऐं किरोड़े कुर्ब तव्हां जा। ऐं झलूरी खां ख़ालिक लाशारी तव्हां जूं मोहबतूं जो तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे। ऐं ॻोठ ग़ुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी साहब ॿुधे पियो, अव्हां जूं तमामु घणी महिरबानी। भलीकार चवंदासीं महबूब नाज़ जलालाणी ऐं मुख़्तियार नाज़ जलालाणी, अव्हां जूं महिरबानी। आरज़ू असलम जलालाणी, अव्हां जूं मोहबतूं। तव्हां लिखियो आहे असलाम वालेकुम। वालेकुम असलाम। किरोड़े कुर्ब सुहिणा साईं।

जी जनाब मोहम्मद अयूब लाशारी साहब ऐं बाबू लाशारी हिकु दफ़ो ॿीहर ॼामोट फार्म खां ज्वाइन करे चुका आहिनि। सुहिणा साईं अव्हांजी तमामु घणी महिरबानी ऐं अलीपुर मोरी खां असांखे ज्वाइन कयो आहे। जी जनाब अलीपुर मोरी खां असांखे यादि कयो आहे। ख़ुदा ॾिनो बजीर अव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। अदा फौज़िया जो कलाम ॿुधाइजो, मिठा भाउ कोशिशि कंदासीं मोहबत। रेडियो नेटवर्क ऐं शो अवां ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम ऐं सिंधड़ी जी शाम में यूनुस पकारी सलाम। अवां कहिड़े शहर वाहिण वस्ती ऐं बस्ती खां ॿुधो पिया, उन जे लाइ लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो 88 81 888 1 असांजो नंबर, उन ते मैसेज।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो, याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ए औरतुन में वजन जो न वधण उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो। राबते लए 0301-9196-851।
0: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार। कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295-894 ایں فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہے اعتماد جو
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر FM 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے FM میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میراپور FM 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
6: میراپور کے ہو تو آواز بھی میراپور کی ہے سنتے رہو جی FM 94

आहे जीए एफएम 88 रेडियो नेटवर्क ऐं जेकॾहिं मां ॿुधो पिया त पोइ जल्दी सां टेक्स्ट कयो, मैसेज कयो, लिखो MTI स्पेस पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो 888-188-81 असांजो नंबर आहे, हुन ते मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो। जी हा, अवन मैसेजिस यकीन असांजे लाइ कुल काइनात हूंदा, ॾिसंदासीं केरु हूंदो जेको असांखे

जी जनाब वेलकम। उन्होंने मेहरबान के जी हाने हाने मैसेज असें मोकले रहे हैं। एक दफा बेहर गद मैसेज मोकले गोठ मोहम्मद तैयब थेबो खां हबीबुल्ला थेबो साहब है। हाँ मुझे आवाज़ अंदाज गुफ्तगु सभी के पसंद किया है। मां तवा जो थोराए तो आया साई जी लफ्ज तवा लिखा मां उन्हें जे लाइक तो कोन आया पर यह अवां जी मोहब्बत है जो तवा एतरो सुठो खुलूस मोहब्बत ऐं सच्चाई से असि हौसला अफजाई कर जो एक वधिक मैसेज आयो तमाम घणी मेहरबानी थैंक यू।

0: अब्दुल हकीम खास केली बदीन खां बदे पियो भलीकार मिठा माणो केरड़े कुर्बतां जा
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
2: ज़्यादा सुठो
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध आवाज

रांझन कोरी मेर प्रखास कोरी गोठंग बदे पे भली का रांझन अब्दुल हकीम खास के लिए साहब अवाजू मोहब्बत हूँ अवाम बताएंगे बदीन का ज्वाइन के कुर्ब

लाखाट खां मोहम्मद आलम मल्हा साहब बुधे पियो मिठा माण्हू भलीकार जी जनाब सास आवाज़ ए साथ में वे साथ एक ट्रैक प्ले करे वठूं न्यूज ब्रेक भी होंद न्यूज ब्रेक का कमर्शियल ब्रेक है उनका बाकायदगी से कॉल्स वी कॉल के लिए तरीकेकार उ ही सा पहरी इन ट्रैक के बुधंदा हलंदी ब्रेक वी उनका जो गाल बुधू ट्रैक जी जनाब जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क वहां मुखातिब है प्रोग्राम है सिंधड़ी जी शाम उन सिंधड़ी जी शाम में यूनिस बकारी जो सलाम।

ही मयार वारो गानो है पण बुधंदा सी बाकी फिलहाल मां बिल्कुल हथ को निकडंदस मां ब्रेक का पे वापस वरी इंदस मता समझो त मां हलियो वे इंशाल्लाह इंशाल्लाह साह टुटण ताईं जो साथ जारी रहंदो न्यूज़ ब्रेक लाइ हलूं था अॻिते वधूं था ऐं ही गानो ॿुधंदा हलंदासीं केॾे न वञ

आर्ग्यूमेंट मुल्क में जबरदस्ती चलाया जा रहा है कि सिस्टम कलैप्स हो चुका है तो आप सुबह मिला। वैसे तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मान लो तो इस्लामाबाद को थरपारकर वालों को हवाला कर दे, हम उसको ठीक कर देंगे, वहां के बच्चे को टॉप हर एग्जाम में टॉप करवा देंगे, उनका हॉस्पिटल्स का हाल हमने अभी अभी देखा, उनका हॉस्पिटल्स को भी हम 100% मुफ्त करवा के आर्मी दुनिया का स्टैंडर्ड्स पे लेकर आएंगे। हमें सिर्फ इस्लामाबाद का जिम्मेदारी दे दे, वहां हम आपको दिखा देंगे कि थर थर के नौजवान, थर के सियासतदान क्या क्या कर सकते हैं। हमेशा की तरह अब ये रिवायत बन चुका है कि हमारे थर के बच्चे टॉप करते हैं, जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय उनके लिए

दहशतगर्दीअ खे हिकु साज़िश तहत भरियो वियो आहे। ग़लति पॉलिसियुनि सबबु मुल्क विरहाइजी रहियो आहे। लॉन्ग मार्च खे ख़िताब कंदे ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी चयो त पंहिंजे अवाम सां गॾु बीहणु बेवकूफ़ी आहे त मां बेवकूफ़ आहियां। हुकमराननि वटि अञा बि वक़्तु आहे, अवाम ॿाहिरि निकितो त केरु बि कंट्रोल करे न सघंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना

0: चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राबते जे लाए 03201800003।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743।
5: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: Tuan Kumar Puri Nasuti Muhammad Jalala
1: वालेकुम अस्सलाम तमाम घणी महिरबानी भली कर जी मज़े समईन त पोए ॾिसंदा जी हाणे कॉल कई हेलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे ख़ुशि आहियो पुनल हुसैन मेहर साहब घोटकी जे थदियुनि हवाउनि मां यादि करण लाइ महिरबानी अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई
0: आहे
1: ख़ुशि हुजो आबाद हुजो महिरबानी मेहर साहब महिरबानी महिरबानी अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे जी जी आवाज़ अचे पियो

0: नाला खणी वठो नंडिया वालेकुम असलाम किरोड़े कुर्ब उन्हनि सभिनी जा ऐं तव्हां जूं स्पेशल महिरबानी आबाद हुजो ख़ुशि हुजो सदाई सुखिया तारनि में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो कुर्ब साईं कुर्ब तव्हांजा लख थोरा GFM 88 रेडियो नेटवर्क शो ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम ॾिसंदासीं त हाणे असां सां गॾु कॉल ते केरु हूंदो हलो अस्सलाम अलैकुम हलो अस्सलाम अलैकुम
1: अस्सलाम अलैकुम
0: वालेकुम अस्सलाम केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे जखराणी साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला आहियो
1: बिल्कुलु
0: अलहमदुल्ला असांजी पूरी टीम ख़ुशि आहे अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे वालेकुम अस्सलाम किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू लख थोरा तव्हांजा जी जनाब ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम सर
0: साईं केर साहब ऐं किथां खां
2: सर शहबाज जमारी कराची गुलशन इकबाल
0: छा हाल आहे शहबाज जमारी ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला मतारा जोड़ अलहमदुल्ला अव्हांजी दुआ लॻी पई आहे शो कीअं थो लॻे
2: बिल्कुलु बिल्कुलु सही पियो लॻे असां कराची में कंदा आहियूं
0: हा अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
2: सर मुंहिंजो दोस्त आहे नदीम जमारी जेको मूंसां गॾु कंदा पियो
0: अच्छा नदीम जमारी जूं महिरबानियूं तव्हां जूं महिरबानियूं कुर्ब तव्हांजा मिठा माण्हू
2: सर कुझु दोस्तनि खे सलाम ॾियणो
0: भले सलाम ॾियो अखियुनि ते
2: सर अब्दुल करीम जमारी आहे मुंहिंजे बाबा साईं शेर मोहम्मद जमारी जेको जेतम प्रोग्राम कंदा पियो आज मामन खान मेरी केर सलाम ॾियूं
0: था सभिनी खे तव्हांजा सलाम पहुची विया साईं किरोड़े कुर्ब
2: सलाम
0: मूंखे बि अखियुनि ते अखियुनि ते वालेकुम सलाम महिरबानी साईं हा मां कोशिशि कयां थो हाज़ुर साईं हाज़ुर हाज़ुर
2: महिरबानी।

0: नंबर जो ते अभी कॉल पे करे वो नंबर है बुढ़ी 344 है पंटी है 25786 0334352578 असाय नंबर हुंदो कॉल केंजी हुंदी उन जे ला अटेंड था कयो कॉल के हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: ओचोड़े जी मार लो के सोरन सान सतायो वोट बाबू वेरो सरकार करता दिलीप कुमार बेगवाड़
0: हां दिलीप विछोड़े जी मारे लए मके सुरन सन सतायो
1: जी दीदिया तमाम बेहतरीन गानो है इनके पूरो हलाय जा जरूर
0: सही पूरो गानो हले जो बुदो हमें से कद भी केर पे बुदे
1: जी रस्ता वाली पावर मालक मुंद बलोच जाए अब्दरे मान लगारी आई प्यारो दोस्त है असान जो मलक मुंद बलोच मोहम्मद सदीक पाड़ गया जेके बुदन ब्या सबनी के कोट सारा सलाम
0: कुर्ब कुर्ब मेहरबानी वालेकुम सलाम थैंक

0: जी जनाब, इस्तांजी कॉल ते केरा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: साईं केर साहब है किथा का? जी छाल है चांडिया साहब, खुश आयो?
1: खैर खैर से अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुक्र है ताक शाय ते
0: अल्हम्दुलिल्लाह। ताज अगर भी केर भी बुदे
1: मेरा कुछ खास दोस्त है भाई रे।
0: जी जी, खास दोस्त नहीं, खास भाई रे जे नाला वठो
1: बदर की जाने कार जाने गम साथ जाने।
0: जी जी, मेहरबानी हो, मेहरबानी हो, गुरब लखत हो रहा, लखत हो रहा, मेहरबानी। जी जनाब, थैंक यू वेरी मच। कॉल करण का पहरी एकड़ो अनुरोध अर्ज हों, जिन मेल कॉल कर साफ सुथरी जगह से भी कॉल कर, तेज हवा में न बीह, छो तो रेडियो तॉल वे पे में तमाम घणो गोड़ हों, सुठो को लगन, इन कोशिश कर तो हवा के हथाड़ो डो, ताकि तुझे क्लियर चिटो चिटो रेडियो में आवाज अचे। कॉल से हलंदी दिसूँ था केर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: साईं केर साहब है किथा का?
2: इरफान हली थे वो गुलाबी संगत तालका थाले पर खबरी बिटा का।
0: छा हाल है मिठा मानो, खुश आयो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस साहब, बिल्कुल ठीक ठाक, तां बुधायो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ लगी पे तां जो दुआओं, तां खुश आयो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, तमाम सुठो प्रोग्राम तमाम जो हली रहा है, ऐं माशाल्लाह हाने वाली प्रोग्राम में जो बैकग्राउंड अचे थो वो तमाम जुमाए थो।
0: हां, खबर पवे न भले मानन के।
2: हाँ बिल्कुल, अज मैं तुझे शुरू का शो बुधो, तेरह कलाक तक बैकग्राउंड हल पो मजो पे दे, असा चाहूँ बस तेरह कलाक में सिर्फ बैकग्राउंड है, तवाज आवाज बुधो टे कलाक में भले।
0: हाँ, थोड़ी थोड़ी चेंजिस तब्दीलियों आनी इंशाल्लाह, दुआ कर।
2: हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह कह।

0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह तमाम घणी महिरबानी दोस्तनि जे नाला खणंदव
1: सलाम सिस्टर मिसिस अली सिस्टर दुआ खान ऐं हुन खां पोइ फौजिया फरदाना राय सुमरो मंताज सुमरो हुसैन बचिरो हाफ़िज़ गुलाम अहमद सांबल अब्दुला बंगवार बच्चन चंबानी जेके दोस्त ॿुधनि था हुननि सभिनी खे इरफान अली खे पारां कुर्ब सलाम
0: वालेकुम असलाम कहिड़े कुर्ब मिठा माण्हू मोहबतूं तव्हांजूं तव्हां असांखे यादि कयो ऐं शामिल थींदा आहियो तव्हां
1: हा बिल्कुलु इनशाह तव्हांजे प्रोग्राम में असां शामिल हमेशा जीअं थींदा रहंदासीं
0: किरोड़े कुर्ब साईं किरोड़े कुर्ब मोहबतूं तव्हांजो लखत लखत लखत अलाह दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो कॉल करियो 2334-3525-786 ते ॾिसंदासीं त कॉल ते असां सां गॾु केरु हूंदो त पोइ कॉल अटेंड करे था वठूं ॾिसंदा केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु भाउ जी छा हाल आहे प्यार अली लुंड ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे महिरबानी मोहबतूं अवां जूं सोणा साईं मोहबतूं GFM 88 रेडियो नेटवर्क अवां ॿुधो पिया सिंधड़ीअ जी शाम ऐं उन में अवां लाइ यूनिस बकारी जूं मोहबतूं ऐं सलाम ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी फकीर आमिर जिंजी साहब नोटे जी नगरी खां वेलकम चवंदासीं तव्हांखे
2: बिल्कुलु वरी ख़ुशामदीद बाबा तव्हांजो प्रोग्राम बिल्कुलु

0: नंढड़ो मुंहिंजो पोटो आहे, पंहिंजो फर्ज़ंद आहे हिकिड़ो मुंहिंजो जवान नसीम रज़ा जलालाणी, ऐं ॿियो मुंहिंजो नंढड़ो हिकिड़ो पोटो आहे जेको तक़रीबन महीने ॾेढ जो आहे, उहो बि तव्हां सां गॾु जेको शामिल आहे। बहरहाल तव्हां खे अलाह ख़ुशि रखे।
1: महिरबानी महिरबानी, थैंक यू, महिरबानी, लख थोरा, अलाह हाफ़िज़, अलाह हाफ़िज़। नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी साहब झोल खां असांखे जॉइन कयो। हाणे असां सां गॾु केरु हूंदो, हुन जे लाइ हलंदासीं कॉल जी तरफ़। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो, अच्छा शायदि दादा जेको आहे जंहिं कॉल अटेंड कई आहे उहो रेडियो पासे में रखियो वेठो, हिन करे पहिरीं रेडियो ॿुधंदो हूंदो, लिहाज़ा मां मजबूर थी कॉल कटे वठंदुसि, छो त हू मूंखे न पर रेडियो खे ॿुधी रहियो आहे। पहिरीं जॾहिं बि कॉल मिलायो था त पहिरीं तव्हां आरजे खे ॿुधो, छो त आरजे जो आवाज़ थोरी देरि अॻु में ईंदो आहे ऐं रेडियो जो जेको आवाज़ आहे उहो थोरी देरि लेट सां ईंदो आहे। इन जे करे पोइ गॾियल गॾियल जेको हूंदो आहे दिमाग़, उहो सोचींदो आहे त रेडियो में अञा छो कोन कॉल आई आहे। रेडियो ॿ टे मिंट लेट सां कॉल ईंदी आहे, तंहिं करे प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज कॉल मिलायो था त रेडियो खे बंदि करे छॾियो या परे करे छॾियो, ताकी ॿिया दुनिया वारा सुख माणीनि, सुकून माणीनि। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी केरु पिया ॻाल्हाइनि?
2: बाबर चांडिया सां थो ॻाल्हायां।
1: जी बाबर चांडिया, केरु पियो ॿुधे? मुंहिंजा दोस्तनि साजिद
2: चांडियो, मंज़ूर चांडियो, मुमताज़ चांडियो, इम्तियाज़ चांडियो, अदनान चांडियो, असद चांडियो।
1: महिरबानी, लख थोरा, लख थोरा, कुर्ब साईं तव्हांजा। जी जनाब, जी जनाब, दोस्तो, मेहरबानो, कदरदानो, भेनरो ऐं भाइरो, कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे असां सां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी किथां खां पिया ॻाल्हायो? जी अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
3: जी मुंहिंजा दोस्त आहिनि नज़र हुसैन चांडियो, अदीब
1: जी,
3: ऐं मंज़ूर हुसैन ॿियो बाबर हुसैन।
1: तमामु घणी महिरबानी, लख थोरा साईं, लख थोरा। बेवफ़ा सां दिल लॻाए वेठासीं,
4: पंहिंजी विञाए वेठासीं, ज़िंदगी
1: ज़िंदगी पंहिंजी विञाए वेठासीं। हिन ट्रैक खे एंजॉय कयो ऐं गॾो गॾु कॉल करे वठो 2334-35-7-86 ते। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। छा हाल आहे ख़ालिक लाशारी साहब? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला ऐं मतार जोड़। महिरबानी, तव्हांजो लख थोरा ऐं अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे? जी महिरबानी, लख थोरा, लख थोरा, लख थोरा। ॾिसंदासीं कॉल ते असां सां गॾु केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साईं, केरु साहब ऐं किथां खां? फिदा हुसैन शहर साहब, वेलकम था चऊं, भली कार था चऊं, ख़ुश आमदी था चऊं, भली करे आया जी आया। महिरबानी, तव्हांजो कोशिश कबी, थैंक यू वेरी मच, लख थोरा कॉल करण जे लाइ। महिरबानी, लख थोरा। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब ऐं किथां खां? रुस्तम अली पवार साहब, अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे?
5: दोस्त पिया ॿुधनि, दिलीप कुमार मेंगवार, चोहन कुमार कोली, नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी, कुर्बान अली छाकिरी, जेके बि दोस्त ॿुधनि पिया सभिनि खे सलाम।
1: वालेकुम असलाम, तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हांजो साईं, भली कर, थैंक यू वेरी मच। ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो आवाज़। साज़ ऐं आवाज़ साथ में सिंधड़ीअ जी शाम अव्हां जे नाम काल ते ॾिसंदासीं केरु आहे असां सां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम यूनुस भाउ, ख़ुशि आहियो, ख़ैरु आहे?
1: अलहमदुल्ला। केरु साहब ऐं किथां खां? रामचंद कुमार कोहली खे भली कार था चऊं, ऐं असां गॾु केरु पियो ॿुधे? साईं वालेकुम असलाम, किरोड़े कुर्ब तव्हांजा, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, मोहबत हो साईं जी। जनाब लख जी हा, केरु हूंदो असां गॾु ऐं केरु थींदो अॼु किशो जो हिसो बनबो, त पोइ हुन जे लाइ कॉल अटेंड कयूं पिया। हलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, केरु साहब ऐं किथां खां? जी जी, अव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? जी जी जी जी वालेकुम असलाम, किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू, किरोड़े कुर्ब, थैंक यू थैंक यू, लख थोरा तव्हांजा। जी मज़े सामईन जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे सखर लाड़काणे मीरपुर ख़ास मातली मटियारी मेहरापुर मोरो सकरन खे अवां हिकु ई वक़्तु ॿुधो। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम, केरु साहब? हलो अस्सलाम वालेकुम, केरु साहब ऐं किथां खां? जी जनाब आवाज़ अचे पियो, केरु पिया ॻाल्हायो? जनाब कॉल ड्रॉप थी वई। ॾिसंदासीं त हाणे असां गॾु कॉल ते केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम,
1: केरु साहब ऐं किथां खां? जी चांडिया साहब, अव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? जी जी
7: साईं, असां मास्टर मंज़ूर कलाम ॿुधायो, गॾु खाइण पीअण वारा दुश्मन थींदासीं।
1: ठीकु आहे, कोशिश कंदासीं। थैंक यू सर, थैंक यू, महिरबानी। लख थोरा मज़ सामीन, शो आख़िरी लमात्रा वधे थो। प्यारे

0: कॉल ते के रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, केर साहब है कितना खा
1: मेरा कलोड़ो कंडिया रेखा
0: छा हाल है कलोड़ा साहब, खुश आयो
1: अल्हम्दुलिल्लाह जो आए तां जी तां बुदायो
0: अल्हम्दुलिल्लाह वहां से करीब केर पे बुदे
1: मुझे भाव मामा अमीन कलोड़ो मिसाल कब के भार बनी बुदा सभी के सलाम आई मुझे दुआ घुरन तबियत सही थी
0: इनशाला अल्लाह सही कह ठीक थी वा बिल्कुल हशाश बशाश थी वा।

0: खानी कूड़ा कसम फेरी ने एड़ो जबरदस्त सुरीलो दर्दीलो आवाज गजी बुधूं पिया कॉल पेरी अटेंड करे रहा टुंडी सुधा कॉल ते केरे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी केर पे का लाइन बाबर ताजी पेरी कॉल आई हुई मुझे ख्याल में चलो ताजा कर भी केर पे बुदे जी जी जल्दी ना लौटो भाऊ टाइम घटा मेहरबानी मेहरबानी लख थोरा अच्छा काफी ऐसा ये नोट करना है तो कदे कदे मानो आवाज चेंज करे भी कॉल करे तो ये न कहो प्लीज रेडियो है ये अमाजी कौमी अमानत है असा जो को मसलो को ने आर जो चरो कलाक गाल हलो वेंदो पर अमाजी मोहब्बत के तारीख में याद रखे वेंदो प्लीज प्लीज हर कें जला ब मिनट छियो वारे वारे से कॉल कयो एकड़ो कॉल करे एकड़ो दफो करे वरी बेन जो कॉलो बुधो ताकि सजी सिंध एक थी वजे सजी सिंध प्रिय जो पाछो हो जे केर केंचे ला नाराज ना हो जे मोहब्बत में मोहब्बत मच ऐसा ना कॉल ते के रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम भाई
0: अदर ता जो आवाज चेंजर लगला है आवाज चेंज पेरी खत्म करियो प्लीज प्लीज आवाज चेंजर लगला है भला ये छो था करियो दोस्तों कॉल दे के रहलो अस्सलाम वालेकुम जी केर साहब है किथा का जी हेलो आवाज कौन पे अच्छे ओके जनाब शायद सिग्नल जो इशू है अदा जिथा कॉल करे पे ओते सिग्नल कटे जी जनाब छिनी छिनी बेडो मिठा मा गरीब के ही ट्रैक मास्टर फतेह जो आवाज है हाँ यूनिस बकारी कॉल अटेंड करे तो रिसुदा केर है हेलो अस्सलाम वालेकुम केर साहब है किथा का जी अदा बी आवाज अगर केर पे बुदे
1: मुझा दोस्त मंता चांडियो अदनान चांडियो असद चांडियो इंतियाज चांडियो जुल्फकार चांडियो
0: तमाम घणी मेहरबानी लख थोरा ता जा खुश हो जो थैंक यू मेहरबानी जुल्म कयो जी जनाब सासी कॉल ते के रहे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो
2: जूने जो नर्स एयरपोर्ट सक्कर
0: छा हाल साईं खुश आयो नालो एक दफो रिपीट कजो
2: दुआ बाबा दुआ तवा खुश आयो बियो कहरा
0: अल्हम्दुलिल्लाह मुचो तमा केर साहब पे गलाय नालो रिपीट कजो छो तो सवेरे कॉल अटेंड करण गाग में ता नालो गुजरी गयो
2: अच्छा फकीर रजवली जूने जो नर्स एयरपोर्ट सक्कर
0: छा हाल फकीर साईं खुश आयो ठीक आयो चंगा भला मतारा जोड़
2: लख सां मां तव्हां सां कुझु ॾींहं अॻमंज बि ॿ ॾींहं खनि अॻमंज ॻाल्हाए चुको हुउमि बाबा पर आख़िरी कॉल लॻी टाइम घटि मिलियो
0: हा साईं टाइम हुई बि घटि हूंदो आहे छाकाणि कॉल्स ते रश आहे तमामु घणी हाणे तव्हांजो महिरबानी दोस्तनि जा नाला खणण पसंदि कंदव
2: हिकिड़ो लतीफ़ साईंअ जो बैत न ॿुधायो
0: बिल्कुलु ॿुधायो बिस्मिल्ला
2: बिरह जी बानी कंहिंखां सिखे सुपारी
0: जी जी
2: हाणे ॾींदई हथ में मस कलम कानी
0: जी जी
2: हलफ पुछंदई हे कहिड़ो ज़ाहिर ज़बानी
0: वाह वाह
2: कन अॻियां जानी कहिड़ी कंदे ॻाल्हि
0: सुभान अल्लाह ज़बरदस्त हाणे दोस्तनि जे नाला
2: बस दोस्त सॼी सिंध आबाद रहे हिकिड़ो कलाम चवां आख़िर में हू असांजो हलाईंदो हिकिड़ो कलाम
0: साईं मां वाइदो नथो करे सघां छो त क्यू शीट कंप्लीट हूंदी आहे वरी इनशाला नेक्स्ट में तव्हांजी पसंदि जो गानो रखी छॾींदासीं
2: बस पोइ ईअं कयो नोट करे छॾियो
0: जी जी नोट कयूं था ॿुधायो
2: अॼु मूंखे पुनल जो ॾस आवाज़ सोना खान बलोच
0: इनशाला इनशाला ॿुधाईंदासीं ठीकु आहे साईं
2: थी सघेव त आख़िर में मिड़े हिकु ॿुधाइजो
0: साईं मां कोशिशि कयां थो पर छो त मां ख़ुदि हिन महिल एतिरो एंगेज आहियां जो गाना सर्च करणु मुंहिंजे वस में कोन हूंदा हज़ारे कॉलूं आहिनि कॉल मथे तव्हांजी कॉल छॾींदा
2: हे ਪੁਰਾਣੋ ਗਾਨੋ ਆ ਸੋਨਾ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੇ
0: ਅੱਖਾਂ ਤੇ
2: ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਬਖਸ਼
0: ਜੋ ਸਦਾ ਬਸ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੋ ਸਾਈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਖਤਰਾ ਜੀ।

0: जी जनाब, अड़ी रीत अजो के प्रोग्राम जो सुरहा रंग अवां जे नाम कदे
1: मुजो
0: सा। वालेकुम अस्सलाम केर साहब, जल्दी जल्दी नाल उठी उठो, मां मोकलाया पियो। चांडी साहब आखिरी बात में तांजी कॉल आई, थैंक यू वेरी मच, भली कार। और जे समय नहीं थे अजो कुछ शो पुजानी ते पहुंचे तो यकीनन तां के अजो कुछ शो वणियो हो तो इंशाल्लाह हयाती रही तो वरी मेला बचंदा मुलाकातूं थींदूं। तेस ताईं यारो यारी मोकिलाए थो यूनुस बकारी इन दुआ सां त जिते बवां जो पेर हुजे उते खुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैर ई ख़ैर हुजे। उस्तादन वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं निमन जूं छाऊं ऐं खुशियुनि वारियूं हवाऊं अवां जो मुक़दर बणजनि। साथ सलामत सिक सलामत अलाह।

किया ऐं सऊदी अरब जा परडे॒ही वज़ीर बचाव वारा वज़ीर ऐं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बि शिरकत कंदा। मका दिफ़ाई मुआहिदे ते अगभराई जो जाइज़ो वरितो वेंदो। परडे॒ही तर्जुमान मूजिब पाकिस्तान इलाक़ाई अमुन इस्तेहकाम लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म ते क़ाइम आहे। ईरानी फ़ौज नए जंग जी सूरत में अमरीका जी मेज़बानी कंदड़ समूरनि मुल्कनि खे निशानो बणाइण जो ऐलान करे छॾियो। ईरानी फ़ौज जे सरबराह जनरल अब्दुल हई चयो आहे त खिते में नई जंग शुरू कई वई त बा खिते में अमरीका जी मेज़बानी कंदड़ समूरनि मुल्कनि ते पहुचंदी। कंहिं बि कार्रवाई जो तुर्त ऐं वधीक सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। केपी जी सूरतहाल ते वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ पारां ॿीहर सदर आसिफ़ ज़रदारी सां मुलाक़ात करण जो फ़ैसिलो। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म ऐं सदर में थींदड़ मुलाक़ात दौरान केपी जी सूरतहाल अपोज़ीशन सां थियल ॻाल्हियुनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में गवर्नर राज या एमरजेंसी वारे ऑप्शन ते बि ॻाल्हियूं करण जो इम्कान आहे। हुकूमत अपोज़ीशन विच में थियल ॻाल्हियुनि जी नाकामी जो ज़िमेवार केरु? हुकूमत अपोज़ीशन जा हिक ॿिए ते इल्ज़ाम जारी। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त नथो लॻे त मुस्तक़बिल में ॿीहर ॻाल्हियूं थींदियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत केपी में एमरजेंसी वारे ऑप्शन ते गौर करे रही आहे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो त हुकूमती होड सबबि ॻाल्हियूं नाकाम थियूं आहिनि। पीटीआई केपी हुकूमत न छॾींदी ऐं नई असेंबली टोड़ींदी। लॉन्ग मार्च जारी आहे। सोहेल आफरीदी लीड करे रहियो आहे। रियासत ऐं केपी जो मसइलो सियासत न पर दहशतगर्दी आहे। रियासत जो फ़ैसिलो दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियूं न पर कार्रवाई आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त ॿिनि सालनि दौरान केपी में दहशतगर्दी जा 6000 खां वधीक वाकिया थिया आहिनि। 1200 शहादतूं थियूं। 37 हमलनि में अफ़गान शहरी मुलविस निकिता। 14 आपघाती हमला थिया आहिनि जिन में अक्सरियत अफ़गान शहरनि जी आहे। सीटीजी केपी वटि रुगो 17 बख़्तरबंद गाॾियूं आहिनि। केपी हुकूमत ॿुधाए त दहशतगर्दीअ जी ख़ात्मे लाइ वटनि कहिड़ी पॉलिसी आहे। दहशतगर्दीअ खे हिकु साज़िश तहत मड़ियो वियो आहे। ग़लति पॉलिसियुनि सबबि मुल्क विरहाइजी रहियो आहे। लॉन्ग मार्च खे ख़िताब कंदे केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी चयो त पंहिंजे अवाम सां गॾु बीहण बेवकूफ़ी आहे त मां बेवकूफ़ आहियां। हुकुमराननि वटि अञा बि वक़्तु आहे त अवाम ॿाहिरि निकितो त केर बि कंट्रोल करे न सघंदो। पिशावर में केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी ख़िलाफ़ एहतजाज। शहरनि सोहेल आफरीदी ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे नारेबाज़ी कई। अॻवाननि चयो त सूबे में दहशतगर्दी वधी रही आहे। सोहेल आफरीदी अमुन अमान ते ध्यानु ॾियण बदिरां एहतजाज करे रहियो आहे। अवाम सोहेल आफरीदी ख़िलाफ़ थी वियो आहे। थर पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल तब्दील करे सघे थो। थर जो कोयलो पाकिस्तान जी तवानाई ऐं सनअती ज़रूरत लाइ अहम ज़रियो बणिजी रहियो आहे। इस्लामकोट में तक़रीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त IPP दरामदी कोयले बदिरां थर जे मक़ामी कोयले ॾांहुं मुंतक़िल थी रहियूं आहिनि। सिंध हुकूमत फेज़ 3 मनसूबो 100% पंहिंजे ख़र्च ते मुकमल करे रही आहे। थर फेज़ 3 सां सालानो अटिकल $220 million वाधू नाणे जी बचति थींदी। निजकारी कमीशन गेपको जे निजकारी लाइ 9 कंपनियुनि खे अहल करार ॾेई छॾियो। 3 तुर्क ऐं 6 पाकिस्तानी कंपनियूं शामिल। ज़रिए तरक़ियाती बैंक ऐं HBFC जी निजकारी जो अमल बि तेज़ करण जी हिदायत। पेट्रोल ते रिलीफ पैकेज हुकूमत जो अहसान न आहे। हुकूमत खे पेट्रोल लेवी वापसि वठणी पवंदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त पेट्रोलियम लेवी वारे मामले ते 7 अक्टूबर ते ईंदड़ मरहले जो ऐलान कयो वेंदो। हुकूमत खे पेट्रोलियम लेवी ख़तम करणी पवंदी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ख़िलाफ़ शागिर्दनि जे एहतजाज जो नोटिस वरितो। सिंध हुकूमत जो वफ़द हैदराबाद में SPSC ख़िलाफ़ शागिर्दनि जे एहतजाजी कैंप ते पहुतो। आजिज धामरा हैदराबाद जो मेयर काशिफ शोरो ऐं ॿियनि जूं शागिर्दनि सां ॻाल्हियूं। शागिर्दनि जो मौक़िफ़ मूजिब साल 2024 वारी गॾियल चटाभेटी जी इम्तिहानी नतीजनि में पंहिंजा नवाज़ी कई वई आहे। इम्तिहानी नतीजनि में बेज़ाब्तगियुनि जी जांच कराए शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बणायो वञे।

फैज़गंज वेझो कार ऐं तकरार तां झेड़ो औरत कुहाड़ीअ जा वार करे क़तल ॻोठ रांझू ख़ासकेली में ख़ासकेली बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में कार ऐं तकरार तां झेड़ो थी पियो जहिड़े दौरान 50 वरनि जी अरबाब ख़ातून कुहाड़ीअ जा वार करे क़तल लाश इस्पताल मुंतक़िल मिठीअ में थरकोल मनसूबनि सबब मुतासिर ॻोठनि जे रहवासियुनि जो ॿिए ॾींहं बि पियादल मार्च जारी ॻोठाणनि जो ॻोठ घोड़ाड़ू डैम खां प्रेस क्लब इस्लाम कोट लाइ निकितल पियादल मार्च ॿिए ॾींहं बि जारी रहियो अॻवाणनि चयो त असांजो पियादल मार्च बुनियादी हक़नि रोज़गार जी हासिलात ऐं रेलवे ट्रेक जे मुतासिरनि सां इंसाफ़ लाइ आहे थरकोल मनसूबे सबब ज़रई ज़मीननि ऐं माहौल जी तबाही थी रही आहे मार्च इस्लाम कोट प्रेस क्लब पहुचंदो जिते धरणो हयो वेंदो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0606-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी।
6: 0301-399-2836।
7: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
8: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GA FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घटि ॿुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज़, फालिज, खंघ, TB, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज़, हेपाटाइटिस BC, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधण, मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 03011961।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा।
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03013808347।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Harniya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: एपीजी सूरतहाल ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां बि हर सदर आसिफ ज़रदारी सां मुलाक़ात करण जो फ़ैसिलो ज़रियन मूजिब वज़ीर आज़म सदर विच में थींदड़ मुलाक़ात दौरान के पी जी सूरतहाल अपोज़िशन सां ॻाल्हियुनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो के पीअ में गवर्नर राज या एमरजेंसी वारे ऑप्शन ते बि ॻाल्हियूं करण जो इम्कान आहे।

0: मिठी बरसात थरकोल मनसूबन सबब मुतासिर गोठन जे रहवासन जो गुजरियल डींहन खां निकतल प्यादल मार्च इस्लामकोट पहुंची वियो। गोठ गोड़ाड़ू डैम खां निकतल प्यादल मार्च प्रेस क्लब इस्लामकोट पहुंची धरने में तब्दील। अगवाणन चयो त प्यादल मार्च बुनियादी हक़न रोज़गार जी हासिलात ऐं रेलवे ट्रेक जे मुतासिरन सां इंसाफ़ लाइ आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569। फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साला ऐं बीएड अढ़ाई साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे

0: शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आहिन
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601100
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असां वट जगह जो डियारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ ब चार छ नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014514456 आई तौकीर अहमद 03616237093
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं

0: माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White's Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: आर्ग्यूमेंट मुल्क में जबरदस्ती चलाया जा रहा है कि सिस्टम कलैप्स हो चुका है तो आप सुबह में, वैसे तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मान लो तो इस्लामाबाद को थरपारकर वालों को हवाला कर दे, हम उसको ठीक कर देंगे, वहां के बच्चे को टॉप हर एग्जाम में टॉप करवा देंगे, उनका हॉस्पिटल्स का हाल हमने अभी अभी देखा, उनका हॉस्पिटल्स को भी हम 100% मुफ्त करवा के आर्मी दुनिया का स्टैंडर्ड्स पे लेकर आएंगे। हमें सिर्फ इस्लामाबाद का जिम्मेदारी दे दे, वहां हम आपको दिखा देंगे कि थर थर के नौजवान, थर के सियासतदान क्या क्या कर सकते हैं। हमेशा की तरह अब ये रिवायत बन चुका है कि हमारे थर के बच्चे टॉप करते हैं, जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय, उनके लिए तालियां बजाने के बजाय अपने नफरत की सियासत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत की सियासत दफन करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा।
7: सिस्टम जी नाकामी थे नवन सुबन वारो मन तक समझ का बाहर आ है। इस्लामाबाद नाकाम थे आ है तो इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कयो। थर जी तरक्की थे समूरो मुल्क हैरान आ है। इस्लाम कोर्ट में थर कोल फेज 3 मनसूबे जो इफ्तिताह कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आ है तो कराची में सियासी यतीमन की जमात सहूनियन की सियासत कर रही है। सहूनियन वाली सियासत के सिंध में आनण वाली कोशिश के कामयाब थे न दींदी। थर जा बार टॉप कन था तो अवां खे वाधायूं डियण बदरां नफरत वाली सियासत कयो था। थर जी तरक्की कुछ माण्हुनि खे हज़म नाहे थी रही, असां नफरत जी सियासत खे दफन करे छॾींदासीं। इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ त थर जो कोयलो बेकार आहे, सीड़पकारी करण बेकार आहे। हाणे पूरो पाकिस्तान हैरान आहे त थर किथे पहुची वियो आहे। इस्लामाबाद वारनि खे चवां थो त हू बे थर जहिड़ी तरक़ीअ ते ध्यानु ॾियनि। के पी जी सूरत हाल ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां ॿीहर सदर आसिफ ज़रदारी सां मुलाक़ात करण जो फ़ैसिलो। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म ऐं सदर विच में थींदड़ मुलाक़ात दौरान ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी सूरत हाल अपोज़िशन सां थियल ॻाल्हियुनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में गवर्नर रॉज या इमरजेंसी वारे ऑप्शन ते बि ॻाल्हियूं करण जो इम्कान आहे। हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में थियल ॻाल्हियुनि जी नाकामीअ जो ज़िमेवार केरु? हुकूमत ऐं अपोज़िशन जा हिक ॿिए ते इल्ज़ाम। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त नथो लॻे त मुस्तक़बिल में ॿीहर ॻाल्हियूं थींदो। वफ़ाक़ी हुकूमत ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में इमरजेंसी वारे ऑप्शन ते गौर करे रही आहे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त हुकूमती होड सबबि ॻाल्हियूं नाकाम थियूं आहिनि। पीटीआई के पी हुकूमत न छॾींदी ऐं नई असेंबली टोड़ींदी। लॉन्ग मार्च जारी आहे, सोहेल आफरीदी लीड करे रहियो आहे। रियासत ऐं के पीअ जो मसलो सियासत न पर दहशतगर्दी आहे। रियासत जो फ़ैसिलो दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियूं न पर कार्रवाई आहे। बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ चयो आहे त ॿिनि सालनि दौरान ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में दहशतगर्दीअ जा 6000 खां वधीक वाकिया थिया आहिनि। 1200 शहादतूं थियूं आहिनि। 37 हमलनि में अफ़गान शहरी मुलविस निकिता आहिनि। 14 आपघाती हमला कया विया जिन में अक्सरियत अफ़गान शहरनि जी आहे। सी टी डी ख़ैबर पख़्तूनख़्वा वटि रुगो 17 बख़्तरबंद गाॾियूं आहिनि। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत ॿुधाए त दहशतगर्दीअ जी ख़ात्मे लाइ वटनि कहिड़ी पॉलिसी आहे। दहशतगर्दीअ खे हिक साज़िश तहत मढ़ियो वियो, ग़लति पॉलिसियुनि सबबि मुल्क विरहाइजी रहियो आहे। लॉन्ग मार्च खे ख़िताब कंदे ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी चयो आहे त अवाम सां गॾु बीहण बेवकूफ़ी आहे त मां बेवकूफ़ आहियां। हुकुमराननि वटि अञा बि वक़्तु आहे त अवाम ॿाहिरि निकितो त केरु बि कंट्रोल करे न सघंदो।

0: परडेही वज़ीर, दिफ़ा वारा वज़ीर ऐं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शिरकत कंदा। मका दिफ़ाई मुआहिदे ते अगभराई जो जाइज़ो वरितो वेंदो। परडेही तर्जुमान मूजिबि पाकिस्तान इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म ते क़ाइमु आहे। ईरानी फ़ौज नई जंग जी सूरत में अमेरिका जी मेज़बानी कंदड़ समूरनि मुल्कनि खे निशानो बणाइण जो ऐलान करे छॾियो। ईरानी फ़ौज जे सरबराह जनरल अब्दुल्हाई चयो आहे त खिते में नई जंग शुरू कई वई त बाह खिते में अमेरिका जी मेज़बानी कंदड़ समूरनि मुल्कनि ताईं पहुचंदी। कंहिं बि कार्रवाईअ जो तुर्त ऐं वधीक सख़्तु जवाब ॾिनो वेंदो। वज़ीर आज़म शाहबाज शरीफ सां पोलैंड जे वज़ीर जी मुलाकात, इलाक़ाई ऐं आलमी मामलनि ते ॻाल्हियूं। विच ओभर जी सूरत हाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। कारोबारी राब्ता वधाइण ते बि इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म शाहबाज शरीफ जो चवणु हो त इलाक़ाई छिकताण जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारीअ जी ज़रूरत आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
5: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ 2-4-6-9-12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
4: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज

0: इस जापानी मशीन जरिए कई वनिये थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ नहीं यचो, मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

पड़ पाए। दिल जी गाल करनिया रही दुनिया में ना है सा मोहब्बत आए सचाई लबनते मुर्का विखरल दिलन में आबे आई चाहत जा चंग वजायो। दिल जी गाल करनिया चंड ते महफिल सजायो। दिल जी गाल करनिया।

GFM नेटवर्क ऐं प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानायतनि महबूब दिलरुबा दिलबर दोस्तनि प्रिय प्यारनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदी।

ऐसा करते हैं, एक मुलाकात रख लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक मुलाकात रख लेते हैं, चाय की प्यालियां कुछ सौगात रख लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक मुलाकात रख लेते हैं, चाय की प्यालियां कुछ सौगात रख लेते हैं। मैं भी उदास हूं, तुम भी गुमसुम जाना। मैं भी उदास हूं, तुम भी गुमसुम जाना। महफिले मुशायरा इस रात रख लेते हैं। मैं भी उदास हूं, तुम भी गुमसुम जाना। महफिले रख लेते हैं। कुछ तो भरम हम भी कभी साथ रहे, भरम रहे कि हम भी कभी एक दूसरे की आदत रख लेते हैं। ऐसा करते

हैं, एक मुलाकात रख लेते हैं। जिंदगी ने हम दोनों को बहुत गम दिए, जिंदगी ने हम दोनों को बहुत गम दिए, तुम रखो खुशियां, हम तजुर्बात रख लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक मुलाकात रख लेते हैं, चाय की प्यालियां, कुछ सौगात रख लेते हैं।

प्रोग्राम दिल जी गल से कर रहा हूं है आबिद चौहान आया वहां बुधी रहा हो जीए एफएम नेटवर्क न्यू ट्यून कैल सबनी तमाम प्री प्यारन दिलबर दिलरुबा दोस्तन के वेलकम भली कार खुशामदीद सबनी दोस्तन के एक भेरो बीहर जो का शेड्यूल पे जो प्रोग्राम दिल जी गल जो टाइम टेबल बुधाई दोला जे के रेगुलर कॉलर्स आहन लिसनर्स आहन उनन जे इल्म में या गल हुंदी त प्रोग्राम दिल जी गल हाने मंडे खां थर्सडे यानी के सूमर खां खमीस ताई पीर से जुमेरात तक असा प्रोग्राम हलंदो टाइमिंग सागी हुंदी 9 टू 11 हियर वक्त थी रहो आए एकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां वापस वरंदा से अवां सा कचहरियों कंदा से दिल जो गालियों कंदा से फोन कॉल्स अवां जो अटेंड कंदा से फोन कॉल्स ला एक भेरो नंबर तमाम दोस्त नोट करे वठन असा राइट शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां वापस वरी अवां जो कॉल्स अटेंड कंदा से असा जो लाइव कॉलिंग नंबर आए 03000111 3488

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
3: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

थदी छांव अगवा थी जाना खजी वई कयो रुत ततीय में रुगो पंध पेरन लथियूं सर्द शामू इएं ई घिटन में चुभियूं जर्द लामू इएं ई अखियन में लगी प्यास कंहिंजी चपन जी जॾहिं लॻी प्यास कंहिंजे चपन जी जॾहिं त ममनू मौसम छॾियो रूह भेले मिलियूं कोन नज़रूं मिलिया कोन सीना विछोड़नि में घारियो उमीदनि अकेली रहिया ख़्वाब केॾा अखियुनि जा अकेला विरांडनि में बीठल जवाननि न ॼाता हथनि मंझि पातल निशाननि न ॼाता न ॼाता न ॼाता खिज़ाउनि न ॼाता अखियुनि जा अंदेशा हवाउनि न ॼाता।

0: प्रोग्राम दिल जी गल से गदा हुआ है अब चौहान आया वहां बुधी रहा है जी एफ एम नेटवर्क जी एफ एम नेटवर्क आए दिल जी गल जे बुधदलन सबनी दिलरुबा दिलबर दोस्तन के वेलकम भलीकार खुश आमदीद हियर वक्त थियो आहे अवां जो कॉल्स अटेंड करण जो अवां सां कचहरी करण जो जी अवां इंतजार कयो आ इएं ई मूं बि इंतजार कयो आ पर न्यूली टाइम शेड्यूल मूजिब मजबूर आहियूं ऐं मजबूरी अवां सां ॻाल्हाइण बि ज़रूरी त पोइ शामिल कयूं था प्रोग्राम में पहिरीं कॉल अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां
1: वालेकुम सलाम साईं ऐं रंगून कोरी कोरी गोठ में ख़ासि थो
0: केरु साईं
1: साईं रांझन कोरी मीरपुर ख़ासि कोरी गोठ में
0: रांझन कोरी मीरपुर ख़ासि सां वेलकम भलीकार ख़ुश आमदीद प्यारा कड़ालन ख़ुशि आहियो
1: अलाह पाक जो शुक्र आहे साईं तव्हां ॿुधायो
0: दुआऊं अलाह जसान मां सम्झां थो अव्हां जी कॉल असांजे प्रोग्राम में ही फर्स्ट टाइम आहे
1: जी जी बिल्कुल
0: वाह वाह वाह वाह ॾाढी ख़ुशी थी छा चवणु चाहींदो प्रोग्राम कीअं थो लॻे ऐं प्रोग्राम कॾहिं खां ॿुधो पिया
1: साईं प्रोग्राम त मूंखे तक़रीबन चार साल खां ॿुधो अचां मूंखे वॾो एक्सीडेंट थियो उन खां पोइ एम पी पुॼी वियो एम आऊं आहियां बसि
0: मौला अवां खे सिहत बख़्शे वॾी उमिरि जमार अता फ़रमाए चार साल खां आऊं त प्रोग्राम कोन पियो कयां ऐं पुछणु पियो चाहियां त प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि कॾहिं खां ॿुधो पिया
1: हा साईं दिलि जी ॻाल्हि ऐं इहा चवणु चाहींदो आहियां सॼनि दोस्तनि खे सलाम ऐं ख़ासि तव्हांखे ख़ासि आर जे अली मुनवर आर जे
0: वॾी महिरबानी सभिनी ताईं सलाम पहुची विया अव्हां जा अव्हां जी सॼी संगत खे बि मुंहिंजा सलाम कुर्ब साईं लख लाइ
1: कुर्ब साईं
0: थैंक यू ओके अलाह हाफ़िज़

0: जी दोस्तों, कॉल हिकु अदबी शामिल कंदासीं, बल्कि इहो सिलसिलो हलंदो रहंदो, शायरी बि हलंदी, गीत बि हलंदा ऐं अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल बि थींदी। अस्सलाम अलैकुम, खैर साईं, किथां खां? प्रोग्राम में कमियूं कोतायूं आहिनि, उहे पोइ असां जी सलाह कयो
1: भला
0: कमी महसूस थी न अचण जी। हफ़्ते में चार ॾींहं हूंदो, टिनि ॾींहंनि लाइ हथ ॿधी माज़रत, कुझु मसरूफ़ियतूं बि आहिनि, कुझु शेड्यूल बि जी।
1: हक़ीक़त
0: छा ॿुधाइणु चाहियो,
1: शामिल थींदा आहियूं, मज़ो अची वेंदो आहे, ईमानदारी
0: असांखे बि साॻियो ई मज़ो ईंदो आहे, तॾहिं त जुड़िया पिया आहियूं अव्हां सां गॾु। छा चवणु चाहींदो, को शायरी शामिल करणु चाहींदो, को दोस्तनि जा नाम? जी क्या भटी जो ॿुधाईंदासीं, बिल्कुलु, कहिड़ो
1: वालेकुम
0: सलाम, थैंक यू। लख थोराई ऐं अव्हांजो मुहबतूं, इहो मान प्यार अव्हां असांखे यादि रखियो ऐं असां अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कॉलर मौजूदु आहे लाइन ते, अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं, किथां खां?
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
0: साईं मुंहिंजा, केरु किथां खां?
1: साईं
0: साईं साईं भलीकार मीराणी साहिब, कहिड़ा हालनि, ख़ुशि आहियो? हक़ीक़त आहे, बिल्कुलु बिल्कुलु, एडवांस में अखियुनि ते। अच्छा, रजब साईं बि ॾिनी, मां सिर्फ़ फ़क़ति अव्हां खे सम्झां पियो, पर इहा साईं रजब बि ॾिनी। पोइ हाणे इहो ॿ माण्हू आयो अञा ताईं मूंखे, वरी कंहिं टे न चयो आहे, पहिरियों चवां पियो कंहिं हिकु न चयो आहे, पोइ हाणे कंहिं टे न चयो आहे, पर मां अॼु नोट करायां थो जेको आहे त पंहिंजे शिफ्ट इंचार्ज खे, टेक्निकल खे। न न मां ज़िक्र कयां थो हींअर, बाबर साहिब सां बि ज़िक्र कयां थो। छा चवणु चाहींदो, को शेर शामिल करणु चाहींदो प्रोग्राम में?
1: केर आहियूं सनम चोणे त पा छॾनि पाण, कोट जे बदिलो जी चवंदा आहियूं, नाई माण कथे ऐं कांडे जी रखंदा आहियूं सुञाण, पर कस खेंदी आहे लोह खे, कस खेंदा आहियूं अॼु जो पाण। आशिक मां बि घुरिजे पियो, तूं बि अदब कर आशिकनि जो, या सूरत हूंदई न साण, चार दिन जी चांदनी पोइ छाईंदे वरितो छाण। आशिक जी मां पोइ दिलि लुटे वियो, दौलत लुटे वियो, चयो त दिलि लुटे दौलत लुटे वई, किथे ते आहे चाचो सॼी चई हाणे पाण ॼाण। दिलि लुटे दौलत लुटे वई, किथे ते आहे चाचो सॼी चई हाणे पाण ॼाण। आशिक जॾहिं कंगड़ो थी वियो, पोइ परे खां चयसि, ॾेठो माण्हू मुंहिंजो, ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਵਾਹ ਦਿਲ ਲੁੱਟੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਚਾਚੋ ਛੱਡੀ ਕਈ ਹਾਣੇ ਪਾਣ ਜਾਣ ਉਸੇ ਵਤੋਂ ਵਾਹਣ ਬਿਗੁਲ ਮਿਲਾਣੀ ਪੈਂਦੇ ਇਸ਼ਕੂ ਨੇ।
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ
1: रेडियो
0: ॿुधंदा रहो पहिरां पोइ इंशाअल्लाह इहो गीत शामिल कयूं था।
1: ठीकु
0: आहे, वरी महिरबानी।

हम जो तुमसे मिले हैं इत्तफाक थोड़ी है। हम जो तुमसे मिले हैं इत्तफाक थोड़ी है, मिलके तुमको छोड़ दें मजाक थोड़ी है। हम जो तुमसे मिले हैं इत्तफाक थोड़ी है, और मिलके तुमको छोड़ दें मजाक थोड़ी है। अगर होती तुमसे मोहब्बत एक हद तक तो छोड़ देते। अगर होती तुमसे मोहब्बत एक हद तक तो छोड़ देते, पर हमारी तुमसे मोहब्बत का हिसाब थोड़ी है। अब तुम ढूंढोगे मेरी इस गजल का जवाब सखी। अब तुम ढूंढोगे मेरी इस गजल का जवाब सखी, ये मेरे दिल की आवाज है किताब थोड़ी है। अब तुम ढूंढोगे मेरी इस गजल का जवाब सखी, ये मेरे दिल की आवाज है किताब थोड़ी है। हम जो तुमसे मिले हैं इत्तफाक थोड़ी है, मिलके तुमको छोड़ दें मजाक थोड़ी है।

0: दोस्तों वक्त थियो आहे न्यूज़ ब्रेक ऐं हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। न्यूज़ ब्रेक ऐं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वरी वरंदासीं। ॿुधंदा रहो GAFM नेटवर्क।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: फादिए मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
1: GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: It's 10 p.m.
4: लेकर आएंगे। हमें सिर्फ इस्लामाबाद का जिम्मेदारी दे दे, वहां हम आपको दिखा देंगे कि थर थर के नौजवान, थर के सियासतदान क्या क्या कर सकते हैं। हमेशा की तरह अब की रिवायत बन चुका है कि हमारे घर के बच्चे टॉप करते हैं। जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुबारकबाद देने के बजाय, उनके लिए तालियां बजाने के बजाय अपने नफरत की सियासत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनकी नफरत की सियासत दफन करेंगे और थर तरक्की करता रहेगा।
5: सिस्टम जी नाकामी थे नवन सूबन वारो मन तक समझ का बाहर आ है। इस्लामाबाद नाकाम थो है त इस्लामाबाद के थर वारन हवाले कयो। थर की तरक्की से समूरो मुल्क हैरान है। इस्लाम कोट में थरकोल फेज 3 मनसूबे जो इफ्तिता कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो है त कराची में सियासी यतीमन की जमात सहूनियन की सियासत करे रही है। सहूनियन वाली सियासत के सिंध में आणण वाली कोशिश के कामयाब थे न ॾींदासी। थर जा बार टॉप कन था, तवा के इन वाधायू दियण बदरा नफरत वाली सियासत कयो था। थर की तरक्की कुछ मानून के हजम नाहे थी रही। असा नफरत की सियासत के दफन कर छींदी। इस्लामाबाद जा माहिर चवंदा हुआ तो थर जो कोयलो बेकार है, सीड़पकारी करण बेकार है। हाने पूरो पाकिस्तान हैरान है तो थर किथे पहुंची वो है। इस्लामाबाद वारन के चवां तो हू बे थर जड़ी तरक्की ते ध्यान दें। केपी की सूरत हाल से वजीर आजम शाहबाज शरीफ पारा बीहर सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करने जो फैसलो। जरियन मूजिब वजीर आजम ए सदर विच में थींदड़ मुलाकात दौरान केपी की सूरत हाल अपोजिशन से थियल गालन जो जायजो वरतो वेंदो। केपी में गवर्नर रॉज या इमरजेंसी वाले ऑप्शन से भी गालियों करने जो इम्कान। हुकूमत अपोजिशन विच में थियल गालन की नाकामी जो जिम्मेवार केर। हुकूमत अपोजिशन जा एक बेते इल्जाम जारी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चयो आहे त नथो लगे त मुस्तकबिल में बीहर गालियूं थींदियूं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी वाले ऑप्शन से गौर करे रही है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त हुकूमती होड सबब गालियूं नाकाम थियूं आहिनि। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत न छॾींदी ऐं नई असेंबली टोड़ींदी। लॉन्ग मार्च जारी आहे। सोहेल आफरीदी लीड करे रहियो आहे। रियासत ए केपी जो मसलो सियासत न पर दहशतगर्दी है। रियासत जो फैसलो दहशतगर्दन से गाल न पर कार्रवाई है। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चाहे तो बिन साल दौरान केपी में दहशतगर्दी जहाँ 6000 का वाक़ थे 1200 शहादतू थी 37 हमलों में अफगान शहरी मुलविस निकता 14 आपघाती हमला थे जिनमें अक्सरियत अफगान शहर की है। CTD केपी वुगो 17 बख्तरबंद गाड़ियों। केपी हुकूमत बुधाए दहशतगर्दी की खात्मे लाइ वटन केड़ी पॉलिसी आहे। दहशतगर्दी के एक साजिश तहत मड़ियो वो गलत पॉलिसी सबब मुल्क विरायजी रो है। लॉन्ग मार्च के खिताब कंदे केपी के वे वजीर सोहेल आफरीदी चयो तो पंजी अवाम से गड बीहण बेवकूफी है तो मां बेवकूफ आया। हुकुमरानन वट अञा भी वक्त है। अवाम बाहर निकतो तो केर भी कंट्रोल करे न सकंदो। यमनी फोर्सेस आबी गुजरगाह बाबुल मदब जो बीहर कंट्रोल हासिल करे वरतो। साहली इलाके जोबाब जो कंट्रोल संभालन बाद यमनी फोर्सेस की वड़ी कामयाबी। यमनी हुकूमती फौज के तर्जमान मूजिब हुसैन के 1122 अथाकन से कार्रवाई की हुई है जै दौरान 1747 हूसी बागी मारी वाया। मक्का मुआहदे की स्ट्रेटजिक सियासी ए दिफाई कमेटी जो इजलास अज रियाज में थन्द। नायब वजीर आजम इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ ए फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर सऊदी अरब पोतल, اجلاس میں ترکیہ ایں سعودی عرب جا پردہی وزیر دفاع والا وزیر ایں چیف آف جنرل سٹاف شرکت کندا مکہ دفاعی معاہدے تے اکبرائی جو جائزو ورتو ویندو پردہی ترجمان موجب پاکستان علاقہ یمن استحکام لا کردار جاری رکھن